100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का यह लखनऊ केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून सन 2026। प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ हो रही है।

0: हरे का नाम है सबसे पहले, हरे का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरे के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

प्रार्थना और पुकार से भावनाओं का विकास होता है, भाव बल और आत्मबल भी बढ़ता है। सच्ची प्रार्थना ही एकमात्र उपाय है ईश्वर तक पहुंचने का।

संसार में कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर प्रेम ना हो, और यही प्रेम आत्मा की दिव्य अनुभूति है। जब हमारे मन में प्रेम का आविर्भाव होता है, तब आत्मा में परमात्मा का स्थान होता है। सुनते रहिए पुष्पांजलि।

इच्छा शक्ति एक ऐसा शस्त्र है जिसके प्रयोग से हम जिंदगी में सब कुछ बदल सकते हैं। तो आज से प्रयास करें कि इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: छह बजकर 44 मिनट का समय, आप हैं पुष्पांजलि में 100.7 FM रेनबो पर।

किसी को संगति में रहने से तो अच्छा है अकेले रहना, भला उस संगति में रहने से क्या लाभ जो उन्नति के स्थान पर पाप और पतन के गर्भ में ले जाए।

प्रभु की भक्ति सदैव जीवन को प्रकाश दिखाती है। सच्चे मन से प्रार्थना करें और किसी से बैर न रखें। दूसरों के लिए मंगल कामना करेंगे तो ईश्वर हमारा भी मंगल करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज्ञा दीजिए अनुपमा को आज की पुष्पांजलि से। सुनते रहिए रेनबो

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घटना की जानकारी मिलते ही कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ का दौरा बीच में ही रद्द कर राजधानी लौट आए। वो सीधे अलीगंज स्थित अग्निकांड स्थल पर पहुंचे, इसके बाद केजीएमयू गए और घायलों का हाल जाना। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी घोषित की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की। अलीगंज स्थित अग्निकांड स्थल पर कल रात रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह भी पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तथा राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद वो केजीएमयू पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और सभी घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड प्रकरण पर कल देर रात उच्च स्तरीय बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 2 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित किया गया। मुख्यमंत्री ने जांच दल को 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। घटना के लिए 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। और ज्येष्ठ माह का आखिरी और 8वां

0: मंगल आज धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लखनऊ के अलीगंज स्थित पुराना हनुमान मंदिर के कपाट आधी रात 12 बजे के बाद भक्तों के लिए खोल दिए गए। रात से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसके अलावा नया हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, हजरतगंज स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के साथ साथ हनुमंत धाम और अन्य मंदिरों में भोर से ही लोग हनुमान जी का दर्शन पूजन कर रहे हैं। लखनऊ में कई स्थानों पर आज भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रमुख मंदिरों के आसपास यातायात डायवर्जन भी लागू किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे अखबारों की सुर्खियों के साथ प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए रेनबो।
1: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
2: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
1: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

लाइफ में कई बार ऐसा होता है जब सुबह आपके जागने पर आपको लगता है कि ये सुबह वैसी तो बिल्कुल नहीं है जैसी हमने सोची थी। तब जरूरत इस बात की होती है कि आप और हम खुद को इस बात का एहसास कराएं कि सब कुछ बेहतर होगा, आने वाला पल कुछ और अच्छा देकर जाएगा, आने वाला दिन कुछ और बेहतर बनाएगा हमारी आने वाली जिंदगी के लिए, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और इसी बेहतर की उम्मीद के साथ हम चल पड़ते हैं अपने अगले दिन की ओर। बहुत कुछ ऐसा जो हम पाना चाहते हैं, जो दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। 100.7 FM रेनबो पर मैं अनुपमा एक बार फिर आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। सदाबहार गीत लेकर हाजिर हूँ, बस सुनते रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल। कुछ खूबसूरत गीत, कुछ खूबसूरत बातें आपके लिए।

यही है कि कुदरत की हर चीज, कुदरत का हर कोना हम सबको बहुत अच्छी तरीके से जानता है, परखता है। और लाइफ को देखिए ना, एक नदी की तरह बहती रहती है जिसमें बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड मोड़ आते रहते हैं। कभी अच्छे होते हैं तो कभी अच्छे नहीं लगते। हर मोड़ को एंजॉय करने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। हाँ, हम सबको एक दूसरे को इंक्लूड करना चाहिए इसमें, क्योंकि हम हमेशा हमेशा तो नहीं, हाँ अक्सर घबरा जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो इन ये जो मोड आ रहे हैं इनको एंजॉय करिए, क्योंकि ये जो टर्न्स होते हैं ना, ये कभी रिटर्न नहीं होते हैं। तो बस लाइफ को, लाइफ की बहुत सारी स्ट्रगल्स के साथ, नदी के इस बहाव के साथ बहते चले। 7:16 सुन रहे हैं आप सदाबहार गीत, एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

सारे खूबसूरत गाने हमको मिले हैं अपनी बॉलीवुड की फिल्मों से, जो आज हम आपके लिए प्ले करते हैं और आपके होठों पे अनायासी मुस्कान तैर जाती है। नहीं, 7:25 का वक्त हो रहा है, सदाबहार गीत एंजॉय कर रहे हैं आप। और अक्सर ऐसा भी होता है कि दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने की कोशिश में हम अक्सर अपनी भावनाओं या अपनी वैल्यूज़ या अपनी सच्चाई से समझौता करने लगते हैं कि भाई सामने वाला हमको अच्छा समझे, कहीं ऐसा ना हो मेरी कमियां उसके सामने आ जाएं। लेकिन ज़रा एक दिन एक सवाल हमें खुद से भी करना चाहिए कि क्या मैं सचमुच वही हूँ जो लोगों को दिखाई देता हूँ। दुनिया हमें समझे या ना समझे, एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन अगर हम अपनी नज़रों में सच्चे होते हैं ना, तो फिर हम बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। जो हमारे अंदर है वो हमारे चेहरे पर है, और हमारे अंदर अगर अच्छाई है, सच्चाई है, तो फिर बात बहुत खूबसूरत तरीके से बन जाती है। तो बस छोटी छोटी बातों को सोचना है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
0: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
0: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

कोई इतनी खूबसूरती से कहे कि तेरे बिना जिया लागे ना, तो सामने वाला जरूर उसकी बात सुनेगा और चला आएगा। मैं भी कह रही थी ना आपसे कि बहुत सारे खूबसूरत गीत हैं जो बॉलीवुड ने दिए हैं और बहुत सारे खूबसूरत अदाकार हैं जिनसे हम रूबरू हुए सिल्वर स्क्रीन पर। एक ऐसा ही नाम है राज बब्बर का, जिनकी आज है सालगिरह। एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यक्तित्व, बहुत ही पावरफुल मूवीज उन्होंने की और बहुत ही अच्छे अदाकार जो होते हैं उनमें शुमार है उनका नाम, और उनकी फिल्मों की फहरिस्त तो खैर बहुत लंबी है। गुड मॉर्निंग लखनऊ में भी आपसे बात होगी, लेकिन एक गाना उनका ऐसा है जो हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और सिर्फ मुझको नहीं हम सबको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज राज बब्बर की याद करते हुए, उनकी फिल्मों को एक बार फिर से दोहराते हुए ये गाना एक बार फिर से सुन लेते हैं।

अपनी अपनी लाइफ्स में हम सब खुशियां ढूंढते रहते हैं और ढूंढनी भी चाहिए, नहीं? लेकिन अब खुशी कैसे मिलेगी? खुशी ऐसे मिलेगी कि लाइफ के हर मोमेंट का हम भरपूर आनंद उठाएं, अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचना छोड़ दें और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। कंप्लेंट्स बहुत करते हैं हम सब, तो स्टॉप कंप्लेनिंग। अप्रिसिएशन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को अप्रिशिएट करिए। कोई छोटा सा जब आप अप्रिसिएशन किसी को देते हैं ना, तो उसका उत्साह दोगुना हो जाता है और फिर वो अपनी राह पे बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ता है और कामयाबी भी हासिल करता है। बस सपने देखिए, क्योंकि अभी कल ही परसों में कहीं पढ़ रही थी कि सपने देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सपने सच होते हैं अगर आप शिद्दत से देखते हैं तो। लेकिन ये सपने सो के नहीं देखने हैं, खुली आंखों से देखने हैं। अभी फ़िलहाल 10 मिनट का समय मेरे पास और एक और बहुत खूबसूरत सा ये ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर। सुनते रहिए सदाबहार गीत, मैं अनुपमा आपके साथ।

हम सोचते हैं कि अगर आप सब ना होते तो हम ये सारे प्रोग्राम्स, ये सारी मेहनत किसके लिए करते आखिर। तो बस आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए, बहुत सारी बातें फिलहाल आपको ले चलेंगे दिल्ली समाचारों के लिए, और उसके बाद 8:15 बजे कनेक्ट हो जाएंगे आपके साथ गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर। साथ होंगे विनय, सुनते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और

0: बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे, और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग

0: विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का मान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता।

0: ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक सॉर्ट में घंटों चली वार्ता, बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया, बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: और वो सुबह ऐसी भी होती है कि हमको बहुत सारे सोचने के नए मौके देती है। हमको बहुत सारा ऐसा कुछ देखना होता है जो हमें आगे आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर सके। लखनऊ की कल की शाम बहुत दुखदायी थी और हम सब उससे अछूते नहीं रह पाए। विनय,
1: बिल्कुल। तो आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से जो भी युवा और उनके परिवारजन इससे प्रभावित हैं, उन सभी को, सभी का मनोबल बढ़े, हम यही आशा करते हैं।
0: हम सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा दर्ददायक था, दुखदायक था, जो जिसने देखा, जो उधर से निकला, या जिसने सुना या जिसने पढ़ा, वो उससे अलग नहीं हो पाया। तो हमारी संवेदनाएं हैं उन परिवारों के साथ, लेकिन जब तक जिंदगी है तब तक हमको चलना पड़ता है। एंड एक वो बात है ना, द शो मस्ट गो ऑन।
1: जी, सो गुड मॉर्निंग लखनऊ में आज शुरुआत इस गीत से।

0: का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, और हर दिन की तरह आज भी आपके लिए मॉर्निंग मंत्रा। मन में आशा, आंखों में विश्वास रखिए, हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का प्रयास रखिए। बादल चाहे कितने भी घने क्यों ना हो, सूरज निकलने की एक आस रखिए,
0: क्योंकि जब मन में उम्मीद होती है, मन में आस होती है, तो हम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, और यही ऊर्जा हमको हमारे सपनों को पूरा करने के लक्ष्य तक ले जाती है। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ, विनय और अनुपमा आपके साथ।

0: 5:28 का समय है और देखिए ये जो समय है ना, इस वक्त बड़ी पशोपेश रहती है ज़िंदगी में क्या किया जाए, कैसे अपने आप को एक ऐसे मुकाम पे लाया जाए जहाँ पर हम खुद को साबित कर सकें। नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए।
1: जी, और रोज़गार चाहिए तो उत्तर प्रदेश में आज सेवा योजन निदेशालय द्वारा लखनऊ में रोज़गार मेले का आयोजन हो रहा है और ये है ITI अलीगंज लखनऊ में।
0: और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्रोताओं प्रज्ञा त्रिपाठी जी, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं, जो आज के इस कार्यक्रम के बारे में तफसील से जानकारी देंगी। हेलो।
2: हेलो जी, नमस्कार।
0: मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग लखनऊ में। जानना चाहेंगे आज इस रोजगार मेले में क्या क्या खास हो रहा है।
2: जी, ये राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में
0: जी
2: प्रातः 9:30 से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 कंपनियां प्रतिभाग ले रही हैं, जो 12th 8th से लेके 12th और ग्रेजुएट बच्चों को, ITI बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी।
0: जी जी।
2: और इसमें जो बच्चे प्रतिभाग करना चाहते हैं वो सेवा योजन की वेबसाइट है rozgarsangam.up.gov.in।
0: अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है और अप्लाई करना है तो हमें इस वेबसाइट पे जाना होगा।
2: जी जी, इस वेबसाइट पे जाके बच्चे रजिस्ट्रेशन करके जॉब की पूरी वैकेंसी का पूरा डिटेल्स दिख रहा है
0: जी।
2: और उस पर अप्लाई करके सीधे राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में आकर इंटरव्यू देकर चयनित हो सकते हैं।
0: मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार फिर से इस वेबसाइट का ID बता दीजिएगा, एड्रेस बता दीजिएगा।
2: रोजगार संगम .up.gov.in।
1: जी मैम,
2: ये हमारी जी
1: जी जी मैम, हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस ये निःशुल्क है या कोई शुल्क है प्रवेश के लिए।
2: हाँ, इस ये पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क है, किसी भी स्तर पर चयन से लेकर जॉब पाने और ज्वाइन करने तक कहीं कोई पैसा नहीं देना है। और मैं बच्चों को ये कहना भी चाहूंगी कि किसी भी जॉब में अगर वो कहीं जाते हैं तो पैसे देने की गलती ना करें, क्योंकि वो पैसे लेने गए हैं, जॉब का मतलब है सैलरी मिलेगी,
0: जी जी,
2: कहीं देनी नहीं होती। ये हमारे पास एक बहुत मतलब निरंतर आने वाला प्रश्न है कि जॉब के लिए उन्होंने 100,000 रुपए मांगे, 2,000 रुपए मांगे और बच्चे ऐसे बहकावे में आ जाते हैं। तो मैं बच्चों को सतर्क करना चाहूंगी कि कहीं भी किसी भी स्तर पर पैसे कभी ना दे, क्योंकि पैसे किसी भी जॉब के लिए नहीं देने होते।
1: बिल्कुल। और मैम एक और सवाल था कि ये जो जितनी भी प्रोफाइल है वो लखनऊ में उन जॉब लगने वाली है, लखनऊ के बाहर के लिए भी है।
2: हाँ, इसमें से अधिकतर लखनऊ की ही है, 1-2 कंपनियां हैं जो अगल बगल बाहर भी ले जा रही है, नोएडा भी, लेकिन अधिकतर कंपनियां ये लखनऊ की ही है।
0: जी, तो इसमें 12 पास लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और
2: इसमें वैकेंसी 8th से लेकर के ग्रेजुएशन तक के लिए है।
1: जी,
2: 8th के लिए भी है, 10th के लिए भी, 12th के लिए, ITI डिप्लोमा के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, सबके लिए वैकेंसीज हैं। तो बच्चों से मैं अनुरोध करूंगी कि वो रजिस्ट्रेशन करके ITI अलीगंज जाएं और इंटरव्यू दे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हम चाहेंगे कि आपका ये जो आयोजन है ये सफल हो और आज बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे, छात्र पहुँचे, लोग पहुँचे और अपना करियर बनाए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ ही प्रज्ञा त्रिपाठी जी, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, जिनसे आपने तफसील से जाना आज के इस रोजगार मेले के बारे में। एक बार फिर से दोहरा दें कि किसी भी तरह का शुल्क आपको नहीं देना है,
1: पूर्णतः निःशुल्क है और 9:30 से ये रोजगार मेला शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर करें।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर।
1: गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा।
2: गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाना, दादी के घर जाना, मामा के साथ समय बिताना, सब कितना इंटरेस्टिंग है ना।
3: बिल्कुल, और अब तो गर्मियों की छुट्टी जा रही है धीरे धीरे, वो टाटा बाय बाय कह रही है, लेकिन अभी कुछ समय है।
2: अच्छा, गर्मी की छुट्टी हो ना हो, लेकिन जब हम लोग मुझे अपना याद है कि जब छोटे थे हम लोग स्कूल से लौटते थे, शाम वाला जो समय होता था खेलने का, तो हम सब चुपके से घर से बाहर निकल जाते थे और उसके बाद बहुत सारे ऐसे गेम जिसको आइस स्पाइस कहते थे एक्चुअली वो आइस स्पाई होता है, लेकिन आइस स्पाइस कहते थे उसको।
3: बिल्कुल, हम लोग बहुत सारा छुपन छुपैया बोलते थे और अब लट्टू देखे, गुल्ली डंडा, ऐसे बड़े सारे खेल हैं जो शाम को पार्कों में आप जाएं तो लोग तरह तरह के गेम खेले। एक वो नहीं होता था कि बॉल लेकर हम लोग ऐसे
2: बॉल मारते थे, उस पर कंचे खेलना, पतंग उड़ाना, ये सारी वो एक्टिविटीज थी जो आप के फिजिकल इम्प्रूवमेंट में बहुत आपको हेल्प करती थी,
3: है ना? बिल्कुल,
2: धीरे धीरे ये चलन खत्म होता जा रहा है
3: और ये चलन ना खत्म हो, और इसीलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ये मुद्दा। आज है वर्ल्ड ओलंपिक डे और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये मुद्दा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो पारंपरिक खेल है इनमें से कौन सा खेल आपका सबसे फेवरेट वाला है और क्यों,
2: और कौन से ऐसे गेम हैं जिनको आज भी आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं खेलने के लिए। बहुत

0: सारे बोर्ड गेम्स भी ऐसे हैं जो घर में बैठ के, आज की जो चिलचिलाती धूप है, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकला जाए, लेकिन बच्चों का मनोरंजन और बच्चों का टाइम पास होना भी जरूरी है।
1: तो जी मोबाइल से दूर रखिए, क्योंकि कई सारे बोर्ड गेम मोबाइल पर भी आ गए हैं, लेकिन जो फिजिकल गेम्स हैं उनकी, उनको रिप्लेस नहीं कर सकता मोबाइल।
0: क्योंकि जब हम लूडो खेल रहे होते हैं अपने सामने रख के वो बोर्ड, और जब बड़ा वाला 98-99 पे सांप काटता है तो जो आ निकलती है ना,
1: सीरियसली लगता सीरियसली सच में काट लिया सांप ने।
0: नहीं, वो सामने बैठा हुआ बंदा उसके एक्सप्रेशंस देख के भी ना बहुत मजा आता है। तो ये आपस का जो तालमेल है इन खेलों के जरिए बहुत ज़्यादा उन्नत होता है, विकसित होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, धैर्य हमारे अंदर, संयम हमारे अंदर, एक जो हारने की प्रवृत्ति खत्म होती जा रही ना, वो भी कहीं ना कहीं रहनी चाहिए।
1: बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आजकल के बच्चे हार से भी, हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं यही हमें सिखाते हैं। तो आप हमें बताइए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर कि आपको ऐसा कौन सा पुराना वाला गेम पसंद है, अपने बच्चों को आप बताना चाह रहे हैं, सिखा रहे हैं, और वो क्यों पसंद है।
0: जी, तो हम बस इंतज़ार कर रहे हैं, फटाफट अपनी ईमेल्स हम तक भेज दीजिए।

0: चलिए मेरे साथ साथ ये आपका भी फेवरेट गाना था, ये मुझे नहीं पता था।
1: और हम लगातार जोर जोर से गा रहे थे,
0: इसीलिए हम एकदम चुप थे। गा लो, जी भर के गा लो आज।
1: कुछ गाने ऐसे होते हैं ना, जीवन भर साथ जुड़े रहते हैं। जब से हमने ये फिल्म देखी, ये गाना सुना, तब से लगता है कि बस ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ
0: बना हुआ है ना।
1: बिल्कुल,
0: मैं तेरा सरमाया हूँ, तुमसे ही मिल बन पाया हूँ। क्या बहुत बहुत सुंदर अल्फाज हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 8:44, गुड मॉर्निंग लखनऊ। में आपके सामने हमने एक मुद्दा रखा था जिसपे हमने आपके ईमेल्स इनवाइट किए थे कि कौन से हैं वो गेम्स, कौन से हैं वो खेल जो पारंपरिक हुआ करते थे पहले, अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी आपको कौन से खेल याद है, या आपके बच्चे या आप आज भी उन खेलों में दिलचस्पी रखते हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे पास कुछ मेल्स हैं, तो आइए हम पढ़ते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले हमें मेल कर रहे हैं राजेश कुमार गुप्ता जी और अमृता गुप्ता जी, जो हमें मेगा स्टेट कॉलोनी रायबरेली रोड लखनऊ से मेल करते हैं। और सबसे पहले ये हमें ये बता रहे हैं और बड़े खुशी से बता रहे हैं कि आज इनकी शादी की सालगिरह है, वो भी 27वीं।
0: चलिए बहुत बहुत मुबारक हो, 27 साल आप लोगों को।
1: तो अपने अर्धांगनी को ये डॉली कहते हैं, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ मुद्दे पर इन्होंने लिखा है कि इनके विचार से कैरम का खेल एक बेहतर खेल है, क्योंकि ये एकाग्रता और सटीकता को बढ़ावा देता है।
0: क्वीन भी मिलती है उसमें, भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए थैंक यू सो मच। और सुधांशु जी का ईमेल है भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा पक्षी का तालाब से, और ये लिखते हैं कि खेल बहुत अच्छा लगता था इनको, वो वाला जब एक लड़का या लड़की के हाथ में बालू और मिट्टी भरते थे, उसमें एक दांडी लगाते थे और आंख में पट्टी बांधते थे, और उसे कुछ दूर तक ले जाकर दांडी और मिट्टी वहीं छोड़ देते थे, और फिर उस व्यक्ति को ठीक वही वापस लाते थे और आंख की पट्टी खोल कर कहते थे कि मिट्टी और दांडी ढूंढो।
1: क्या बात है, ये तो मैंने सुना ही नहीं कभी।
0: मैंने भी नहीं सुना जी।
1: और देखिए हमें और लोगों ने भी मेल किया है, प्रवीण जी ने मेल किया है और ये लिख रहे हैं हमें, लिखते हैं सितौलिया छुपा छुपाई चार चिट्ठी बनाकर राजा मंत्री चोर सिपाही वाला गेम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग गेम हुआ करते थे ना। तो कितनी अच्छी यादें हैं हमारे बचपन की और कितने अच्छे खेल थे वो। राम मोहन गुप्ता जी का मैसेज है और इन्होंने एक बहुत ही दिल को छूने वाली कविता भेजी है। कल की घटना पर, लखनऊ की दुखद घटना पर अति द्रवित है मन, हुई दिवंगत आत्माओं के प्रति अर्पित है सुमन। फिर कभी ऐसी हृदय विदारक दुर्घटनाएं ना हो, बढ़ती जाए पूरी सावधानी, लापरवाही चूक ना हो। जी बिल्कुल, हम सबकी संवेदनाएं जुड़ी हैं उस चीज़ के साथ। और इधर देखिए, सोनू परवाना जी और गीता सेठ ने भी हमको मेल किया है, गुड मॉर्निंग किया है, आपके लिए चाय भेजी है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ जनवेश कुमार ने भी गुड मॉर्निंग कहा है, रोशनी रावत ने भी गुड मॉर्निंग कहा है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग।
0: और रामेश्वर जी का भी नाम ले लेते हैं यहाँ पर, ये हमको मुंगीसापुर कानपुर देहात से मेल कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है इनको ये सब जो भी हम लोग बोल रहे हैं या जो भी गाने हम आज प्रेजेंट कर रहे हैं। और देखिए रामेश्वर जी, फरमाइशी गीतों का ये प्रोग्राम नहीं है, इसलिए आपके फरमाइश का गाना तो हम नहीं बजा पाएंगे, लेकिन जो गाना हम भेज रहे हैं वो बहुत बढ़िया है।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
1: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग।
2: अच्छा, ये मॉर्निंग गुड रहे और पूरा दिन गुड रहे, पूरा महीना, पूरी लाइफ गुड रहे, इसके लिए बहुत सारे मेजर्स अपनाने होते हैं।
3: बिल्कुल, और हम ये मेजर्स सुबह से ही शुरू कर देते हैं और दिन भर ये साथ रहते हैं।
2: बहुत सारी सावधानियां रखनी ज़रूरी होती हैं, जैसे कि अब गर्मी का मौसम है तो बहुत कुछ हमें भी ध्यान रखना है। ओवरलोडिंग ना होने दें, बहुत सारे कमरों के एसी ना चलाएं, कोशिश करें एक ही कमरे में बैठें ताकि प्यार मोहब्बत भी बना रहे और बिजली का खर्चा भी कम आए और लोड भी कम पड़े।
3: क्या बात है, आपने एक साथ दो दो बातें कह दी।
2: बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी दुर्घटनाओं को हम ऐसे भी रोक सकते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गर्मी

0: बढ़ रही है, बड़े सारे लोग फोन में लगे रहते हैं, तो फोन को भी रेस्ट चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप गर्मी से बचने के बड़े सारे उपाय ढूंढ रहे हैं, तो जो आज मुद्दा है वो भी बड़ा अच्छा सा है। आप घर में हैं, साथ में एक कमरे में बैठकर कोई ट्रेडिशनल गेम खेल लीजिए।
1: और साथ ही साथ अगर आप मेरी तरह हैं जो थैला लेकर सब्जी मंडी जाने में यकीन रखता है और चुन चुन के सब्जियां लाने में यकीन रखता है, तो आपके लिए भी एक अच्छी न्यूज ये है और सावधान होने वाली बात भी ये है कि यूपी में अब जो विश्वविद्यालय हैं और कॉलेजेस हैं उनमें प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है।
0: दोस्तों, ये एक सराहनीय कदम है कि राज्य विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथिन बैग, प्लास्टिक की बोतलें, चम्मच, प्लास्टिक के कप, प्लेट्स पूरी तरह से बैन कर दिए जा रहे हैं।
1: और इनकी जगह अब आप कुल्हड़ या कागज के बर्तन या जूट के थैले, इन सब का प्रयोग करें। जो कैंटीन वगैरह होती है जिसमें आप प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने कैंटीन वाले भैया को बोलिए कि अब बैन लग चुका है। आप खुद जब मना करेंगे ना सामने से, और वैसे कुल्हड़ वाली चाय पीने में जो आनंद है
0: वो नहीं है उसमें प्लास्टिक और कागज के कप में।
1: और सबसे बड़ी बात ये भी होती है ना विनय, कि प्लास्टिक में जो खाना रखा रहता है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। हमारा मानसिक संतुलन भी गड़बड़ाने लगता है अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करें।
0: बिल्कुल, बहुत सारे माइन्यूट से पार्टिकल्स होते हैं प्लास्टिक के, जब उसमें कोई गर्म चीज जाती है तो वो टूटते हैं और हमें पता भी नहीं है कि हम ऐसी चीजें अपने शरीर में डाल रहे हैं जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही हानिकारक हो सकती हैं।
1: जी, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, याददाश्त कमजोर पड़ सकती है, सीखने की जो हमारी कैपेबिलिटी है वो कम हो सकती है, चिंता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें बढ़ सकती हैं।
0: और आजकल यही सब बढ़ भी रहा है क्योंकि हम प्लास्टिक को अपने जीवन से हटा नहीं रहे हैं। आप कोशिश करिए कि अपने घर में कपड़े का थैला, जूट का थैला जरूर रखिए, जाइए तो उसे लेकर ही जाइए। और आजकल तो बड़े स्टाइल से बैग
1: मैं
0: भी आ
1: यही कहने जा रही थी कि देखिए प्लास्टिक के थैलों में कोई अट्रैक्शन नहीं। आप जूट के और कपड़े के थैले लीजिए, इतने सुंदर सुंदर होते हैं, उनमें बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखे होते हैं, बहुत अच्छे प्रिंट्स बने होते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है विनय, जो चीज आप कैरी करते हैं, जैसे जो कपड़े आप पहनते हैं ब्राइट एंड ब्यूटीफुल हो, आप अपने साथ जो एसेसरीज जिनमें थैले भी हो सकते हैं जूट के या कपड़े के, वो भी अगर बहुत सुंदर सुंदर कैरी करें तो आपके माइंड सेट पर बड़ा फर्क पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब भी आप कहीं जाते हैं, चलते हैं, तो आपके साथ आपके जो एक्सेसरीज आर्टिकल्स वो भी साथ चलते हैं। तो अगर आप ये सब बातों से तफाक रखते हैं तो आज से ही अपने बच्चों के हाथ से वो ले लीजिए, क्योंकि जो ये दिशा निर्देश है ये जनभवन की ओर से जारी कर दिए गए हैं। तो अब तो आपको अपने बच्चों को जूट या कपड़े के बैग या प्लास्टिक का कोई भी आइटम नहीं देना है।
1: स्पेशली अगर आप टिफिन देते हैं बच्चों को तो ध्यान रखिए कि वो प्लास्टिक के ना हो, अच्छा स्टील का दीजिए या बहुत अच्छे, अब तो बहुत बढ़िया चीज़ें आने लगी हैं मार्केट में, तो इन सब चीज़ों का जब हम ध्यान रखेंगे ना तभी हम बेहतर कल का निर्माण भी कर पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अभी वापस जाएंगे, लौट के आएंगे समाचारों के बाद, तो थोड़ी और बतियाएंगे।

पद से इस्तीफा दिए जाने की खबर भी आज अखबारों के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई है। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती हैं। अगला बुलेटिन सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए रेनबो।

0: रात की बहती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: जी बिल्कुल झूमने लगेगा, लेकिन ये रात 10 बजे से झूमेगा। अभी फिलहाल तो हम गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकेंड हाफ में है, 9:05 का समय, विनय और अनुपमा आपके साथ हैं।
1: बिल्कुल, और आप जानते हैं कि गुड मॉर्निंग लखनऊ में बड़ी सारी बातें होती हैं, और हमने एक मुद्दा आपके सामने रखा है, और वो इसलिए क्योंकि आज है वर्ल्ड ओलंपिक डे।
0: और ओलंपिक डे 23 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। 1894 में शायद शुरुआत हुई।
1: ये जो दिन है, साल 1994 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की याद में मनाया जाता है, और साल 2026 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का जो थीम है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स।
0: और ये बात बहुत सही है कि जब हम अब जैसे ओलंपिक की बात करें, बहुत सारी कंट्रीज आती हैं खेलने, और जब हम आपस में खेल रहे होते हैं बहुत अच्छे रिश्ते डेवलप होते हैं, बहुत कुछ हम जानते हैं उन लोगों के बारे में, तो ये जो ब्रिजेस हैं हमारे बीच में बनते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मदद साबित होते हैं, रिश्तों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर साबित करते हैं।
1: बिल्कुल, और आप जानते हैं दोस्तों, ओलंपिक में लोग सिर्फ खेलते नहीं हैं, वहाँ पर बड़े सारे संस्कृति को एक दूसरे से शेयर करते हैं, कई सारे इमोशंस मिलते हैं, और अनुशासन समर्पण से लोग अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
0: और इसलिए भी आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम एक दूसरे को समझने में बहुत कंफर्टेबली एक दूसरे को समझ लेते हैं जब हम खेल के मैदान पर होते हैं।
1: ये तो है।
0: अब देखिए, इस वक्त चाहे फुटबॉल फीवर चल रहा हो, चाहे क्रिकेट का फीवर चल रहा हो, बड़े ही लगन से और मन से हम गेम्स देखते हैं बैठ के, लेकिन बहुत सारे खेल ऐसे भी हैं जो आप घर के अंदर अपने बच्चों के साथ भी बैठ के खेल सकते हैं।
1: और वो है पारंपरिक खेल जिनकी हम आज बात कर रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि कौन सा ऐसा पारंपरिक खेल है जो आप खेला करते थे अपने बचपन में और अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, और उन वो आपको क्यों पसंद है भी बताइए fmakashwani@gmail.com पर।
0: और आप सबके जो ईमेल्स हैं वो हमारे सामने हैं, जो हम इस गाने के बाद सब तक पहुंचाएंगे।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जय दोस्तों, आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की 100.7 FM रेनबो पर। आज अनुपमा और विनय आपके साथ हैं। मैंने नाम सही लिया?
4: एकदम बढ़िया।
3: बड़े सारे लोग अनुपमा बोल देते हैं।
4: हाँ, गलत बोलते हैं, क्या ही बोले हम। तो अनुपमा नाम है मेरा।
3: उनको चाय मत पिलाए करिए,
4: है ना। बहुत अच्छा आपका सुझाव है। तो जिसको भी मेरे साथ मेरी लाई हुई चाय पीनी हो, पहले मेरा नाम सही से बुलाए। चलिए, 9:11, गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप, और एक मुद्दा आपके सामने रखा और हमारे सामने बहुत सारे ईमेल्स हैं।
3: बिल्कुल, और लखनऊ अलीगंज से, अच्छा, हमारे साथ सुनील कुमार जी ने जो कल घटना हुई उसके बारे में अपनी श्रद्धांजलि रखी है, एक कविता के माध्यम से है। तो हम उस कविता की दो पंक्तियां पढ़ देते हैं कि आंखों में आंसू बहते हैं, दिल से आह निकलती है, अग्नि में भस्मीभूत हो गए, दिल से आग निकलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील प्रांजल जी, विकास नगर लखनऊ से इन्होंने मेल किया है। पूरा लखनऊ इस अग्निकांड से प्रभावित है।
4: पूरा लखनऊ नहीं, इस समय तो पूरा विश्व आहत हो रहा है इस बात से, लेकिन जिंदगी की जो बाकी चीज़ें चलनी हैं उनको तो चलाना ही है ना, इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तो चलिए, हमने आज एक मुद्दा रखा गुड मॉर्निंग लखनऊ पे, जिस पे अजय सिंह कुमार लिखते हैं। क्या आपके ईमेल में और भी बात थी कोई?
3: नहीं नहीं, और कोई बात नहीं थी।
4: अजय सिंह कुमार हैं और ये लिखते हैं कि बचपन की यादें जब भी करो बहुत मिस करते हैं। मेल शामिल करने के लिए धन्यवाद। देखिए, मेल तो शामिल कर लिया लेकिन मुद्दे पे आपने कुछ भी नहीं लिखा। ज़रूर बताइए हमको कि आप कौन कौन से खेल खेलते थे अपने बचपन में।
3: और साथ ही साथ राहुल कुमार ने भी लखनऊ से हमें मेल किया है, और ये अच्छा, इन्होंने राखी जी को स्पेशली गुड मॉर्निंग कहा।
4: हाँ, वो जब हम आते हैं तो वो राखी को ही गुड मॉर्निंग करते हैं।
3: अच्छा, और इन्होंने मुद्दे पर भी लिखा है कि ये

0: वो खेल हैं जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि अब लोगों के लोगों को शीर में, अब कुछ इंग्लिश में है, कुछ इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि उन खेल उन गेम्स को वो याद कर रहे हैं।
1: विनीत कुमार हैं रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच।
0: और साथ ही साथ कृष्ण कुमार ने हमें गोमती नगर लखनऊ से मेल किया है और ये कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे से सुन रहे थे और सुनकर मन प्रसन्न हो गया। तो कृष्ण कुमार जी, हम भी सुबह से सुन रहे हैं और गाने बहुत बढ़िया थे, और मुद्दे पर ये कह रहे हैं कि पुरानी यादें ताज़ा कर दिया है आपने, मुझे तो छोटी बहनों को परेशान करने में मज़ा आता था।
1: भाइयों का सबसे फेवरेट गेम होता है ये, है ना, चोटी पकड़ के खींच लेना, पीछे से मुक्का मार देना, तकिया फेंक देना, है ना।
0: और हाँ। हम लोग पता है इतने डेंजरस थे कि हम लोग ने, मतलब हम, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमने क्या किया था, विक्स अपनी बहन के आंख में लगा दिया, तो सो रही थी।
1: आप जरा दूर बैठे
0: तब छोटे हुआ करते थे। हाँ। तो कहते हैं कि
1: छोटे तो आप अभी भी हैं, बड़े थोड़ी ना हुए हैं, हम सब छोटे हैं, हम सब के अंदर एक बच्चा रहता है, और अभी भी आपको लूडो खेलने का, कैरम खेलने का, सिकड़ी खेलने का मौका मिले तो आप खेलने,
0: बिल्कुल बिल्कुल मजे से खेलेंगे। और कृष्ण कुमार जी ने लिखा है, कभी लूडो खेलते समय हारने लगते तो गोटी ही चुराना, कुछ खाने की चीज, मिठाई इत्यादि चुरा कर खा लेना, अब वो दिन कभी नहीं आएंगे।
1: जैसे मेरा भाई, जब हम लोग उनो जैसे कार्ड गेम्स खेलते थे ना, तो वो पत्ते नीचे छुपा के रख लेता था, कारपेट के नीचे या अपने पैर के नीचे, अब भी करता है। हाँ, तो वो बचपना और वो बचपन की शरारतें,
0: आपको पता है क्रिकेट खेलते हैं ना, तो बच्चे अगर बैट लेकर आए हैं तो उन्हें बैटिंग करनी है, बॉल लेकर आए तो बॉल लेकर भाग जाते थे कि हम, मेरी बॉल है।
1: सच बात है। और राधे श्याम जी है कासगंज से और ये लिख रहे हैं, आप दोनों कैसे हैं, सबसे पहले तो कल की जो दुर्घटना हुई है उस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और बचपन में एक सर्कल में बैठते थे और एक कैंडिडेट को खड़ा करते थे जिससे वो रनिंग करने लगता था, और पोशंपा याद है आपको, एक वो वाला गेम था जिसमें डाकुओं ने घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। फिर वो ऐसे चक्कर घूमते थे, फिर एक जगह बैठ जाते थे, फिर उस कोर्ट के घूमना होता था।
0: बड़े अलग तरह के खेल थे, उनमें एक्सरसाइज भी थी, एंटरटेनमेंट भी था, और समय तो बीतता ही था मजेदार तरीके से।
1: तो चलिए आपकी बातों के साथ सिलसिला जारी रखेंगे, फिलहाल ये ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
1: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
2: 9:20 हो गए।
3: तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज एक बार फिर से आपके साथ आपके दो दोस्त हैं, अनुपमा और विनय।
2: कितनी भी चीज़ें अंधकार में डूबें, कितनी भी चीज़ें ख़राब होने लगें, एक उम्मीद की रोशनी हमेशा रहती है सामने। और आज का ये पावन दिन बहुत सारी ऐसी ऊर्जा, बहुत सारी ऐसी आशाएं लेकर आता है, आया है, जो हमारे कल को बेहतर बनाएंगी।
3: बिल्कुल। और आप जानते हैं कि आज है मंगलवार और आज है बड़ा मंगलवार,
2: आखिरी बड़ा मंगल। इस बार हमने दो ज्येष्ठ के माह सेलिब्रेट किए, जिसको हमने पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना,
3: है ना? तो ये जो महीना है हनुमान जी को, बजरंग बली जी को समर्पित, उसको हमने इस बार बहुत लंबे समय तक मतलब याद किया।
2: और देखिए, आज की जहाँ तक बात है, शहर की जो हलचल और चहल पहल है, रात 12 बजे से मंदिरों के पट खुले हुए हैं। और मैं जब आई हूँ सुबह 5 बजे, जब मैं 5 बजे के पहले ही घर से निकली थी, तो बहुत मतलब मंदिरों के आसपास खासी भीड़ हो चुकी थी।
3: और सुबह से ही लोग, सुबह से नहीं, रात 12 बजे से ही लोग भगवान हनुमान जी, बजरंग बली जी के दर्शन पूजन के लिए घर से निकल पड़े थे। और आप अगर लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, तो आपने भंडारों के जो पंडाल लग गए थे रात से ही।
2: और ये जो भंडारे होते हैं ना, आप जाते हैं ऐसी जगहों पे?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और बहुत अच्छा लगता है जब आप उस भंडारे पे पहुंचते हैं ना, तो सारे भेदभाव मिट जाते हैं। आप एक ही लाइन में खड़े होते हैं और वो प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं। आप चाहे 4-पहिया वाहन से आए, चाहे पैदल आए, चाहे 2-पहिया वाहन से आए, लेकिन वहां पर ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, उस भंडारे में हम सब एक होते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जो प्रसाद है, वो उसमें जो स्वाद आता है, वैसा वैसी पूड़ियां हम लोग घर में बनाए तो नहीं खा पाएंगे, बनेंगी
2: ना वो पूड़ियां बनेंगी, ना वो कद्दू की सब्जी बनेगी,
3: बिल्कुल, और वो स्वाद भी नहीं आएगा।
2: और वो जो बहुत ही हल्के से गुलाबी रंग का शरबत मिलता है ना, वो भी आप घर में बना के दीजिए, कोई नहीं पिएगा
3: जी।
2: वहां सब भंडारे पर देखिए, स्टॉल्स पर कितने प्रेम से, कितने चाव से, कितने अपनेपन से ईश्वर का प्रसाद समझकर जब उसको ग्रहण करते हैं, तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है।
3: बिल्कुल। और जो आयोजक होते हैं, वो भी बड़े ही प्रेम, सद्भाव और बड़ी एकता से सबको प्रसाद दे रहे होते हैं, और उनके हाथों में भी प्यार होता है कि भगवान आशीर्वाद स्वरूप उनके द्वारा लोगों को प्रसाद दिलवा रहे हैं।
2: बिल्कुल। और देखिए, बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ पर यह आयोजन हो रहा हो, वहाँ पर जो लोग इस तरह से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं,

0: जो दोने पत्थर ले रहे हैं उनको इस तरह से ना बिखराएं कि वो जो सारी व्यवस्था है ना वो खराब दिखने लगे. हमेशा ये इस तरह की चीजें रखी होती हैं जहां पर आप इस्तेमाल किए हुए दोने पत्थर फेंक सकते हैं. सड़क पर कूड़ा करकट फैलता है तो फिर हमारे शहर की खूबसूरती में दाग लगता है.
1: बिल्कुल. और साथ ही साथ आप जानते हैं कि लखनऊ शहर में जगह जगह आयोजन हो रहे हैं तो ट्रैफिक का भी आप ख्याल रखिए. आप अपनी गाड़ी को संभाल कर अगर साइड में कर देंगे और प्रसाद ग्रहण करके अगर आप जाएंगे तो वो जो रोड बाधित नहीं होगी.
0: और हम तो कह रहे हैं कि जब आप जाइए भंडारे में तो सेल्फी जरूर ले लीजिएगा.
1: क्या बात है,
0: पोस्ट करिएगा फिर.
1: जी, सेल्फी ले लेंगे ना तो हमेशा वो याद बन जाएगी और वही याद हमेशा के लिए आपके दिल में छप भी जाएगी.

0: करते रहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि कहाँ पर यातायात की क्या व्यवस्था है, क्योंकि आज दो बड़ी बातें हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक में बहुत ज़रूरत होगी हमें जानने की। हमारे साथ हैं विकास जी।
1: जी सर, गुड मॉर्निंग। लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज लखनऊ शहर में वर्तमान में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है। पीक आवर्स का समय है, तो ऐसे में हमारा शहीद पथ में विजयपुर अंडरपास और अयोध्या रोड पर हमारा कमता, चिन्हट और पॉलिटेक्निक, यहाँ थोड़ा प्रेशर रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर सीतापुर की बात करें तो मड़ियाव ढाल और इंजीनियरिंग कॉलेज, ये थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट रहेगा, लेकिन यातायात पुलिस, नागरिक पुलिस मौजूद रहकर के सुगम यातायात संचालन करा रही है। आज जैसा कि आप सभी को विदित है, बड़ा मंगल है और बड़े मंगल के अवसर पर जो हमारे चार प्रमुख मंदिर हैं, वो उसमें अलीगंज के दो प्रमुख मंदिर तथा महानगर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारा हनुमान सेतु मंदिर और हजरतगंज और चौक क्षेत्र की बात करें तो हमारा हनुमंत धाम मंदिर जो क्लार्क अवती राय के पास है, यहाँ अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है हजरतगंज में, वहाँ भी जो है अत्यधिक भीड़ रहता है। इस दौरान हम पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था मंदिरों के आसपास किए हुए हैं, साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी लगी है। बस यही अनुरोध है कि यदि आप दर्शन पूजन के लिए जा रहे हैं तो आप पार्किंग स्थल पे ही अपने वाहनों को पार करें। यदि आप हनुमान सेतु की तरफ हैं तो कालविन तालुकेदार और हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो प्ले ग्राउंड है वहां पर जो है पार्किंग व्यवस्था है, और अगर आप हनुमंत धाम की तरफ हैं तो लक्ष्मण मेला मैदान हमारा जो झूले लाल पार्क के पास में है वहां तो पार्किंग की व्यवस्था, दोनों तरफ हमने पार्किंग व्यवस्था कर रखी है। तो इस प्रकार से अपने वाहनों को पार्किंग स्थल पार करें, और जगह जगह आज भंडारे भी रहेंगे तो भंडारे के दौरान जो भंडारा संचालक हैं, आयोजक हैं, उनसे अनुरोध यही रहता है कि आप ट्रैफिक वॉलंटियर्स लगाएं। साथ ही हम ट्रैफिक के रेसर मोबाइल्स आदि का यूज करके वहां पर सुगम यातायात का संचालन कराएंगे। दूसरा, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि है, इस अवसर पर जो है एक कार्यक्रम प्रस्तावित है सिविल अस्पताल के पास में। तो अभी लगभग सिविल अस्पताल का जो गोल्फ से सिविल अस्पताल वाला मार्ग है ये लगभग 9:30 बजे से लेकर के 10:15 बजे तक ये यातायात हेतु प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान यदि आप जो है इस मार्ग का प्रयोग करना चाह रहे थे तो कृपया वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। गोल्फ से लेकर के हजरतगंज पार्क रोड वाला जो ये रोड है इसको अवॉइड करें ताकि आपको कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। जी
1: सर, आज शाम को क्या पुराने लखनऊ में भी कोई डायवर्जन या आयोजन हो रहा है?
2: शाम को जो है पुराने लखनऊ की तरफ तो उस तरह का कोई वो नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा एक कल घटना घटित हो गई थी, जैसा कि आप सभी को विदित होगा अलीगंज में आगजनी का, तो उससे जो अस्पताल है हमारा जो KGMU का है और इधर के जो अस्पताल है वहां पर जो है थोड़ा सा लोगों का अधिक आवागमन रह रहा है, तो इस दौरान जो है थोड़ा सा वहां पे व्यवस्था है, बाकी सर कुशलता है सर।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे विकास जी आपको, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। हमारे साथ थे विकास जी जो ट्रैफिक की जानकारी रोज की तरह हम तक पहुंचा रहे थे। और देखिए, शाम में अवध आएगा, आप तक पहुंचेगा शाम को, तो अगर कोई ऐसा चेंज या कोई ऐसी खास चीज होती है तो आप तक जरूर पहुंचाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल आप गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं, आज विनय और अनुपम आपके साथ हैं।
3: जानकी नाम पे होते ना,

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: You're listening to 100.7 FM Rainbow, the heartbeat of Lucknow.
3: जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग लखनऊ, आप सुन रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं और आज का दिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के मायने से।
4: 2014 की बात करें अभी की, तो गुजरात का रानी की वाव और हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
3: जी हाँ दोस्तों, और अगर हम 1810 की ओर चलें तो बॉम्बे के डकन डॉक्स का निर्माण पूरा हो गया था आज ही के दिन।
4: और इसके अलावा 1868 में क्रिस्टोफर एल शोल्स को टाइपराइटर के लिए पेटेंट मिला था।
3: साथ ही साथ दोस्तों, 2013 की बात करें तो निक वाल्डेना अमेरिका के ग्रैंड कैनियन की पहाड़ी को रस्सी पर चलकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे।
4: रस्सी पर चलना
3: जी।
4: और साथ ही साथ विनय, आज हम अंतरराष्ट्रीय महिला इंजीनियरिंग डे भी मना रहे हैं। अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, बहुत महिलाएं

0: चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस में आ गए हैं, लेकिन शायद एक समय ऐसा रहा होगा जहाँ पर इन चीज़ों को ज़्यादा कहते हैं ना तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ी होगी और तब से इसकी शुरुआत हुई होगी। और साथ ही साथ आज संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी है।
1: जी, 2002 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि जन सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है, लोगों की सहायता पहुंचा रही है।
0: 1757 में प्लासी का पहला युद्ध भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नाम की जगह पर लड़ा गया, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के साउथ से 22 मील की दूरी पर है।
1: और
0: पता किसके बीच में लड़ा गया था?
1: किन के बीच?
0: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब।
1: तो हिस्ट्री के मायने अगर देखें तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट चीजें थी और इनमें से कई सारे सवाल आपके कई सारे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं।
0: और एग्जाम्स और सवाल की बात, तो एक सवाल हमने भी किया आपसे, एक मुद्दा आपके सामने रखा कि बता दीजिए भाई बचपन के कौन कौन से गेम्स हैं वो जो आप अब मिस करते हैं या मिस नहीं करते हैं, अपने बच्चों के साथ भी खेलते हैं।
1: बिल्कुल। और मेल्स हमारे पास बड़े सारे हैं, तो मोनू सेठ जी ने हमें अमेठी से मेल किया है। बचपन में गुल्ली डंडा खेल रहा था तो खेलते खेलते एक लड़की को आंख में लगने से बच गई और आज तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि गुल्ली आंख पर ही क्यों भागती है।
0: चलिए, निधि है, निधि चौरसिया है, इन्होंने गुड मॉर्निंग लिखा है। और साथ में अरुण कुमार जी हैं, मुद्दा सुन नहीं सके लेकिन ओलंपिक डे पर सबको बहुत बहुत इन्होंने बधाई दी है।
1: और साथ ही साथ अंजू करके एक मेल है, उन्होंने हमें मेल किया है और लिखते हैं गुड मॉर्निंग, और साथ ही साथ लिखते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो घर पे हम लोग टीवी पे वीडियो गेम लगाकर खेलते थे,
0: मारियो कॉन्ट्रा।
1: मारियो, जी जी बिल्कुल, जैसा मारियो कॉन्ट्रा लिखा भी इन्होंने। और इन्होंने लिखा है कि स्टार वॉर्स ये सब खेलते थे, और भी गेम्स थे जैसे कि बिजनेस लूडो और कार्टून
0: कैरम
1: फन था। घर मेरे घर पे तो भाई छोटे बहन को नीचे जमीन में
0: लिटा के उसके पैर पकड़ के उसके पूरे घर में पोछा की तरह घुमाती थी। सोचिए, और जब वो 2-3 साल की थी मेरी बहन, जब वो उसके लिए क्या आई लैशेस काट दिए थे, हाय भगवान,
1: ये तो मेरे ऐसे भी डेंजरस था।
0: हाँ, देखिए ये सब ना करिए और ना ही इस तरह की बातों को याद करिए जो चीज़ें चली गई इस तरह की, बच्चों के सामने बिल्कुल ना आए। हम तो उनकी बात कर रहे हैं, वो गेम्स जो लूडो और सांप सीढ़ी जो आपने बताया वो, या फिर गिल्ली डंडा या कंचे या सिकड़ी जिसको कड़क्को भी बोलते थे।
1: जी, और वो नहीं होता था जिसे हम उछालते थे कुछ पत्थर लेकर,
0: हाँ, और उसको इकट्ठे करते थे, हाँ, फिर वो 3-4 ऐसे करके एक हाथ में आते
1: गुट्टक हम बोलते थे।
0: अच्छा, गुट्टक,
1: हाँ।
0: वाह,
1: तो बड़े सारे गेम्स हैं। अगर पुराना समय जीने का वक्त मिले तो भाई हम तो जरूर वो गेम्स खेलना चाहेंगे।
0: रोशनी रावत लिखती हैं कि एक खेल ऐसा भी था जिसमें नीचे एक इंसान रहता था और बाकी सब पेड़ के ऊपर, और नीचे एक लकड़ी को छूना होता था, जो नीचे होता था वो ऊपर किसी एक को छूकर लकड़ी को छू लेता था तो जीत जाता था।
1: क्या बात है। और देखिए अभिजीत श्रीवास्तव जी ने भी हमें मेल किया है, ये लिखते हैं कि हम लोग बित्ती खेलते थे और गुट्टा खेलते थे, लाल परी आना भी खेलते थे, और भी तमाम खेल खेलते थे जो गायब हो गए हैं।
0: बबीता राव लिखती हैं कि बचपन में बहुत सारे गेम्स खेले हैं जैसे क्रिकेट, सिकड़ी, गिल्ली डंडा, आइस पाइस, लूडो, कैरम, इन आउट, म्यूजिकल चेयर, गिट्टी फोड़, विश अमृत। और ये लिखती हैं कि आप अपना और सर का पसंदीदा गेम भी हम लोग को बताइए।
1: मेरा जो पसंदीदा गेम था वही आइस पाइस।
0: अच्छा, मुझे तो बहुत सारे गेम्स अच्छे लगते थे, एक था आंख पे पट्टी बांध के लोगों को ढूंढना, दूसरा विश अमृत आपने लिख दिया, एक खो खो गेम हुआ करता था,
1: एक हम लोग ऊपर नीचे नहीं करते थे, छूते थे,
0: विश अमृत।
1: हाँ,
0: और सबसे ज्यादा जो पसंद था हमेशा और अब भी वो है बैडमिंटन। तो मौका मिले तो आज भी हाथ आजमा लिए जाते हैं, लेकिन चलिए अच्छा लग रहा है आज उन यादों में है हम लोग, उन चीजों को याद कर रहे हैं, अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतारने की कोशिश करिए।
1: बिल्कुल। और मुनेश कुमार जी ने लखीमपुर खीरी से बस गुड मॉर्निंग कहा है, कहीं व्यस्त है इसीलिए बहुत कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। और साथ ही साथ ब्रजेश सिंह दीपू इटहुआ कैसरगंज बहराइच से भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: उसको कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग। अभी किसी ने ईमेल में पूछा था मुझसे कि आप आज गुनगुना नहीं रही हैं।
1: हाँ, सुबह मैंने सुना आपने जरा सा गुनगुनाया।
0: सुबह सुबह मन नहीं अच्छा था, अब थोड़ा बेहतर।

0: कर रहे हैं हम, लेकिन चलिए गुनगुनाते तो हम रहते ही हैं। पूरे दिन ऐसा नहीं बीतता कि हम बिना गुनगुनाए निकाल दें, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू ये तो आज आपके लिए बनता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, आज आपका बर्थडे है, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका दिन बहुत अच्छा बीते और बहुत खुशी के साथ आप आज का दिन मनाएं।
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ जिन साथियों की आज मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत बहुत बहुत बधाई, और किसी भी स्पेशल डे को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको बधाई, क्योंकि जो ये दिन है वो कभी वापस नहीं आएगा। और अगर आप कितने भी साल के हैं अपना बर्थडे खूब सेलिब्रेट करिए।
0: बिल्कुल सेलिब्रेट करिए, और आपके अंदर का जो बच्चा है ना बहुत उत्साहित रहता है आज के दिन, तो उसके उत्साह को बनाए रखिए, जिंदगी भर ये बच्चा आपके साथ रहेगा और बर्थडे पे बड़ा गुनगुनाएगा आपके अंदर।
1: जी बिल्कुल, तो बर्थडे एक ऐसा दिन आता है जैसे मेरा आने वाला है, तो लगता है कि जी कि बड़ा बड़ा ही अलग सा एहसास होता है जब कोई आपको
0: आने वाला, तो हमारा भी है पर अभी टाइम है।
1: तो सभी साथियों को बर्थडे, और आज बड़े सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले नाम आता है 1921 में जन्म हुआ रहमान जी का, जो जन्मे सईद रहमान खान, इनका पूरा नाम है और फिल्मी जगत में हमने रहमान
0: के ही नाम से जानते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे रहमान, और बहुत उम्दा फिल्में इन्होंने दी हैं।
1: बिल्कुल, और कुछ फिल्मों के नाम हम जरूर लेंगे, प्यासा, चौधवी का चांद, साही बीबी और गुलाम और वक्त जैसी बहुत सारी यादगार फिल्में की हैं। 1950 से 60 के दशक के ये उन प्रमुख कलाकारों में रहे हैं जिन्होंने
0: ज्यादातर इन्होंने नेगेटिव किरदार निभाए थे फिल्मों में, लेकिन उन किरदारों ने भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी।
1: बिल्कुल, और आज एक और महान जो अभिनेता है उनका बर्थडे है, और 1952 में इनका जन्म हुआ, राज बब्बर साहब।
0: इनका जिक्र तो हमने सुबह भी किया था, लेकिन गुड मॉर्निंग लखनऊ है तो भाई बात बनती है इनके बारे में भी बात करने की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें जो बहुत कहते हैं ना माइलस्टोन साबित हुई हैं। अगर बॉलीवुड की बात की जाए, निकाह की बात करें, इंसाफ का तराजू की बात करें, प्रेम गीत की बात करें, आज की आवाज़, अगर तुम ना होते, और देखिए हर फिल्म में विनय इन्होंने अलग अलग तरीके के किरदार अपनाए। मैं अगर एतबार की बात करूं, मैं अगर तुम ना होते की बात करूं, एतबार में बड़ा नेगेटिव इनका शेड था, और अगर तुम ना होते में बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा कैरेक्टर था इनका। निकाह में बहुत सुंदर, बहुत मोहब्बत भरा इंसान दिखाया गया था, लेकिन सारे ही किरदार कितनी खूबसूरती से इनके चेहरे पर आते थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आप बताएं कि आज भी ये एक्टिव हैं फिल्म जगत में, और साथ ही साथ मुकेश खन्ना शक्तिमान तो ये किरदार है जो आज अपना बर्थडे मना रहा है। 1958 में इनका जन्म हुआ, और हम सभी जानते हैं कि बीआर चोपड़ा की जो धारावाहिक था महाभारत, उसमें भीष्म पितामह का बहुत ही बेहतरीन रोल अदा किया इन्होंने, और हमने बताया शक्तिमान से ये घर घर तक पहुंच गए।
0: बिल्कुल, तो इन सब के साथ आज आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीखने की इनसे भी हैं, बहुत सारी चीजें सीखने की आपसे भी डेफिनेटली होंगी, है ना। तो बस अपने आसपास खुशियां बांटते रहिए, पॉजिटिविटी बिखेरते रहिए। और राज बब्बर का जिक्र हुआ था तो अब तक एक्टिव है ये भी जिक्र हुआ था, तो चलिए लेटेस्ट मूवी का गाना बजा देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: बहुत अच्छा लगता है हमें जब आपके ईमेल्स मिलते हैं हमें, लेकिन कोशिश किया करिए कि आप अपने ईमेल 9:30 तक जरूर भेज दें, क्योंकि अब अगर आप भेजेंगे तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है।
5: बिल्कुल, और बड़े सारे साथियों ने हमें मेल किए हैं, जिसमें रजनीश पासवान, जावेद पटेल और साथ ही साथ उस्मान अंसारी जी ने और मोनू सेठ जी ने फिर से हमें मेल किया है।
4: जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हो गया है कि मैं यहाँ से ले लूँ इजाज़त, विनय आपके साथ रहेंगे, लेकिन चलते चलते ये कि भाई गर्मियों की शामें जो होती हैं ना, और गर्मियों की दोपहरें जो होती हैं, उनमें आप बहुत सारे ऐसे गेम्स खुद भी खेल सकते हैं, अपने बच्चों के साथ भी, जो आपको पुरानी यादों में तो ले ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं।
5: बिल्कुल, तो जो गेम्स हैं, पारंपरिक गेम्स हैं, वो आपकी पूरी एक्सरसाइज है, पूरी शरीर की एक्सरसाइज है। और मोबाइल में आप जानते हैं कि मोबाइल से बस स्ट्रेस बढ़ रहा है और बच्चे कुछ सीख नहीं रहे, आंखें खराब हो रही हैं। तो बेहतर है कि आप और अपने बच्चों को ये मोटिवेट करिए कि जो पुराने गेम्स थे, पारंपरिक खेल थे, वो आप उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करें।
4: तो बस अपना ख्याल रखिए इस गर्मी में, अपने आसपास का भी ध्यान रखिए, औरों की मदद करते रहिए। बड़ा मंगल की बहुत शुभकामनाएं हैं। भंडारे में जाइए, सेल्फी खींचिए और साथ ही साथ सुनते रहिए रेनबो। मुझे दीजिए इजाजत, आप रहिए विनय के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल हुए अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज स्थित एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने इमारत को सील कर दिया है। फॉरेंसिक यूनिट और फायर ब्रिगेड की टीम यहां से जांच के लिए सबूत एकत्र करेगी। इस घटना के बाद संबंधित इमारत को लेकर LDA पहले भी कार्रवाई और पुराने रिकॉर्ड जांच के दायरे में आ गए हैं। वर्ष 2016 में अनधिकृत निर्माण को लेकर इस इमारत को गिराए जाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में ये आदेश रद्द कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। इसके लिए विशेष जांच दल SIT गठित की गई है और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश की जिन 4 हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र से अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ लखीमपुर खीरी, सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला गोखरनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सधौली, महुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। चंदौली के बलवा थाना क्षेत्र के बिलवानी गाँव में कल शाम भाई बहन की नहर में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे घर के बाहर कुछ ही दूरी पर स्थित नहर के बंधे पर एक साथ खेल रहे थे। इसी दौरान दोनों का पैर फिसल गया जिससे वे नहर में गिर गए। CHC ले जाने पर दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: ही नहीं लगता पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं,
1: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
0: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC, PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
5: धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 10:04 हुए हैं, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो और शुरू हो चुका है सुपर हिट सॉन्ग। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
3: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
4: धड़कता है जो हर दिल में
5: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
2: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।

0: experienced doctors or personalized care.
1: My pediatric brain and spine surgery, PICU, EEG, MRI, genetic test, physio or speech therapy जैसी सुविधाएं ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए.
0: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ. कॉल 666-4444.
2: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो.

जय दोस्तों, मुस्कुराइए। आप लखनऊ में है 100.7 FM रेनबो, आप सुन रहे हैं आज विनय के साथ सुपर हिट सॉन्ग चल रहे हैं, और फिलहाल गर्मी के मौसम में बस इस गाने से ही भीग लीजिए। सुनते रहिए।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

दोस्तों, सुपर हिट सॉन्ग्स पर झूमने के बाद अब वक्त हो चला है कि इस प्रोग्राम से इजाजत ले आपका दोस्त विनय। न्यूज ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं एक और प्रोग्राम लेकर। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए 107 FM रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, सुबह के 11 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता को सफल हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाबी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक और उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को भी पछाड़ दिया है। चित्रकूट में खातेदारों और सह खातेदारों के गांठों में अंश निर्धारण और त्रुटिपूर्व अंश निर्धारण संशोधन के लिए 22 जून से 4 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत निर्धारित रोस्टर के अनुसार लेखपालों द्वारा गांवों में बैठक आयोजित कर अंश निर्धारण और संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। बैठक से पहले ग्रामीणों को निर्धारित तिथि की सूचना दी जाएगी। माफिया अतीक अहमद और उनके करीबियों की कथित तौर पर अर्जित बेनामी संपत्तियों की जांच के लिए पुलिस ने विशेष जांच टीम SIT का गठन किया है। ये कार्रवाई एक अधिवक्ता की शिकायत पर की गई है। अपर पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था डॉक्टर अजय पाल ने आदेश जारी कर अतीक अहमद और उनके परिजनों के परिचित मदन लाल भारतीय के नाम खरीदी गई संपत्तियों की जांच के निर्देश दिए हैं। SIT को 3 दिन के भीतर जांच शुरू करनी है। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए अमरोहा में आज सुबह से शाम 4 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि इसमें राज्य आयुक्त दिव्यांगजन डॉ. शेखर कुमार झा मौजूद रहेंगे। मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजनों की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल,
1: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।
2: दोस्तों हमें भी आपसे बहुत इश्क है और इसीलिए हर रोज सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक हम लेकर आते हैं बड़े सारे प्रोग्राम। और 11:05 हो चला है, आपका दोस्त विनय हाजिर है लेकर प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे। सुनते रहिए और संदेश भेजते रहिए 100.7 FM रेनबो पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जय दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम। और सबसे पहले मेल किया है हमारे पक्के श्रोता, इन्होंने ये लिखा है कि आपका पक्का श्रोता मुनेश कुमार राज, ये हमें भानपुर हरौवा जिला लखीमपुर खीरी से मेल करते हैं और इन्होंने हमें नमस्कार कहा है और साथ ही साथ दो लाइन भी लिखी हैं कि हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल, क्या बात है, वाह। संदेश कह रहे हैं कि इस समय गन्ने की खेती और धान की रुपाई हेतु तैयारी चल रही है, ऐसे में गांव देहात के सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृषि में इस्तेमाल होने वाली पॉइजन दवाई को बच्चों और बेजुबान जानवरों की पहुंच से दूर रखें। ये बात तो सही है कि अगर आपने घर में रखा हो तो थोड़ा सा दूर रखेंगे तो बेहतर रहेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया है कि कई बार ऐसी घटना हो जाती है कि ये पॉइजन बच्चों और बेजुबान जो जानवर हैं उन तक पहुंच जाती है, इसीलिए उसे सुरक्षित जगहों पर रखें, तालों में रखें और सावधानी ही बचाव है, ऐसा ही हमें कह रहे हैं। और काम की बात आपने हमें मेल की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ एक और मेल है, थोड़ा शिकायत है मोनू भैया की, और ये कहते हैं कि बड़े ही मन से मेल लिखते हैं और कई बार मेल अधूरा पढ़ा जाता है तो थोड़ी परेशानी होती है। मोनू जी, हम आपको बताएं।

आप तो हमारे रेगुलर लिसनर हैं, आप जानते हैं कि हम सभी पूरा मेल पढ़ते हैं, पर कई बार समय के अभाव के कारण हमें ऐसा करना पड़ता है। तो बिल्कुल भी आप बुरा मत माने, हम बैठे हैं आपका मेल पढ़ने के लिए। कोशिश करें कि मेल जितना शॉर्ट रहेगा उतना बेहतर रहेगा हम सभी के लिए, क्योंकि प्रोग्राम भी तो करना है। फिलहाल एक और बेहतरीन ट्रैक आ रहा है आप सभी के लिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, और डांस करने के लिए तैयार हो जाइए।

जी हाँ, कई बार आंख मारना बड़ा ही डेंजरस साबित हो सकता है, तो देख लीजिए थोड़ा इधर उधर, है ना, जबरदस्ती आंख नहीं मारना। गाना जबरदस्त था, हम तो स्टूडियो में बहुत बैठकर नाच रहे थे। अगर आप हमें देख पाते तो आप महसूस करते कि हम तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और साहिबा अंसारी जी ने हमें फोन किया, हमसे इतनी सारी बात की और फिर पता नहीं क्या हो गया, फोन कट गया। तो साहिबा अंसारी जी ने हमें लखनऊ से मेल किया था और ये हमें मैसेज दे रही थी कि गर्मी के मौसम में आप अपने घर के बाहर पशु पक्षियों जानवरों के लिए पानी ज़रूर रखिए। और साहिबा जी, अगर आपका फ़ोन लग जाता है तो हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे कई सारे दोस्तों ने मेल भी किया है, आइए हम मेल्स पढ़ते हैं। रामराज जी ने हमें लिखा है, श्री गणेशाय नमः, संदेश आपके गीत हमारे में, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और साथ ही साथ आशीर्वाद भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमने हमें मेल किया और आशीर्वाद स्वरूप ये शब्द कहे। और वकील अहमद साहब ने भी हमें मेल किया है, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और कहते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी लगती है और हमें आपका मैसेज अच्छा लगता है, मेल अच्छा लगता है। और कहते हैं कि कुछ जगह समर चलने लगते हैं तो नल पानी में नहीं देते हैं। अच्छा, ओके, हम सबको पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक्चुअली पानी की बर्बादी से जुड़ा ये लिख रहे हैं और इस समय भीषण गर्मी हो रही है, पानी पीते रहें, आम के बाग में है ये, हवा बहुत मस्त चल रही है। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, ज़िला सीतापुर से। साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी मिंकी महक अंसारी, गुलाफ्सा सदीकी, अहमद नवाब। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही। और साथ ही साथ हमें एक और मेल है, ये है, सर जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी, मेरा कहना है कि जो लोग अपने छत से कूड़ा रोड पे फेंक देते हैं, प्लीज़ ये ना करें। मैं तिकैत नगर बाराबंकी से हूँ और मैं कुछ नाम लेना चाह रहा हूँ, कुलदीप, आकाश, रिंकी पिंकी जी और सभी लिसनर्स का। आपने बात बहुत काम की कही है कि इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे देखिए हमारा पर्यावरण गंदा होता है। और आज लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ा मंगल मनाया जा रहा है और बहुत सारे भंडारे लगे हैं और शायद शुरू भी हो चुके होंगे, तो आज के दिन भी हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो पत्तल और जो भी सामग्री आपके हाथों में है उसको इधर उधर ना फेंकें। वहाँ पर एक पर्याप्त स्थान होगा, वहीं पर ही आप फेंकेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए और आपके अपने शहर के लिए, क्योंकि गंदगी में रहना किसे पसंद है। और आइए हम एक और बेहतरीन गाना आपकी ओर भेज रहे हैं, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हमें मेल करते रहिए, संदेश आपके गीत हमारे में। और आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर आप जानते हैं 0522 2238 852, और दूसरा नंबर है 0522 2238 845। तो इन नंबर पर आप हमें मेल करिए और फिलहाल एक और गाना।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
5: जय दोस्तों, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर। प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके, गीत हमारे, और मुझे लगता है कि टेलीफोन में कुछ दिक्कत है, इसीलिए फ़ोन नहीं आ रहे हैं और हम इसको ज़रूर अभी सही करवाएंगे। फिलहाल मेल्स की झड़ी लगी हुई है, आइए हम फिर से मेल की ओर बढ़ते हैं। और हमने एक मेल दिखा है और ये है, मेल है ब्रजेश सिंह दीपू इटहुआ कैसरगंज बहराइच से, इन्होंने मेल किया है। गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और अच्छा सॉन्ग इन्हें बेहतरीन लग रहे हैं, वैसे हमारे सभी आर्टिस्ट बेहतरीन गाने ही बजाते हैं। मैसेज इनका ये है कि कहीं पर रोड का काम प्रगति पर चल रहा है तो उस जगह पर एकदम स्लो चलें। 20 तारीख को इनके गाँव के बगल के गाँव में दो लड़के थे जो बहराइच को रात 3 बजे से घर आ रहे थे और किसी जानवर की टक्कर हो गई और वो घायल हो गए हैं। और वैसे ये सब घटनाएं नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आप आराम से चलते हैं तो आप भी सेफ रहेंगे, अगर सामने कुछ आ रहा है तो भी सही रहेगा। कोशिश करें कि स्पीड बहुत ना रखें।

और जैसा इन्होंने कहा कि काम चल रहा है तो ज़रूर धीरे चले, क्योंकि कई बार मोरंग बजरी होती है उस पर जो टायर है ना वो फिसल सकता है। और आंचल सेठ जी ने हमें एक कविता भेजी है किताब पर। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राजा है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती, क्या बात है। देखिए किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, इसमें कोई भी दुराय नहीं है, और किताबों से जो प्यार कर लेता है उसे और किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। और सोनू परवाना जी ने मेल किया है, हमारे एक मित्र हैं जो शहर से वापस आए हैं और कहने लगे कि गांव में बहुत गर्मी है। हमने कहा कि शहर से कम है, उन्होंने कहा वहाँ पर एसी है, और हमने कहा कि यहाँ प्राकृतिक हवा है। वैसे दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है। और वैसे सही बात यह है कि गाँव की हवा शहरों में कहाँ। गीता सेठ ने हमें मेल किया है जल संरक्षण को लेकर, कहती हैं कि जल संरक्षण के दुर्गामी लाभ हैं, अगर हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में हर दिन खर्च होने वाले जल का 10% जल भी आने वाली पीढ़ी के लिए बचा दें तो काफ़ी राहत होगी। इससे एक लाभ ये भी होगा कि जल की कमी होने से हम बच सकेंगे और इसके उपयोग बहुत समय तक कर सकेंगे। गीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया उसके लिए। और साथ ही साथ हमें सुन रहे हैं महाराष्ट्र से सुन रहे हैं, ये प्रवीण हुंग हागोड़े जी हैं, इन्होंने एक मेल फिक्स मेल किया है फरमाइशों वाला, तो फिलहाल ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, तो आप चाहें तो अभी 1 बजे फरमाइशी प्रोग्राम होगा, तब आप 2 बजे से तब आप मेल कर सकते हैं। गुलाफ्सा सिद्दीकी ने हमें मेल किया है, हेलो गुड मॉर्निंग विनय भाई, मैं गुलाफ्सा सिद्दीकी संडीला से, क्या बात है आज सब को नचवा के ही मानेंगे, जितने ज़बरदस्त गाने हैं, मज़ा आ रहा है सुनकर। और इनका संदेश है कि हमें किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए, ये बात तो है भाई, ये कोई अच्छी आदत नहीं है, आप सराहना करिए सबकी, वही ज़रूरी है, क्योंकि किसी से ईर्ष्या करके कोई लाभ नहीं होने वाला है, आपको ही नुकसान होने वाला है, तो बेहतर ये है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहिए और उन्हें भी खुश रहिए, खुश रखने दीजिए। फिलहाल 11:32 हुआ है, एक और गाना आप सभी के लिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर संदेश आपके गीत हमारे, और हमारे साथ एक लिसनर आए, उनसे हम बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, कौन बोल रहे हैं?
1: साहिब अंसारी, महेवलगंज जिला लखीमपुर खीरी से बोल
0: रहे हैं। जी साहिब अंसारी जी, बताइए कैसी हैं?
1: सर हम बहुत अच्छे, अपना बताइए आप।
0: जबरदस्त, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप?
1: सर आज हमारी आपसे पहली बार बात हो रही
0: है। अरे वाह।
1: जी सर, आपका सुनते रहते ज्यादा, आपको अब टाइम है रेनबो कैफे में आते?
0: नहीं, तब तो आप नहीं सुनती हैं।
1: नहीं सुनते तो हैं, आप रविवार को सुबह आते हैं।
0: हाँ जी जी जी, रविवार को हम आते हैं। आप मैसेज बताइए, क्या कहना चाहेंगे?
1: संदेश हम ये देना चाहेंगे, जैसे कि बेजुबान जानवरों का ख्याल रखें, उनका जो दाना बनेगा तो उनको पेड़ के नहीं, पेड़ की छांव के नीचे देंगे।

0: हाँ ये बहुत अच्छी बात है।
1: उनका पानी भी बदलते रहे क्योंकि धूप हो रही, पानी भी गर्म हो जाता है।
0: यस चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया उसके लिए।
1: शुक्रिया सर आपका फोन उठाने के लिए, जो आज आपने उठाया तो फोन।
0: अरे हम सभी लोग उठाते हैं।
1: भाई बहनों का नाम भी ले लें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मोहम्मद आसिफ भाई है, मोहम्मद फैज भाई है, वकील अहमद मंसूरी भाई है, जावेद अख्तर भाई है, सत्यम कुमार भाई है, राजकुमार भाई है, और अंसारी भाई है, समा परवीन अप्पी है, गुलाबर देखिए अप्पी है, महक अंसारी है, साजिया अंसारी है, रिंकी पिंकी है, रोशनी दीदी है, बबीता राव दीदी है, प्रीति है।
0: क्या बात है, पूरी लिस्ट बना के रखी है आपने लग रहा है।
1: नहीं सर हमें सारे नाम याद है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए, सुनते रहिए
1: सर आपका फोन उठाने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। तो अगर आप भी हमें फोन करना चाह रहे हैं तो हमारे टेलीफोन नंबर है 0522 22 38 852 और दूसरा नंबर है 0522 22 38 845। तो सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए मारा सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
5: FM रेनबो पर आप सुन रहे संदेश आपके गीत हमारे एक और लिस्नर हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो
6: जी सर।
5: हाँ, कौन सा बोल रहे हैं?
6: सर मैं बबलू यादव, मोहनलालगंज लखनऊ।
5: जी बबलू जी, कैसे हैं?
6: सर मेरा गांव धनवाशांड है।
5: क्या मैसेज?
6: बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे।
5: मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपसे बात करके और बढ़िया हो गया। आप बताइए क्या?
6: सर ऐसा मत कि मैं अच्छा हो गया हूँ और मैं धन्य भी हो गया हूँ आपसे बात करके।
5: अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं?
6: सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुर्घटना से देर भली और सड़क पे कृपया धीरे चले, और बस इतना ही छोटा मैसेज करना चाहता हूँ।
5: पर छोटा है पर महत्वपूर्ण आपने मैसेज दिया है कि दुर्घटना से देर भली, देर हो जाए पर आप आराम से चलिए, बहुत जल्दी नहीं है, है ना?
6: जी सर। चलिए, बहुत दिनों से आपसे बात करने की तमन्ना थी, वो आज पूरा हो गई मेरी।
5: बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए, समय निकालने के लिए हमारे लिए।
6: सर कभी आइए मेरे वहाँ, घूम जाइए मेरे फार्म हाउस पे।
5: हाँ बिल्कुल, आप हमें एक मेल पर एड्रेस भेजिए, हम जरूर आएंगे।
6: सर मैं मेल नहीं कर पाता, मैं छोटा फोन चलाता हूँ।
5: अच्छा कोई नहीं, आकाशवाणी में हम आपसे हम मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है?
6: जी जी सर, मैं आपके यहाँ आके तो मुलाकात जरूर कर सकता हूँ। आपको ढेरों से शुभकामनाएं सर, हृदय से साधुवाद, आपकी सारी टीम को नमस्कार सर।
5: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ हमारे एक प्यारे लिसनर, और हमारे पास कुछ मेल्स भी हैं, उन्हें हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि समय भाग रहा है बहुत तेजी से। और देखिए, हमें वारी जी ने मेल किया है और इन्होंने एक शेर अर्ज किया है कि जिगर वालों को डर से कोई वास्ता नहीं, वो वहाँ भी कदम रखते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसीलिए इन्होंने लिखा है कि इसीलिए किसी ने कहा है कि डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। और मैसेज देना चाह रहे हैं कि साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के दावेदार तो बहुत हैं। शेर में आपने बड़ी गंभीर बात लिख दी कि आप दर्द में किसी का साथ निभाएंगे तो बेहतर रहेगा, खुशियों में तो सारे लोग आ जाते हैं। और साथ ही साथ हमें मोनू सेठ जी ने मेल किया है, लिखते हैं कि बच्चों को लाड दुलार करना अच्छी बात है क्योंकि बचपन होता ही है प्यार का, लेकिन बच्चों को भी सीमा में रहकर उनको प्यार दुलार दीजिए। सच तो ये है कि अब बच्चे अपने परिवार के साथ कम बैठते हैं, मोबाइल के साथ ज़्यादा, और सत्य ये भी है कि बच्चों को मोबाइल में जिस तरह से ज्ञान मिलता है रील से, वही बच्चे वही कर रहे हैं। हमने कई लोगों को देखा है कि बच्चों को गाड़ी पकड़ा देते हैं, अच्छा ओके, और कम उम्र में गाड़ी पकड़ा देते हैं, वो चला भी नहीं पाते, तो इतनी छोटी सी उम्र में गाड़ी ना पकड़ाएं, सजग रहें, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ हमें श्वेता सारस्वत ने मेल किया है, कहते हैं किताबें तो जीवन का अंग है, ठीक है जीवन का अंग है, लेकिन इन्होंने जो दुखद घटना कल हुई है उसका भी जिक्र किया है, तो उसमें हम सभी विचलित हैं उस घटना से।

0: और देखिए हमें दीपक शर्मा ने भी मेल किया है और बड़ा लंबा मेल है भाई। इन्होंने लिखा है कि दीपक शर्मा है और मुक्ता श्रीवास्तव, साथ ही साथ रुचि विश्वकर्मा, रंजीत कुशवाहा, ये रायबरेली से मेल कर रहे हैं और कहते हैं आकाशवाणी लखनऊ डेली सुनते हैं, कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, संदेश आपके गीत हमारे भी सुनते हैं और एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहे हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए, हर मुश्किल का सामना करें और बढ़ते रहें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी देर ना करें। और एक कविता लिखी है तो कविता चलिए हम पढ़ देते हैं, छोटी सी कविता है कि जिंदगी एक सफ़र है उतार चढ़ाव से भरपूर, हर पल एक नया मोड़ है, नया अनुभव नया सपना, कभी खुशियों की बारिश कभी आंसुओं की धार, पर हर मुश्किल के बाद आती है एक नई सुबह प्यार, जीवन एक खेल है जिसमें जीत हार है, पर हार पर भी जीतना ये जिंदगी का सार है। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारा से मेल के लिए और आइए एक और बेहतरीन ट्रैक सुनते हैं। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: जरा पूछो मुझे

श्रोताओं, लखनऊ में कल अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में भीषण आग के कारण कई छात्रों की असमय मौत का समाचार बहुत ही दुखद है। हम सभी पूरा आकाशवाणी परिवार दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है और शोक संतप्त परिवारों को ये गहरा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, यही हम आशा करते हैं, क्योंकि ये दुर्घटना ने हम सभी को झंझोर दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन चलते रहने का नाम है, हम भी चल रहे हैं। और अब आप मुझे इजाज़त दीजिए आज के इस कार्यक्रम से, किसी और आपसे मुलाकात ज़रूर होगी।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। महान राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज सुबह लखनऊ में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, उनकी पावन स्मृतियों को नमन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक समेत

भी अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज सुबह लखनऊ में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, उनकी पावन स्मृतियों को नमन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक समेत अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक देशवासी के हृदय में सदैव राष्ट्रवाद की लौ प्रज्वलित करता रहेगा। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए योग्य इच्छुक तीर्थयात्रियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन खिड़की 22 जून से शुरू होकर 20 जुलाई 2026 तक खुली रहेगी। इच्छुक तीर्थयात्री हज कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट पर हज सुविधा ऐप के जरिए मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में कुल रहा डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसमें अंतिम रूप से चुने गए प्रत्येक तीर्थयात्री को 10 अगस्त 2026 या उससे पहले 152,300 रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। आवेदकों को केवल स्कैन की गई कॉपियाँ अपलोड करने की सलाह दी गई है। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुई अग्निकांड की घटना के बाद सहारनपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक जयनारायण यादव ने पंजीकृत कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानकों की जांच के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अमान्य कोचिंग सेंटरों को पंजीकरण कराने को कहा है। जिले में 200 से अधिक कोचिंग सेंटर संचालित हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 30 जून को पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा। बंदी में अब सिर्फ एक सप्ताह शेष रह जाने से यहां सैलानियों की आमद बढ़ रही है। वहीं बाघ व अन्य वन्यजीवों की साइटिंग भी खूब हो रही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के खूबसूरत बाघ सैलानियों को काफी पसंद आ रहे हैं। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल दोपहर बाद गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

दोस्तों 12:05 और 35 सेकेंड हो चला है। दिल में उतना ही दुख है जितना आप सभी के। जी हाँ, कल अलीगंज कोचिंग सेंटर हादसे से सभी के दिल जो है ना बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सब सोच में पड़े हैं कौन कैसे क्या कहाँ कब हुआ और अब क्या करें। लेकिन जिन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी उनका क्या, क्या वो वापस आ सकते हैं? नहीं ना। बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना है कि उन परिवारों को, उन बच्चों के रिश्तेदारों को जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को खोया है, उनको दुख सहन करने की शक्ति दें। बस और क्या। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जीवन चलने का नाम है। कुछ दिन तक चीज़ें चलती हैं, वापस वहीं पर आ जाती हैं, लेकिन एक सवाल ज़रूर छोड़ कर जाती हैं कि क्या किसकी गलती और कब क्यों होती है। क्या इसका सवाल, ये जो सवाल है इसका जवाब किसी को आज तक मिला या नहीं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: सुनिए
5: कहिए कहिए,
4: सुनिए सुनिए
5: कहिए कहिए ना,
4: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
6: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: और दोस्तों अब शुरू करते हैं प्रोग्राम शत्रुपा, और जिसमें आज है मंगलवार और मंगलवार को हम स्टाइल फैशन की बात करते हैं। तो आज बात होने वाली है कि ढीले ढाले जो कपड़े हैं उनका ग्लैमर और क्यों पहने और कैसे स्टाइल करें। जी हाँ, शालिनी है आपके साथ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैशन ट्रेंड की जो सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है बल्कि आराम, आत्मविश्वास और रोजमर्रा की जरूरतों से भी जुड़ा है। जी हाँ, ढीले ढाले कपड़े। पहले इन्हें केवल सुविधा के लिए पहना जाता था लेकिन आज ये स्टाइल स्टेटमेंट बन चुके हैं। तो आइए समझाते हैं कि लोग इन्हें क्यों पसंद करते हैं और इन्हें पहनते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, एक सवाल आपसे भी कि आपके वार्डरोब में, अलमीरा में कोई ऐसा कपड़ा है, ऐसी ड्रेस है जिसे आप बार बार पहनते हैं क्योंकि वो आरामदायक है। उसके बारे में हमें ईमेल करें fmakashwani@gmail.com पर और हमसे जुड़े रहें। शालिनी है आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा में।
1: This is

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
5: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
6: हैंगओवर
5: Only 100.7 FM Rainbow.

दोस्तों 12:26 और 40 सेकंड हो चला है प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी है आपके साथ लेकर आज कपड़ों के ग्लैमर की बात। जी हाँ, ढीले ढाले जो कपड़े होते हैं ना वो शरीर को खुलकर सांस लेने का मौका देते हैं, खासकर जब गर्मी और उमस वाले मौसम होते हैं तो ये शरीर को ज़्यादा आरामदायक महसूस कराते हैं। पूरा दिन ऑफिस में, घर या बाहर काम करने वालों लोगों के लिए ये कपड़े बहुत आसान और हल्के लगते हैं। और दोस्तों वैसे भी ना फैशन तब अच्छा लगता है जब उसमें सहजता हो, और आज का फैशन कहता है कि खुद को बदलने की नहीं खुद को अपनाने की ज़रूरत है। जो पहनकर आप सहज महसूस करें वही आपकी स्टाइल है। जी हाँ,

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
4: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
5: समझे जनाब अली।
4: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
6: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों 12:38 और 8 सेकंड हो चले हैं और आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम शत्रुपा में ढीले ढाले कपड़ों का ग्लैमर, क्यों पहने और कैसे स्टाइल करें। दोस्तों ढीले कपड़ों की खास बात ये भी होती है कि ये किसी एक तरह के शरीर के लिए नहीं होते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुसार फिट, लंबाई और स्टाइल चुन सकता है और इसका जो एम होता है ना, वो शरीर को छिपाना नहीं बल्कि सहजता और आत्मविश्वास देना है। तभी तो फैशन एक्सपर्ट का भी मानना है कि ग्लैमर का मतलब भारी कपड़े नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। लूज फैशन आपको मूवमेंट देता है और पर्सनालिटी को खुलकर सामने लाता है ना।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 12:44 और 23 सेकंड का वक्त हुआ है। प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी है आपके साथ, लेकर आज फैशन की बात। दोस्तों मानसून और गर्मी के मौसम में बहुत टाइट कपड़े हमें कंफर्टेबल नहीं लगते हैं ना, कॉटन है, लिनन है, और हल्के कपड़े शरीर को आराम देते हैं, इसीलिए ढीले कपड़ों का ट्रेंड मौसम के अनुसार भी काफ़ी व्यवहारिक माना जाता है ना। आज का फैशन का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं है, अच्छा महसूस करना भी है। ओवरसाइज शर्ट, लूज कुर्ता, प्लाजो, वाइट पैंट्स और फ्लोवी ड्रेसेस, ये सारी चीज़ें आजकल दिखाई देती हैं सबसे ज़्यादा। और आराम और स्टाइल एक साथ हो सकते हैं, क्यों नहीं, जब इस तरह के फैशन

को हम ट्राई करेंगे। लेकिन हाँ, कई सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे अगर आप ऊपर का कपड़ा बहुत ढीला पहन रहे हैं तो नीचे थोड़ा स्ट्रक्चर रखें, और अगर नीचे ढीला है तो ऊपर का एकदम साधारण रखें। इससे लुक जो है ना बैलेंस्ड रहता है, और बहुत भारी या बहुत ज़्यादा ढीला कपड़ा लुक बिगाड़ सकता है। इसीलिए कहते हैं मौसम के हिसाब से हल्के और अच्छा फैब्रिक चुने, है ना।

दोस्तों 12:48 और 54 सेकंड हो चले और धीरे धीरे ये वक्त कह रहा है कि शालिनी प्रोग्राम शत्रुपा को करना होगा वाइंड अप। लेकिन अभी भी कई सारी बातें हैं जो आप तक पहुंचानी हैं, आपको बतानी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज ढीले ढाले कपड़ों के ग्लैमर की। तो बता दें दोस्तों कि हल्के रंग दिन में और गहरे रंग शाम या कोई फंक्शन हो तभी अच्छे लगते हैं। बहुत बड़े प्रिंट की जगह बैलेंस डिज़ाइन को चूज करें और आरामदायक कपड़ों के साथ साथ आप साफ सुथरे जूते या सैंडल पूरे लुक को आपके बेहतर बना सकता है। कोई भी फैशन तभी अच्छा लगता है जब पहनने वाला उसमें सहज महसूस करे। ट्रेंड से ज़्यादा अपनी सुविधा और पसंद को इम्पोर्टेंस दीजिए और यही ज़रूरी है ना दोस्तों। तभी तो कहते हैं कि हम फैशन से नहीं, फैशन हमसे है, क्यों?

और दोस्तों 12:53 और 50 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी इस प्रोग्राम को करना होगा यहीं पर वाइंड अप। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ढीले ढाले कपड़े जो है ना वो सिर्फ ग्लैमर सिर्फ फैशन नहीं बल्कि आराम आत्मविश्वास और अपनी पहचान को सहज तरीके से अपनाने का एक तरीका है। जी हाँ, और आज की बात बस इतनी ही कि ढीले ढाले कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि एक एहसास है आराम का आत्मविश्वास का और अपनेपन का। और याद रखिए फैशन वही जो आपको अच्छा महसूस कराए और जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें। तो बस इसी के साथ शालिनी प्रोग्राम शत्रुपा को करती है वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सी कौन सा प्रोग्राम ओठों पे तेरी बात और इसमें आज क्या हम खास बात करेंगे ये हम आपको उसी प्रोग्राम में बताएंगे। तो रेडी हो जाइए ईमेल्स करने के लिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे।

नमस्कार, दोपहर के एक बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। महान राष्ट्रीयवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज वन विभाग द्वारा प्रदेश व्यापी वृहद वृक्षारोपण

अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान को एक पेड़ माँ के नाम का नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और राज्य को हरित बनाना है। इस अवसर पर आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को एकमात्र विकल्प बताते हुए लोगों से इस मुहिम से जुड़ने और संकल्प लेने का आह्वान किया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा के थाना सेक्टर 126 के रायपुर गांव में बने एक लेबर कैंप में आज सुबह आग लग गई। इस कैंप में करीब

और संकल्प लेने का आह्वान किया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा के थाना सेक्टर 126 के रायपुर गांव में बने एक लेबर कैंप में आज सुबह आग लग गई। इस कैंप में करीब 60 मजदूर रह रहे थे। दमकल विभाग को सूचना मिली कि कुछ लोग आग में फंस गए हैं। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मजदूरों का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। हापुड़ जिले में आज थाना देहात क्षेत्र स्थित दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज बस से उतर रहे यात्रियों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में एक बच्ची और एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अमरोहा में गंगा दशहरा मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तिगरी गंगा धाम और ब्रिजघाट में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए आज सुबह 8 बजे से 25 जून सुबह 8 बजे तक दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा। यातायात प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि यह रूट डायवर्जन गंगा दशहरा पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर लागू किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। परामर्श के अनुसार अमरनाथ यात्रा के काफिले की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए नवयुग सुरंग से सामान्य यातायात पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए निर्धारित यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: इन आँखों के मस्ती मस्ताने हजारों
4: में। मैं हूँ मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
5: सात रंग का इंद्रधनुष है,
6: सात सुरों की सरगम है,
7: सात जन्म है सात समंदर,
5: साथ हमारा हरदम है,
7: जिंदगी के सतरंगी रंग
6: FM रेनबो के संग।

मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com और बस चलता है इस शब्द को आज कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में बदलने की।

दोस्तों 1:04 और 48 सेकंड हो चले हैं। प्रोग्राम होटो पे तेरी बात की हो चुकी है शुरुआत, जिसमें शालिनी है आपके साथ और आज हम बहुत ही गहरे मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, जो आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर के रख देगा। और वो कौन सा मुद्दा है बताइए तो ज़रा। अक्सर हम सभी लोग कहते हैं कि भाई चलता है, क्या करें, जैसा चल रहा है चलने दे, क्या किया जा सकता है। तो जो ये हमारा रवैया है, किसी दिन हमारे अपनों पर भारी पड़ जाता है, तब हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या यही रवैया हमेशा हमेशा रखना चाहिए। तो बस इसी बात पर आप हमें ईमेल्स करें। हमारा

ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर एक कसीरुल मंजिल इमारत में एक कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 तुलबा की मौत हो गई और कई दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए KGMU ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया। हादसे की इतला मिलते ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ दौरा छोड़कर

0: सीधे लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने जाए वकूअ का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। बाद अज़ां उन्होंने जख्मियों से मुलाकात के लिए KGMU का दौरा भी किया। वजीर आला ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को पूरे वाकये की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी देर रात लखनऊ पहुंचे। जाए वकूअ का मुआयना करने के बाद उन्होंने जख्मियों से मिलने और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए KGMU का दौरा किया। वजीर दिफा ने वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि जिम्मेदारी का तयन करने के लिए तहकीकात की जाएगी। दरियासना वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर हुकूमत ने वाकये की जांच के लिए 2 रुकनी जांच कमेटी तश्कील दी है। लखनऊ आतिशजदगी के वाकये में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमारे नामा निगार ने इतला दी है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार किया गया। हमारे नामा निगार ने बताया,
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। इस फायर ब्रिगेड पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना और BJP के रियासती सदर पंकज चौधरी, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, SP सरबरा अखिलेश यादव, BSP सरबरा मायावती और कई दीगर वुजरा ने लखनऊ आतिशजदगी के वाकये को अलमनाक करार दिया है और खानदानों से दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने मरने वालों के लवाहिकीन को कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपये और जख्मियों को 50,000 रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे शहरी सरमायाकारी तकरीब में पद्म अवार्ड पेश करेंगी। हमारे नामानिगार की इत्तला है कि कुल 65 अवार्ड्स आज पेश किए जाएंगे, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 शख्सियत समेत 56 पद्मश्री शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: भारतीय जनसंघ के बानी सदर और अजीम माहिर तालीम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम शहादत के मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक, आबी बिजली के वजीर स्वतंत्र देव सिंह और दीगर मौजजीन ने उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर पार्टी अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस मौके की मुनासिबत से उत्तर प्रदेश के महकमे जंगलात ने बड़े पैमाने पर रियासत भर में दरख्त लगाने की मुहिम शुरू की है। एक पेड़ माँ के नाम के उनवान से इस मुहिम का मकसद माहौलियात के तहफ्फुज़ और रियासत को सब्ज बनाने के बारे में बेदारी पैदा करना है। आज रियासत के तमाम 75 अजला में दरख्त लगाए जा रहे हैं। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए अहल दिलचस्पी रखने वाले आजमीन से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। इस हवाले से जारी करदा बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्तें 22 जून 2026 से शुरू होंगी और 20 जुलाई 2026 तक रात 11:59 तक जारी रहेंगी। ख्वाहिशमंद आजमीन हज कमेटी की सरकारी वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in या हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शनावास सी की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि हज नशिस्तों की मनसूखी पर भारी जुर्माना होगा, इसलिए आजमीन को मुकम्मल तैयारी और पुख्ता आजम के बाद ही दरख्वास्त देना चाहिए। और रियासत में गर्मी की लहर जारी है। दरियसना कल दोपहर गरज चमक के साथ होने वाली हल्की बारिश ने मशरकी उत्तर प्रदेश के कई जिला बशमूल, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती के रिहायशियों को कुछ राहत पहुंचाई। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। ताहम महकमा मौसमियात ने दर्ज हरारत में कोई खास तब्दीली की पेशगोई नहीं की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे

0: FM पर नश किया जाएगा।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम है,
3: सात जन्म है सात समंदर,
1: साथ हमारा हरदम है,
3: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: FM रेनबो के संग।
4: करियर पर है ध्यान,
5: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
4: पॉजिटिव है फैशन,
5: क्रिएटिव है पैशन,
4: टेक्नोलॉजी में रुचि,
5: बने पर्सनालिटी ऊंची,
4: फॉलो करें ट्रेंड्स,
5: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
4: ओनली ऑन यूथ वेव,
5: यूथ की बात यूथ के साथ,
4: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
5: धड़कन लखनऊ की।

बजकर 21 मिनट और 33 सेकंड हो चले हैं और प्रोग्राम शुरू हो चुका था बहुत देर पहले ही, जिसके दो गाने भी आप सुन चुके हैं प्रोग्राम ओठों पे तेरी बात। और हमने ये पूछा था इस प्रोग्राम में आज कि चलता है ये जो रवैया है ये हमारे अपनों पर क्या भारी पड़ सकता है। तो शायद कई सारे लोगों को नहीं समझ में आया, तभी कुछ कुछ ऐसे मेल्स आए हैं हमारे पास में कि आप थोड़ा सा और डिटेल में समझाएं इसे। तो हम आपको बता दें कि कई बार हम जानते हैं कि इस चीज़ में ख़तरा है, ये नियम के अगेंस्ट है, इस चीज़ को करने से कभी ना कभी हमें नुकसान पहुंच सकता है, हमें भारी जोखिम में हम पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे नज़रअंदाज करते हैं और कहते हैं कि हाँ चलता है चलने दो। तो इस बात पर हमने इस टॉपिक को लिया था, लेकिन अब आते हैं हम सीधी बात पर कि जो ये गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, सभी को पता है, सभी लोग एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको हम चलाते रहते हैं। हाँ, कुछ घरों में ज़रूर है कि जब हम ये चलाते हैं तो हम इसे बंद करने का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब हमसे वो जगह जुड़ी नहीं होती है, यानी कि उस जगह का बिजली का बिल हमें नहीं देना होता है ना, तो हम इस तरह की चीज़ें चलते रहने देते, ये भी ध्यान नहीं रखते हैं कि क्या शॉर्ट सर्किट हो सकता है या हमें नुकसान पहुँच सकता है, और क्या यहाँ पर फायर अलार्म की सुविधा है, हमें पता चल पाएगा, या हमने जो ये फायर आग बुझाने के सिलेंडर्स रखे होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी ट्रेनिंग ली है या नहीं। लेकिन तब कहते हैं कि सब चलता रहता है, तो बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आपसे राय जानना चाहते हैं। तो हमें ईमेल ज़रूर करें fmakashwani@gmail.com पे। और एमन नवाब जी, जिन्होंने संठीला से हमें मेल किया है, आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और एक मेल रामराज का भी आया है, ज़िला राय बरेली से है, पहाड़ीपुर से। आप भी समझ गए होंगे कि हमारी बात क्या है। और सुधाकर राधे जाधव जी जाफराबाद से हमें मेल कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे इस विषय पर अपनी क्रिया जरूर दें।

दोस्तों, आप सभी लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम होठो पे तेरी बात, और जिसमें सतीश अनेजा जी का मेल आ चुका है चंडीगढ़ से। ये हमें मेल करते हैं और इन्होंने लिखा है कि कोई भी जब हम काम करें तो उसे अपने विवेक से सूझबूझ करके करें तो सही रहेगा। कई बार हम संदेह पूर्वक वाला काम बिना परवाह किए कर देते हैं, फिर हमें पश्चाताप करना पड़ता है जो हमारा सुकून भी छीन लेता है। अगर कोई समझ ना आए बात तो हम किसी का मशवरा भी ले सकते हैं, फिर तो दो दिमाग की एक राय हो जाती है और काम हमारी सोच से भी बेहतर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जब हमें किसी चीज़ में समझ में नहीं आ रहा हो कि हाँ ये ठीक है, क्या चलता है या चलने देना चाहिए, फिर वही शब्द यहाँ पर आ गया, तो हमें एक दो लोगों की राय ज़रूर लेनी देनी चाहिए। कुछ समय के लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भुला देते हैं कि अरे चले जाने दो, क्या कभी ऐसा भी होगा। लेकिन जब मुसीबत आती है ना दोस्तों, कहते हैं ना कि वो बता के नहीं आती, अगर बता दे तो फिर बात ही क्या हो। और उसके बाद जब चीज़ें हो चुकी होती हैं, हमारे पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं होता। और ये मेल हमारे पास में जाफराबाद से आ चुका है, सुधाकर यादव जी का भी है। 15 जून से स्कूल चालू हुआ है, और आपने बच्चों को स्कूल में डालते वक्त कौन कौन सी खबर लेते हैं, स्कूल में लिफ्ट की सुविधा है या नहीं, स्कूल की गैलरी में जाली बिछी है या नहीं, और शॉर्ट सर्किट अगर हो रहा है तो ऐसे में दुर्घटना से बचने के वास्ते कोई सुविधा है कि नहीं, ये सब ध्यान रखते हुए ही बच्चों को स्कूल में डालना चाहिए।

बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों इन तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, वो किसी से बताने से नहीं आनी चाहिए, ये तो खुद की बात है। जब हम अपना घर बना रहे होते हैं तो कई सारी चीज़ें सोचते हैं कि इस कमरे में हवा इस तरफ से आएगी, इस कमरे का दरवाज़ा इस तरफ रखेंगे, वास्तुशास्त्र ये कहता है, लेकिन उस वक्त हम अपनी सावधानी को, होने वाले कल की कोई मुसीबत को पहले से क्यों नहीं सोचते हैं और क्यों उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज ये ध्यान का विषय बन चुका है।

आप सभी लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम होठो पे तेरी बात में शालिनी आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। और मेल आ चुका है चंद्रमोहन मिश्र नौरंगपुर लखीमपुर खीरी से, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि आज मैं बिजली के जिम्मेदार उपयोग के प्रति एक गंभीर चिंता साझा करना चाहता हूँ। अक्सर देखा गया है कि जब बिजली मुफ्त या रियायत दर पर उपलब्ध होती है तो उपयोगकर्ता विद्युत उपकरणों को बिना किसी नियंत्रण के चालू छोड़ देते हैं। यह केवल बिजली की बर्बादी ही नहीं बल्कि एक बड़ा सुरक्षा जोखिम भी है। उपकरणों के लगातार चलने से ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट की आशंका बढ़ जाती है जिससे अनहोनी हो सकती है। मेरा सुझाव है कि बिजली की उपलब्धता के साथ साथ इसके सुरक्षित उपयोग और उपकरणों के रख रखाव के बारे में भी नागरिकों को जागरूक किया जाए। उम्मीद है आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अवश्य कदम उठाएंगे। और सभी लोग सजग हैं और जागरूक हैं और इस तरफ सभी का ध्यान केंद्रित हो रहा है और एक दूसरे के प्रति कहते हैं कि जो सावधानी हटी दुर्घटना घटी तो इसके प्रति जिम्मेदार होंगे और लोगों को अवेयर भी करेंगे। और रामेश्वर कठेरिया जी का भी मेल मुंगिसापुर कानपुर देहात से आ चुका है और अच्छा बस ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। विनीत कुमार का भी मेल आया हुआ है रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से, यह हमें लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि धूप बहुत हो रही है, गर्मी गंभीर हो रही है और इसे हमारे भाई बहन दिन में 4-5 बार चेहरे को धोएं और पानी पर्याप्त मात्रा में जितना पी सकें उतना पिए और पानी की कमी मत होने दे शरीर में और अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजें, काम मत करवाएं। बहुत अच्छी बात लिखी है, शायद आप हमारा प्रोग्राम नहीं सुन पाए हैं इसीलिए आप अपनी बात कह रहे हैं। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि और जो लोग भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो इस आज के गंभीर विषय पर हमसे ज़रूर बात करेंगे, अपनी बात हमसे ज़रूर साझा करेंगे कि हम जिस वक्त काम कर रहे होते हैं उस समय छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं। और वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना दोस्तों, भविष्य में बहुत बड़ी आपदा के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं, ये जानते हुए भी हम ऐसा क्यों करते हैं और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। और ये आज़ाद अली अनवर जी ने गाज़ीपुर से मैसेज किया है लेकिन अभी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़िए और हमसे अपनी बातें साझा कीजिए। और जी हाँ सुधाकर राधे जाधव जी, आपने बहुत सही बात लिखी है, ये अभी कल का ही हादसा है। लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में अचानक से आग लग गई और उस आग ने बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया और कई सारे घरों के चिराग बुझ गए, मतलब आप सोचिए क्या उन पर बीत रही होगी। तो बस इसीलिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए ये उसी वक्त सोचना चाहिए, उसी से रिलेटेड आज हम थोड़ी सी बात आप सभी से साझा कर रहे हैं। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक का और उसके बाद वापस आएंगे अपनी बात पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों आप सभी लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम हो चुपी तेरी बात में, शालिनी आपके साथ 100.7 एफएम रेनबो पर। और देखिए प्रवीण जी का मेल आ चुका है और ये इन्होंने बिल्कुल सही बात लिखी है कि मेंटेनेंस ना होने पर बिजली के तार और उपकरण सेफ्टी मानकों के अनुसार सुरक्षित नहीं रहते, इसीलिए रेगुलर मेंटेनेंस और सेफ्टी चेक ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात लिखी है आपने और एम एन नवाब ने बहुत अच्छी बात लिखी है और पूरी बात आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने लिखा है कि अगर हमें कुछ ना पता हो तो अपना ईगो साइड में रखकर दूसरों से पूछ लेना चाहिए, पूछ लेने से अपना और दूसरों का नुकसान होने से बच सकता है। मुझे अगर कुछ नहीं पता होता है, 1% भी डाउट होता है तो मैं पूछ कर ही करती हूँ, जैसे गैस सिलेंडर की बात हो या लाइट की। पहले मुझे गैस सिलेंडर का रेगुलेटर लगाना नहीं आता था, मैंने सीखा और गैस सिलेंडर भी लगाने से पहले अच्छे से देख लेना चाहिए, तभी लगाना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात और भी है, कभी भी फ्रिज अपना आप साफ कर रहे हैं तो उसका प्लग निकाल के ही साफ करना चाहिए और सूखने के बाद ही प्लग को वापस लगाना चाहिए। और कूलर में भी इसी तरह से काम करना चाहिए, अगर आप पानी डाल रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि कूलर का जो इलेक्ट्रॉनिक बटन है वो ओपन ना हो और कूलर का प्लग लगाना हो। और इसी तरह से गैस सिलेंडर, बिजली के जितने भी उपकरण हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। थैंक यू अमन, बहुत अच्छी बात लिखी है। और सौरभ उत्तर प्रदेश जिला अमेठी ग्राम गौतमपुर से हमें मेल कर रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि जो ये चीज़ें ओपन करके लोग छोड़ देते हैं, एसी, फ्रिज, पंखा और सारी चीज़ें, और अगर हम ये करते हैं तो हमारी मम्मी हमें बहुत डांटती हैं इस तरह करने से, चाहे वो घर का हो या दूसरों का, नुकसान तो नुकसान होता है। बहुत अच्छी बात आपकी मम्मी ने आपको समझाई है और यही बात हमें बहुत अच्छे से सबको समझाना है और समझना भी चाहिए। और एक मेल हमारे बीच में और आ चुका है, अंजू जी का मेल है। लोगों को एक बात नहीं समझ में आती है कि ऐसे अप्लायंस नहीं यूज़ करना चाहिए जिसे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। कल इंसिडेंट्स के लिए ये बात चाहे कोचिंग सेंटर की हो, स्कूल की हो, घर की हो, हर जगह एसी सबको चाहिए, जिसकी वजह से गर्मियों में ऐसी दुर्घटनाएँ ज़्यादा हो रही हैं। आज से 10

18 साल पहले ऐसी दुर्घटनाएं ना होने के बराबर थी जो आज के डेट में बढ़ गई हैं, और बिल बढ़े तो बढ़े, इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, बट एसी लगवाना मतलब सबके लिए अच्छी बात नहीं होती है। और रही बात समझने की, तो लोगों में ऐसी चीज़ों को का इस्तेमाल सही से आना चाहिए, कब कितना इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने दोस्तों, और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

दोस्तों 1:54 हो चले और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी प्रोग्राम को यहीं पर करना होगा वाइंड अप। लेकिन आपको बता दें कि पिंकू सोनी जी का भी मेल हमारे बीच में आ चुका है और इन्होंने लिखा है कि जब हमें कोई काम समझ में नहीं आ रहा हो तो किसी से पूछ कर ज़रूर करना चाहिए, इसमें हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और कई लोगों के नाम लिखे हैं, कुलदीप है और आकाश, पिंकी और गुलाबसा और सारी लिसनर्स की बात करी है इन्होंने। और दोस्तों इसी के साथ इस प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप, इस उम्मीद के साथ कि जो ये चलता है ना शब्द आपका चला गया होगा और समय रहते ही अपनी चीजों को जाने समझे परखे, शर्म ना करे, झिझक

ना करें, जरा से फायदे के लिए लंबे समय तक किसी काम को ना टालें, और समय रहते अगर हम जागरूक हो जाएंगे, अपने काम को कर लेंगे, तो इतने बड़े बड़े हादसे होने से टल जाएंगे और लोगों के घरों के जो चिराग बुझ गए हैं ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके ऊपर बीत रही है वही केवल बता सकता है, हम केवल उन्हें दिलासा दे सकते हैं, लेकिन जो घर से चले गए वो वापस आ सकते हैं कभी नहीं, है ना। तो बस जागरूक हो जाइए और इन सारी चीज़ों के लिए लोगों को बताइए, समझाइए कैसे भविष्य में दुर्घटनाएं ना हों।

नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आज प्रदेश सरकार को सौंप दी। एसआईटी के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को यह रिपोर्ट सौंपी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने 13 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी में लखनऊ के मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव वित्त नीलरतन को शामिल किया गया।

था विजय वी पंत और किरण एस ने शुरुआती रिपोर्ट सौंपी है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक देशवासी के हृदय में सदैव राष्ट्रवाद की लौ प्रज्वलित करता रहेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग, समर्पण और सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा का अनुपम उदाहरण है। लखनऊ के अलीगंज इलाके की एक इमारत में कल आग से हुई जनहानि के बाद इस प्रकरण में व्यावसायिक इमारत के मालिक सहित चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के दो और ऊर्जा विभाग व फायर के एक एक अधिकारियों को निलंबित किया गया है। अलीगंज पुलिस की ओर से देर रात को इस मामले में

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: दोस्तों शुरुआत हो चुकी है प्रोग्राम हॉटमेल की, जिसमें ढेर सारे ईमेल बिना कहे कि इस मेल आईडी पर आप हमें मेल करें फिर भी आप पहुंच चुके हैं। अच्छा, कभी अगर ईमेल आईडी चेंज हो जाए तो आप क्या करेंगे? हम आपको बताएंगे ना उससे पहले कि हमारी ईमेल आईडी चेंज हो गई है, लेकिन कोई भी हमारी ईमेल आईडी चेंज नहीं हुई है। और भाई, जिन लोगों ने एक बार मेल कर दिया है दोबारा ना करें। और हम फटाफट कुछ ईमेल्स पढ़ते हैं और उसके बाद आप तक हम गाना पहुंचाते हैं। टीटी मल्होत्रा जी का ऋतिक प्रतीक अनिल जयवीर जी के साथ में ईमेल आ चुका है मोहाली चंडीगढ़ से, इन्होंने हमें मेल किया है। जयराम जी का भी मेल आ चुका है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से। और सचिन खोरवाल अमन दीपांशु के साथ में इन्होंने हमें ईमेल किया है। और ये अहमद भाई फूलवाले के साथ दुख नहीं सफ़द आरजू, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें मुंबई से मेल किया है। और मुकेश कश्यप जी का भी मेल आ चुका है। शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल और भी ढेर सारे नाम हैं। दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमें ये मेल कर रहे हैं। विनीत कुमार जी का सीतापुर से मेल आ चुका है। अभी आप थे हमारे साथ और अब फिर इस प्रोग्राम में भी आप हमारा साथ दे रहे हैं। वकील अहमद जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने हमें हतुरी ज़िला सीतापुर से मेल किया है। और ढेर सारे नाम इन्होंने भी लिखे हैं। और अनिल कुमार गुहाकर राही जी सरिता के साथ उमरखेड़ा महाराष्ट्र से हमें मेल कर रहे हैं और बढ़िया से गाने की फरमाइश की है। कोशिश है आपका गाना आप तक ज़रूर पहुंचेगा। और एक मेल आया है आर्यन वर्मा जी का है और ढेर सारे ईमेल्स के साथ में इन्होंने लिखा है। और मेल आईडी आर्यन वर्मा है, लेकिन मास्टर अशोक वर्मा जी का है सनावद मध्य प्रदेश से। इन्होंने अर्चना अनुज आयुषी के साथ मेल किया है। और आपकी वाइफ का आज बर्थडे है, उनको ढेर सारा हैप्पी बर्थडे, ढेर सारी शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहें वो। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

बहुत ही प्यारी से ट्रैक की फरमाइश आई थी दोस्तों और आप तक पहुंचा दी गई है। और देखिए मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी फरियाद हुसैन के साथ भी मेल आ चुका है। राधे श्याम साकिया जी का भी मेल कासगंज से आ चुका है और हम बढ़िया हैं और कई सारी चीज़ें इन्होंने लिखकर भेजी हैं। और जालौन से मेल आ चुका है सतेंद्र कुमार चनसौलिया आदर्श सार्थक के साथ में आया है। और सतीश अनेजा जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने विमला के साथ चंडीगढ़ सिटी से हमें मेल किया है और बढ़िया सी गाने की फरमाइश की है आपने। और पीएस नोहाकर निर्मला विशाल के साथ में नरवेल महाराष्ट्र से हमें मेल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे गाने की आपने भी फरमाइश की है। लेकिन मुश्किल होता है ना, ढेर सारी फरमाइश जब आ जाती है उसमें से कौन से गाने ऐसे पहुंचाएं जो सबकी फरमाइश बन जाए, है ना। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिक्रोस्टो रोजी पर्ल के साथ में मेल किया है और ये किसका मेल आया है, मोहम्मद यासीन हाशमी जी का है गंज डुडवारा से। नाजमा बेगम हाशमी के साथ में इन्होंने हमें मेल किया है और शेख मूसा मोहसिन जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने हमें सनावत से मेल किया है। और मेल आ चुका है मोहम्मद अंसारी, ताज मोहम्मद अंसारी का गुलाब सावर राही के साथ आज़ाद नगर लक्षर हरिद्वार से ये हमें मेल कर रहे हैं। बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं कुलदीप फैज के और महेंद्र दीपेन का नाम इन्होंने साथ में लिखा है। और ये डुमराव बिहार से बहुत सारे लोगों के नाम से एक मेल आया है, सरफुद्दीन अंसारी फातिमा और सुमृत रमेश साहू के साथ में। जितेंद्र नामदेव ने भी हमें मेल किया है अंजू खन्ना कारोही के साथ में और ये हमें शहडोल मध्य प्रदेश से मेल कर रहे हैं। और ये किसने किया है मेल, गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी सविता संजय और ढेर सारे और भी नाम हैं इनके साथ। रायपुर मितौली लखीमपुर खीरी से मेल आ चुका है और ये अजय राज प्रदीप आशीष किसने, अशोक राज जी ने हमें मेल किया है। और दोस्तों अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

2:22 का वक्त प्रोग्राम हॉटमेल में शालिनी आपके साथ स्वर्ण सिंह गिल के ईमेल के साथ ठाकुर वाला से इन्होंने किया है दलजीत राजदीप और भी नाम है और मेल आ चुका है महसौल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन प्रिंस बेकम इशरत अक्रम के साथ में शाहरुन और अंसारी जी का भी मेल फरियाद के साथ में आ चुका है और दोबारा प्लीज मेल ना करें एक बार मेल करने के बाद। और राम राम जी जलालाबाद से सुरेश गगनेजा पूनम विशाल प्रिया के साथ में इन्होंने मेल किया है और कौशिक अस्मिता मम्मी पापा के साथ राजकोट गुजरात से मेल किया गया है और किसी भी गीत में इनका मेल शामिल किया जाए। उदय भान पाल जी का भी मेल आ चुका है और जय हिंद दीक्षा के साथ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें मेल किया है और उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत के साथ में झारखंड से मेल आ चुका है। सौरभ का भी मेल उत्तर प्रदेश जिला अमेठी ग्राम गौतमपुर से आया है और इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। तुलसी मस्कीन जी का भी मेल दिल्ली से आया है। वीना और चंडीगढ़ से राहुल खुराना है इनके साथ और पंजाब राम टेके यशोधरा के साथ यवतमाल से हमें मेल आ चुका है। वारिस अली खान जी का मेल ऐशबाग लखनऊ से आया है और कमल शंकर पांडे मोहलिया कला चौराहा सीतापुर से हमें मेल कर रहे हैं, थैंक यू मेल करने के लिए। सैफ अंसारी जी का श्रीनगर लखीमपुर से मेल आया हुआ है और ढेर सारे नाम इनके में भी लिखे हुए हैं और साथ ही साथ उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल कमला रानी गीतिका के साथ में मेल किया है इन्होंने और किसका मेल आया है मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद सनावत से ये हमें मेल कर रहे हैं और ये मेल आया हुआ है पिंकू सोनी का टिकायत नगर बाराबंकी से इन्होंने हमें मेल किया है और सुशीला देवी सनानंद के साथ अकोला से हमें मेल कर रही हैं। अंजू जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने कहाँ से मेल किया है ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो चलिए ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं। बहुत देर से इसकी फरमाइश की गई है और पहुँचाते हैं आप तक, सुनिए और इन्जॉय कीजिए।

भाई इतने प्यारे प्यारे से ट्रैक आज पसंद किए गए हैं कि हम एकदम ओल्ड गोल्ड हुए जा रहे हैं और सदाबहार नगमे के बाद एक आप तक पहुंचा रहे हैं। और श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोरा ममता के साथ में मेल आया हुआ है और नरेश मल्होत्रा लक्ष्य लाडो कोयल बाजार पानीपत से भी हमें मेल कर रहे हैं और साथ ही साथ ये नारायण गायकवाड़ दयानंद के साथ में नांदेड़ महाराष्ट्र से मेल हमें कर रहे हैं। सुधाकर राधे जाधव जी का प्रशांत संचित के साथ में जाफराबाद से मेल आया है और भी ढेर सारे नाम इन्होंने अपनी ईमेल्स में लिख कर रखे हैं। और ये किसका मेल आया है, चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी जी का है, प्रमिला और नेहा है इनके साथ में। संदीप मक्कर जी का भी मेल आ चुका है, ज्योति मन्नत भरत के साथ जालंधर से ये हमें मेल कर रहे हैं।

किसका मेल है? मनोज बंशल जी का मेल है, हांसी से ये हमें मेल कर रहे हैं। सुरेश नारंग जी का आशा के साथ में है और इन्होंने सहारनपुर से हमें मेल किया हुआ है। हीरामणि वर्मा पारस मणि के साथ भाटापारा से हमें मेल कर रहे हैं और ये मेल आ चुका है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता जी का मेल आया हुआ है और कई सारी ईमेल्स बार बार और बार बार आते ही जा रहे हैं और जबकि उनका मेल शामिल भी कर लिया गया है। आप खुद समझदार हैं, हमें बार बार मेल ना करें। और हनुमंत सिंधे संगीता के साथ में सांगली से मेल हमें कर रहे हैं और किसका मेल है देख लेते हैं। अच्छा चलिए, मेल नहीं देखते हैं, अब ये गाना आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्यारा से ट्रैक है, सुनिए, इंजॉय कीजिए।

2:37 और 17 सेकंड हो चले, ढेर सारे ईमेल्स हमने आप तक पहुंचा दिए हैं और गाने भी एक के बाद एक जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी चाहते हैं कि आपकी पसंद का गाना प्ले हो तो हमें मेल कर दीजिए फटाफट। सोमदत्त जी का मेल आ चुका है पटियाला पंजाब से, ये हमें मेल कर रहे हैं और ज्योति इनके साथ में है। और वाणिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंक की लवली का भी मेल आया हुआ है। और गगन दीप थानी जी का तृप्ता के साथ में नवा शहर पंजाब से मेल आया है। और ये राजेश वर्मा जी का मेल आया हुआ है हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई हैं, पिंकी हैं और कई लोगों का साथ में मेल है। पंकज शर्मा जी का भी मेल आ चुका है और संदीप गुंगलानी हैं इनके साथ में और करनाल से इन्होंने हमें मेल किया है। और नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा जसवीर जस्सी का मेल है। सुदर्शन साह पल्लवी के साथ नेपा नगर मध्य प्रदेश से हमें मेल कर रहे हैं। मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज के साथ झारखंड से मेल कर रहे हैं। और हितेंद्र दास जी का भी मेल आसाम से आ गया है। थैंक यू मेल करने के लिए, क्योंकि आप वहाँ हमें ऐप के ज़रिए सुन रहे होंगे और इतना प्यार हमेशा हमारा बना रहे। और सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश पूनम के साथ में हमें मेल कर रहे हैं। महेंद्र मोदी जी का मेल ठाकुर साहब के का है और रामगढ़ कैंट से इन्होंने हमें मेल किया है। नवी हसन जी का भी मेल शाहनवाज के साथ में दरवाज़ा ईटा से आ चुका है। और मेल नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी के साथ में आया हुआ है। और जावेद अख्तर जी का भी मेल मुबारकपुर आजमगढ़ से आ चुका है और समशुल कमर राही भी हैं इनके साथ में। और जयवीर सिंह ठाकुर जी का अनिल शर्मा कैथल हरियाणा से हमें मेल कर रहे हैं। सैफ अंसारी जी का भी मेल लखीमपुर से आ गया है और भागवत वर्मा शांति देवी के साथ दतरेंगी से ये हमें मेल कर रहे हैं। दिनेश वर्मा का रिंगनी छत्तीसगढ़ से करुणा के साथ ईमेल आया है। सिद्धार्थ गोचाने अर्चना ताई राहुल नगर अमरावती से हमें मेल कर रहे हैं। और राजेश कुमार जजूरिया जी का भी मेल आया हुआ है और ये हमें कहाँ से, मलोट से मेल कर रहे हैं गीता रानी के साथ में। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

2:48 हो चले हैं और मेल आ चुका है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा का बबीता के साथ में फरमाइश की है इन्होंने भी। और साहिब आलम जी का भी मेल आ चुका है समीर के साथ में अम्बेडकर नगर ऐशबाग से ये हमें मेल कर रहे हैं। निसार अली जी का भी तेलीवाला उत्तराखंड से नौसाद के साथ में मेल आया है। और सुनील पाठक जी का भी मेल आ चुका है और ये हमारे प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं, थैंक यू। और ये संतोष भाकरे और सुनैना सुकन्या के साथ में महाराष्ट्र से मेल हमें कर रहे हैं। और राजकुमार टूडी का पुष्पेंद्र प्रमोद के साथ फ्रांस हिसार से मेल आया है। और मुंगिसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया उमाकांत कमलेश के साथ में हमें मेल कर रहे हैं। पूजा पाल जी का भी मेल आया हुआ है सीतापुर से बिठौली से ये हमें मेल कर रहे हैं। और मिर्जापुर भी इन्होंने लिखा हुआ है। दिलावर खान जी का मेल हसीना बानो एलिजा नवाब के साथ रघुबीर नगर दिल्ली से मेल आया हुआ है। और कमलेश मुकुल सचिन का न्यू दिल्ली से मेल आ चुका है। अजमत अली जी का भी मेल आया है और इन्होंने कहां से मेल किया है ऐसा इन्होंने नहीं लिखा है। कमलकांत गुप्ता जी का दीपा रिमझिम के साथ लखनऊ से ये हमें अच्छा आज लखनऊ से मेल कर रहे हैं आप लाइन में लगे हैं लखनऊ के पिपरिया से, अच्छा चलिए। और किसका मेल आया है और ढेर सारी मेल्स और भी हैं फटाफट आप तक पहुंचाते हैं। और शाहजी बोड़खे जी का भी मेल है नंदा हनुमान के साथ हिंगोली महाराष्ट्र से ये हमें मेल करते हैं और रेगुलर ही इनका मेल आता रहता है। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

इस गाने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम हमारी ज़िंदगी पर एकदम फिट बैठती हैं ना दोस्तों। नवी हसन जी, आप नाराज़ हो रहे हैं, आपका मेल तो बहुत पहले ही पढ़ा जा चुका है कि दरवाज़ा 88 नवी हसन शाह नाज ने हमें मेल किया हुआ है, और रविंद्र मोहन दास जी का भी बिहार से मेल आ चुका है आशा के साथ में। विनीत, आपका भी मेल शामिल किया जा चुका है। अजमत अली, अभी आपने मेल किया है जस्ट हमें, और शाहरुनूर अंसारी और शर्म सिंह जी, आप सभी को, सभी का मेल शामिल कर लिया गया है। गाने भले ही कम पहुंचते हों आप तक, क्योंकि थोड़े थोड़े से गाने तो पहुंचा नहीं सकते हैं, तो बस इसी के साथ इस प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया सुनना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ 3:30 पर हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT बिल्कुल नहीं भूलना है सुनना, तो बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की शालिनी के साथ।

नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत ने यह रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। रिपोर्ट जमा करने के बाद श्री पंत ने कहा कि यह प्रारंभिक रिपोर्ट है और यह एक गोपनीय दस्तावेज है। राज्य सरकार द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर आगे की कार्रवाई जल्द ही होने की उम्मीद है। कल लखनऊ में हुए अग्निकांड मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर 2 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित किया गया है। इस विशेष जांच दल में धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और अपर मुख्य महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। आज जांच दल के दोनों सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने फॉरेंसिक टीम के साथ जांच की। दल के सदस्य प्रवीण कुमार ने मीडिया को बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्योंकि

समय सीमा निर्धारित है, इसीलिए जल्द से जल्द जांच करके रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। प्रदेश शासन ने वाराणसी रोपवे सेवा की किराया दरें अभी सूचित कर दी हैं। कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा और गुदौलिया स्टेशनों के बीच न्यूनतम किराया 10 और अधिकतम 50 रुपये निर्धारित किया गया है। कैंट से गुदौलिया तक की पूरी यात्रा मात्र 50 रुपये में होगी। काशी स्मार्ट पास धारकों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे परियोजना कैंट से गुदौलिया तक लगभग 3.75 किलोमीटर मार्ग पर संचालित होगी, जिससे यात्रा समय घटकर 15-16 मिनट रह जाएगा और शहर के यातायात दबाव में कमी आएगी। लखनऊ स्थित हुसैनाबाद एवं संबंध ट्रस्ट के प्रभारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 26 जून को मुहर्रम के मद्देनजर बड़ा इमामबाड़ा स्थित भूलभुलैया और बावली के साथ ही छोटा इमामबाड़ा स्थित शाही इमाम पिक्चर गैलरी पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त।

दोपहर के यातायात दबाव में कमी आएगी। लखनऊ स्थित हुसैनाबाद एवं संबंध ट्रस्ट के प्रभारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 26 जून को मुहर्रम के मद्देनजर बड़ा इमामबाड़ा स्थित भूलभुलैया और बावली के साथ ही छोटा इमामबाड़ा स्थित शाही इमाम पिक्चर गैलरी पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: कभी हमसे ही तुम्हारी सुबह होती थी, कभी चाय की चुस्की के साथ, तो कभी घर की बालकनी में। अजी अखबार तो हाथों में यूं ही लिए रहते थे, लेकिन दिल तो हमसे ही लगा रहता था। किचन में खाना बना रहे हो या ऑफिस जाने की तैयारी हो, बस में सफर हो या ट्रेन, हर गाड़ी में मेरा ही साथ रहता था। वो चुप चुप के ऑफिस और कॉलेज में हमसे बातें किया करते थे, शाम को घर वापसी में भी मेरा साथ कहाँ छोड़ते थे। जब रातों में नींद नहीं आती थी तो मुझे साथ लेकर सो जाते थे। जिंदगी के हर मोड़ पर हम साथ रहते थे, कैसे प्यार की बातें और अपने जज्बात एक दूसरे से कहते थे। वो दिन और आज का दिन कुछ भी नहीं बदला, बल्कि समय की रफ्तार के साथ हमारा रिश्ता और गहरा हो रहा है। बस इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए और सुनते रहिए हर रोज सुबह 6 से रात 12 बजे तक FM रेनबो।
3: सुनिए,
4: कहिए, कहिए,
3: सुनिए, सुनिए,
4: कहिए, कहिए ना,
3: सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
5: मैं हूँ गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों, सुबह की किरणें ये संदेश लेकर आई हैं कि अब जागो, सवेरा हो गया, कुछ करो। और जो दोपहर का जो समय होता है ये भी हमें संदेश देता है। क्या देता है? कि समय हो चला है, अब लंच कर लो, हाँ पानी पी लो, अपने काम में थोड़ा सा ब्रेक करो और थोड़े सा माइंड को फ्रेश करो। जी हाँ, शालिनी आपके साथ प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में 3:14 और 38 सेकंड हो चले हैं और आप सभी लोग सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 3:24 का वक्त हो चला है और ये वक्त कह रहा है कि इस प्रोग्राम को यहीं पर करना होगा वाइंड अप, क्योंकि 3:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। तो इसी के साथ शालिनी करती है आपसे टाटा बाय बाय, होगी किसी और दिन मुलाकात। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।

0: दंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कलां से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेशधाम परसुरी पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून,

मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओ, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओ, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों के दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। श्रोताओ, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री बसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।

दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन
1: बसंती अरे बसी ओ बसी कहां है तू
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो मैं यहां बुरांस के फूल चुन रही हूं
1: अरे क्या करेगी इनका तू है
2: क्या करूंगी गमकुआ इतर बनाऊंगी क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है ओ तो शरबत बनाऊंगी
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है हां चल घर चल अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे अरे चल ना जल्दी कर
2: नहीं

0: तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी, अरे तू विधवा हो गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है, मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के

0: किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगीं। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसंती, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है,
2: चल।
1: ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका तो उपाय क्या है? क्या करें हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।

इसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झूला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं।

0: ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपनी कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांज के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
2: है।
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा?
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो।
1: चलो
3: चलो जल्दी चलो, सबको बताते हैं।

इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उमंग।

नमस्कार, 4 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कम वर्षा की स्थिति में आवश्यक तैयारियों, वैकल्पिक फसल योजनाओं और किसानों के हितों की रक्षा पर भी चर्चा हुई। लखनऊ के अलीगंज में कल हुए अग्निकांड में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है और सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन इस मामले में जवाबदेही तय करने के लिए हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहा है। लखनऊ में अग्निकांड के बाद प्रदेश के मेरठ, जौनपुर, अमरोहा, अंबेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा समेत कई जिलों में आज स्थानीय प्रशासन ने होटल और कोचिंग सेंटर में चेकिंग अभियान चलाया। वहीं आगरा में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने लखनऊ हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में इस प्रकार की किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्मियों में आग की घटनाएं अधिक होती हैं, इसलिए लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। हापुड़ की जिलाधिकारी कविता मीणा की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन और जल निगम द्वारा संचालित पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिए कि शत प्रतिशत घरों तक नल से जल पहुंचाने का कार्य मिशन मोड में पूर्ण करें, कोई भी ग्राम मजरा पेयजल योजना से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिसके अनुसार इच्छुक हज आवेदक हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन हज सुविधा पर उपलब्ध हज ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये सुविधा कल 22 जून से शुरू हो गई है, जो 20 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित होगा।

जी हाँ, FM रेनबो जिसे हर दिल गुनगुनाए, और इस वक्त आप हमारे साथ ट्यून इन है 100.7 FM पर, और इंतजार है आपको अगले प्रोग्राम का, अगले शो का। वेल, नाम तो आपको पता ही, उस शो का यूथ वेव, और यूथ वेव में अलग अलग दिन अलग अलग सेगमेंट होते हैं, और आज मंगलवार है, और मंगलवार के दिन हम लेकर आते हैं जो सेगमेंट, वो होता है प्रतियोगी परीक्षा पर आधारित होता है, और आज भी कुछ ऐसा ही एक परीक्षा, एक ऐसे ही एक टॉपिक पर मैं आपके साथ जो है कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ। मैं आपका दोस्त देव। 4:03 हो चुके हैं, तो ट्यून इन रहिए हमारे साथ और एंजॉय करते रहिए और जानकारी हासिल करते रहिए, दोनों काम एक साथ। तो चलिए सबसे पहले इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं और बताते हैं आपको कौन सा टॉपिक। वेल, चलिए थोड़ा सा आपको जो है वो डिस्क्लोज कर देता हूं। आज मैं बात करूंगा निफ्ट, NIFT, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसमें कैसे एडमिशन लें, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से आप इसमें जा सकते हैं और आगे क्या स्कोप है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा NIFT यानी कि निफ्ट के बारे में। तो चलिए पहले ये गाना एंजॉय करते हैं।

वेल, मैंने बताया आपको कि मैं आज NIFT NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स, कुछ शेयर करने वाला हूं आपसे, ताकि जो लोग आगे चलकर इस डायरेक्शन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या सोच रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी जो है वो डायरेक्शन मिल जाए। वेल, NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इंडिया का एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है जो फैशन डिज़ाइन और मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर काम करता है और फैशन इंडस्ट्री में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम इंस्टीट्यूट माना जाता है। NIFT के कैंपस देश के बड़े शहरों में मौजूद हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर और मॉडर्न डिज़ाइन टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। फैशन और क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए NIFT एक बेहतरीन ऑप्शन है।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM Rainbow.
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप

वेल आज यूथ वेव में जो आज जिस एग्ज़ाम या जिस स्ट्रीम की बात कर लीजिए, जिस तरफ फैशन में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं या फिर डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप NIFT यानी कि निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेके अपनी इस हुनर को जो आपके अंदर है, टैलेंट है, उसको और

आ सकते हैं। तो निफ्ट में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट को किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास होना चाहिए। जी हाँ, 12वीं आपको पास होना पड़ेगा। और बैचलर ऑफ डिज़ाइन कोर्स के लिए किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब बीटेक मतलब बीएफटेक, अगर आपको बीएफटेक यानी कि बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो इसके लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। और निफ्ट फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, एसेसरी डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, निटवेयर डिज़ाइन और फैशन कम्युनिकेशन जैसे कोर्सेज ऑफर करता है। और इन कोर्सेज के थ्रू स्टूडेंट्स फैशन इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि आप अगर निफ्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसमें भी क्या करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं या फिर कोई दूसरी स्ट्रीम में अपने बैचलर ऑफ डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जैसा मैंने बताया, उस तरह से आपका क्वालिफिकेशन होना मस्ट है। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर कुछ और बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं। 4:18 का ये वक्त है, मैं हूँ देव आपके साथ।

0: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
1: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
2: धड़कता है जो हर दिल में
3: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
0: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
4: और अब प्रस्तुत है रोजगार समाचार।

0: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो धड़कन।
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, सहायक कुल सचिव पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। एक पद उपलब्ध है जो अनारक्षित है। अन्य आवश्यक योग्यताओं, महत्वपूर्ण तिथियों और सामान्य अनुदेशों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए IIT गोवा की वेबसाइट iitgoa.ac.in/careers-iitgoa। ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 5 जुलाई 2026। सैनिक स्कूल छिंगपिंग, सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में संचालित तथा CBSE नई दिल्ली से संबद्ध पूर्णतः आवासीय पब्लिक स्कूल है। ये स्कूल पात्र उम्मीदवारों से TGT सामाजिक विज्ञान, सामान्य कर्मचारी

0: नियमित काउंसलर संविदा तथा पीटीआई कम मैट्रन के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन पत्र का प्रारूप और वेतनमान, पात्रता मानदंड और अन्य संबंधित जानकारियां स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और वेबसाइट का पता है sschingchip.mizoram.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। बाल मनोवैज्ञानिक एक पद अनारक्षित, नैदानिक मनोवैज्ञानिक एक पद अनारक्षित, चिकित्सा अधिकारी आयुष तीन रिक्तियां हैं, जिनमें से एक आयुर्वेद के लिए, एक होम्योपैथी के लिए तथा एक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए। इन रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। कार्यकारी निदेशक एम्स गोरखपुर को पदों की संख्या या वर्ग में परिवर्तन भारत सरकार के नियमानुसार करने का अधिकार है। आवेदन पत्र, सभी आवश्यक जानकारियां हासिल कर सकते हैं आप इस वेबसाइट से www.aimsgorakhpur.edu.in। इन भर्तियों से संबंधित कोई भी अन्य सूचना इसी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। नोट कीजिए एक बार फिर वेबसाइट का पता www.aimsgorakhpur.edu.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर हिमाचल प्रदेश इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रोफेसर 20 पद, एसोसिएट प्रोफेसर 2 पद, सहायक प्रोफेसर सीधी भर्ती 27 पद, सहायक प्रोफेसर संविदात्मक 26 पद। इस प्रकार कुल पदों की संख्या है 75। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के प्रोफार्मा के लिए देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर की वेबसाइट www.aimsbilaspur.edu.in।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

0: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
1: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
2: धड़कता है जो हर दिल में
3: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
0: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
4: वेल 4:31 का ये वक्त हो गया, मैं हूँ देव आपके साथ और आज यूथ वेव में मैं बात कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ NIFT यानी कि निफ्ट के बारे में। अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ये ट्रैक आपके लिए, लौट कर आता हूँ और कुछ और बातें आपके साथ शेयर करनी बाकी हैं, ज़रूरी हैं। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो देव के साथ।

वेल निफ्ट में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू होता है और एग्जाम्स के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैट और एक होता है गैट। कैट यानी क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट और गैट मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट। कैट में स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी, ड्राइंग स्किल्स, इमेजिनेशन और डिजाइन एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है और गैट में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ कोर्सेज के लिए सिचुएशन टेस्ट भी होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को दिए गए मटेरियल से क्रिएटिव मॉडल्स बनाने होते हैं। इसीलिए निफ्ट एग्जाम में सक्सेस के लिए क्रिएटिविटी और एनालिटिकल स्किल्स दोनों जरूरी होते हैं।

वेल निफ्ट की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और निफ्ट से ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट्स के पास करियर के कई ऑप्शंस होते हैं. वो फैशन डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनर, एक्सेसरी डिजाइनर, फैशन स्टाइलिस्ट, विजुअल मर्केंडाइजर, फैशन फोटोग्राफर या फैशन कंसल्टेंट बन सकते हैं. इसके अलावा रिटेल मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट और फैशन मार्केटिंग जैसे फील्ड्स में भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. कई स्टूडेंट्स अपना फैशन ब्रांड या स्टार्टअप भी शुरू करते हैं. निफ्ट ग्रेजुएट्स को फैशन हाउसेज, एक्सपोर्ट कंपनीज, रिटेल ब्रांड्स और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छी जॉब मिलती है. तो आप अपना माइंड थोड़ा मेकअप कर सकते हैं. अगर सोच रहे हैं कि करूं कि ना करूं तो शायद थोड़ी सी दिक्कत हो, वो आज परेशानी जो आपकी जो है ना कन्फ्यूजन में थोड़ी सी मुझे लगता है साफ क्लियर हो गई होगी. मैं हूं देव आपके साथ. 4:47 का ये वक्त हो रहा है. आप एंजॉय कर रहे हैं यूथ वेव 100.7 FM रेनबो पर.

Well, आज के समय में फैशन और डिजाइन इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स के कारण स्किल्ड डिजाइनर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। निफ्ट स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाता है और उन्हें इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट्स और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। अगर किसी स्टूडेंट में क्रिएटिविटी, इनोवेशन और फैशन के प्रति पैशन है तो निफ्ट उसके लिए एक एक्सलेंट करियर ऑप्शन हो सकता है। ये न सिर्फ अच्छी सैलरी और करियर ग्रोथ देता है बल्कि अपनी क्रिएटिविटी को प्रोफेशन में बदलने का मौका भी देता है।

वेल, इसी के साथ दीजिए इजाजत देव को आज के इस प्रोग्राम को, इस यूथ वेव के आज के इस सेगमेंट को वाइंड अप करने का, लेकिन कहीं नहीं जा रहा हूं मैं, और मुझे पता है कि आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं। सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, लेकर आता हूं अगला प्रोग्राम काउंटडाउन 10 गानों का, 10 गीतों का एफएम टॉप 10। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, आज देव के साथ।

पांच बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम घोषित कर दिए। प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11,00,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। एजेंसी ने बताया कि 11 मई से 31 मई तक 321 शहरों में 35 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई। विदेशों में भी 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में आज विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। श्री कश्यप ने लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में अग्निकांड को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन छात्रावास में स्थापित फायर सेफ्टी सिस्टम का ऑडिट कराने के साथ ही फायर सेफ्टी सिस्टम मानक व गुणवत्ता के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। लखनऊ के अलीगंज में कल 3 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना में 15 लोगों की मौत के मामले में जांच शुरू हो गई है। विशेष जांच दल ने आज घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाया। फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। टीम अंदर से सबूत जुटा रही है। इसके बाद एसआईटी ने केजीएमयू पहुंचकर घायलों से मामले की जानकारी ली। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं, जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। अमरोहा में गंगा दशहरा मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तिगरी गंगाधाम और ब्रज घाट में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए आज सुबह 8 बजे से 25 जून की सुबह 8 बजे तक दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा। शासन ने वाराणसी रोपवे सेवा की किराया दरें अधिसूचित कर दी हैं। कैंट, विद्यापीठ, रथयात्रा और गोदौलिया स्टेशनों के बीच न्यूनतम किराया 10 तथा अधिकतम 50 रुपये निर्धारित किया गया है। कैंट से गोदौलिया तक की पूरी यात्रा मात्र 50 रुपये में होगी। काशी स्मार्ट पास धारकों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा।

वेल रेनबो तो है जिसे हर दिल गुनगुनाता है और 5:03 का ये वक्त हो गया है और ये वक्त इशारा कर रहा है कि भाई आपको इंतजार है एफएम टॉप 10 का कि कौन से वो 10 गाने हैं जो आज काउंटडाउन में शामिल होंगे और कौन सा वो साल रहेगा जो मैं इस बार लेने वाला हूँ। वेल इस बार मैंने लिया 1994 यानी कि 1994 और 1994 के 10 जो गाने हैं काउंटडाउन जो है वो शुरू होगा पायदान नंबर 10 यानी कि 10वें नंबर के गाने से सीधे हम पहुँचेंगे टॉप गाने पर। और आज का 10वां गाना कौन सा है ये बिल्कुल आपको सुनवाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ यानी कि देव के साथ 100.7 FM रेनबो पर और इन्जॉय करते रहिए ये शो जिसका नाम है FM टॉप 10। तो 1994 का जो ये दौर था उसमें 10वें नंबर पर 10वें पायदान पर कौन सा गाना है वो ये वाला गाना।

गाने हैं, काउंटडाउन जो है वो शुरू होगा पायदान नंबर 10 यानी कि 10वें नंबर के गाने से सीधे हम पहुंचेंगे टॉप गाने पर। और आज का 10वां गाना कौन सा है ये बिल्कुल आपको सुनवाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ यानी कि देव के साथ 100.7 एफएम रेनबो पर और एंजॉय करते रहिए ये शो जिसका नाम है एफएम टॉप 10। तो 1994 का जो ये दौर था उसमें 10वें नंबर पर, 10वें पायदान पर कौन सा गाना है, वो ये वाला गाना है नंबर 10 पर, जो कि फिल्म इम्तिहान से है और बोल है फायज अनवर के और म्यूजिक है अनु मलिक का। फिल्म का म्यूजिक काफी पॉपुलर हुआ था और बिल्कुल 90s के जो लोग हैं उन्होंने इस गाने को एंजॉय भी किया था, है ना। तो चलिए आज के 10 नंबर के इस गाने को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, लौट कर आता हूँ फिर 9वें पायदान पर कौन सा गाना ये आपके साथ शेयर करूंगा।

वेल, ये 10 नंबर का गाना भी आपने सुना फिल्म इम्तिहान से, और अगला गाना है फिल्म ये दिल्लगी से। यशराज फिल्म्स की ये प्रस्तुति थी और लिरिक्स समीर के और म्यूजिक दिलीप सेन और समीर सेन का। ये गाना म्यूजिक चार्ट्स में काफी हिट था, आवाज अभिजीत की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: 5:14 का ये वक्त हो रहा है। काउंटडाउन शो एफएम का टॉप 10 शुरू हो चुका है। 10वें नंबर का गाना और 9वें नंबर का गाना आप सुन चुके हैं और अब वक्त है कि 8वें पायदान पर कौन सा वो गाना है। और ये गाना जो अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मतलब इस गाने को लिखा है समीर ने और आनंद मिलिंद का संगीत है और उस दौर में ये गाना लोगों की जुबान पर काफ़ी चढ़ा था और फिल्म है गोपी किशन। तो मुझे लग रहा कि आपको भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया, नहीं हुआ तो चलिए हम गाना आपको सुनवाते हैं। 8वें नंबर का ये गाना।

वेल, इस गाने पे अगर आप थोड़ा सा थिरक लिए होंगे तो अब बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, यानी कि सातवें नंबर पर और सातवें पायदान पर कौन सा गाना है, बिल्कुल हम आपको बताएंगे क्योंकि आप इस शो पर हैं और इस शो का नाम ही है एफएम टॉप 10। और टॉप मतलब नीचे से जो है वो आपने तीन गाने एंजॉय कर लिए हैं, 10, 9 और 8 नंबर पर। और 7 नंबर पर जो गाना है इसमें आनंद मिलिंद का संगीत है और समीर का लिखा ये गीत है और उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ है और इन सब ने मिलकर पहुंचाया है इस गीत को नंबर 7 पर। फिल्म है सुहाग और गाना है गोरे गोरे मुखड़े पे।

वेल 10, 9, 8 और 7 ये पायदान हम पार कर चुके हैं. अब वक्त है छठे नंबर पे कौन है, छठे नंबर के पायदान पर कौन है और इसमें जो गाना है वो उसे गाया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने और जमीर काजमी का लिखा यह गीत है और अनु मलिक का संगीत. तो फिर देर किस बात की, चलिए सुनते हैं ये गाना. नंबर 6 पर फिल्म है विजयपथ.

0: हरदोई रोड लखनऊ। कॉल 666-4444।
1: कीप लिस्निंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: वेल, 5:33 का ये वक्त हो रहा है, यानी कि लगभग आधा सफ़र हमने तय कर लिया है वक्त से भी, और गाना के जो काउंटडाउन चल रहा है उसमें भी लगभग 5 गाने निचले पायदान से हमने तय कर लिया, यानी कि 10, 9, 8, 7 और 6, 10, 9, 8, 7, 6 गाने जो हैं, उल्टी जो गिनती है वो हमने लगभग 5 गानों की पूरी कर ली। अब 5 गाने बचे हैं और वो 5 गाने कौन है ज़रूर आपको पता चलेगा जब आप बने रहेंगे हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर और सुनेंगे, इंजॉय करेंगे ये शो टॉप 10, जिसमें आज 1994 के 10 गानों का काउंटडाउन मैं आपका दोस्त देव लेकर आया है आपके लिए। तो चलिए, पांचवें नंबर पर कौन सा गाना है ये जरूर आपको पता चलना चाहिए। नदीम श्रवण और समीर का एक बार फिर कॉम्बिनेशन देखने को मिला इस गाने पर, और फिल्म का साउंड ट्रैक 1994 के बेस्ट सेलिंग एल्बम्स में से एक था, और इस गाने को लोग काफी पसंद करते थे, और हालांकि आज भी रिक्वेस्ट बहुत आती है और लोग इस गाने को अभी भी बहुत पसंद करते हैं। फिल्म है कौन सी? फिल्म है दिलवाले।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल दुबग्गा।

डेली के काउंटडाउन में यानी कि 1994 के काउंटडाउन में बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं पायदान नंबर 4 पर, यानी काउंटडाउन नंबर सॉन्ग नंबर 4 कौन सा होगा ये ज़रूर आपको बताऊंगा मैं। और गोविंद और करिश्मा की फिल्म से ये गाना है और फिल्म भी खूब चली और गाने भी, आनंद मिलन का संगीत और समीर के गीत, आवाज़ अभिजीत की जी, फिल्म है राजा बाबू।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मतलब पायदा नंबर 3 पर कौन सा गाना है, और ये गाना भी काफ़ी हिट हुआ था, काफ़ी पसंद किया था। फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से ये है, आवाज़ें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की, और फिल्म का म्यूज़िक चार्टबस्टर था जी, चुरा के दिल मेरा।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: वेल, काउंटडाउन में अब हम पहुंच गए हैं दूसरे पायदान पर और वक्त है कि आज के दूसरे नंबर का गाना जो है वो कौन सा है 1994 का। तो वो गाना ये रहा, बिल्कुल, और जी हाँ, फिल्म मोहरा से ये गाना है, वीजू शाह का संगीत और उदित नारायण, साथ में अलका याग्निक की आवाज। और फिल्म का साउंड ट्रैक 1994 का सेकेंड बेस्ट सेलिंग साउंड ट्रैक था। एंजॉय कीजिए पायदान नंबर दो पर ये गाना, फिल्म मोहरा से, टिप टिप बरसा पानी।

वर्ल्ड 10 से लेकर बिल्कुल दूसरे नंबर तक के गाने हमने सुन लिए। अब इंतजार होगा आपको कि पहले नंबर का गाना कौन सा है। इतने सारे अच्छे अच्छे गाने तो बज गए, आखिर वो कौन सा गाना बचा है जो कि नंबर वन के स्लॉट पर है। बता दें आपको कि ये गाना जो है वो देव कोहली के लिरिक्स हैं, इसमें लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजें हैं, म्यूजिक है राम लक्ष्मण का। 1994 का ये बेस्ट सेलिंग साउंड ट्रैक रहा। और आप एक फिल्म मिस कर रहे हैं और वो फिल्म कौन सी, बिल्कुल अभी आपको पता चल जाएगा। और एक गाना भी बहुत ही फेमस है और बहुत ही मतलब फिल्म भी काफ़ी चली और इस फिल्म के सारे गाने बहुत चले, जैसे कि मैंने बताया ना कि साउंड ट्रैक बेस्ट सेलिंग रहा। जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी के साथ डीजे देव को इजाजत। आज का ये पहला टॉप गीत बना है फिल्म हम आपके हैं कौन से, दीदी तेरा देवर दीवाना। 5:56 का यह वक्त हो गया है, अब देव लेता है आपसे इजाजत। मिलता हूं अगले प्रोग्राम में, अगले शो में। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

छह बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2024 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर को पद्मश्री से नवाजा। राष्ट्रपति ने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया। कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। लखनऊ के अलीगंज में कल 3 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना में 15 लोगों की मौत के मामले में जांच शुरू हो गई है। विशेष जांच दल ने आज घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाया। फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। टीम अंदर से सबूत जुटा रही है। वहीं अलीगंज पुलिस की ओर से देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत ने यह रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। रिपोर्ट जमा करने के बाद श्री पंत ने कहा कि यह प्रारंभिक रिपोर्ट है और ये एक गोपनीय दस्तावेज है। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर आगे की कार्रवाई जल्द ही होने की उम्मीद है। ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर आज राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। मंदिरों में लोगों ने दर्शन पूजन किया। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किया। लखनऊ में इस अवसर पर कई जगहों पर भंडारे भी लगाए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित होगा।

0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: वेल एफएम रेनबो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर आप हैं और एक बार फिर मैं यानी कि आपका दोस्त देव 100.7 एफएम रेनबो पर। और इस वक्त मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है इस शो पर, इस प्रोग्राम पर, जिसका नाम है शाम अवध। वेल शाम अवध में बहुत सी बातें होती हैं करने को, बहुत सी चीज़ें होती हैं आपके साथ शेयर करने को कि शहर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बताते हैं जो आपको जानना ज़रूरी होता है। लेकिन उन सब चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए और साथ ही साथ म्यूज़िक को एंजॉय करने के लिए आपको हमारे इस प्रोग्राम में बने रहना होगा, इस चैनल के साथ जुड़े रहना होगा जिसका नाम है 100.7 एफएम रेनबो। तो चलिए अब देव के साथ बने रहिए, एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए और साथ ही साथ हाँ बिल्कुल अपना काम धंधा जो है वो भी आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि सारी चीज़ें सब एक साथ चलती रहनी चाहिए ना, क्योंकि कोई भी चीज़ रुकनी नहीं चाहिए। तो फिर एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला भी नहीं रुकेगा।

वाले चलिए आज की जो बातें हैं वो शुरू करते हैं और सबसे पहले जो है वो आपको बताने कि अगर आप थिएटर यानी कि संग का मतलब आनंद लेना चाहते हैं और उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की ओर से कार्यशाला में यानी कि उनकी जो कार्यशाला हुई थी उसमें एक नाटक तैयार किया गया था बूंद पानी की, इसका मंचन हो रहा है एसएनए अकेडमी परिसर में ही शाम को 6 बजे का ये इसका वक्त है और 6 हालांकि बज चुके हैं और 6:16 हो गए। अगर आसपास रहते हैं पहुंच सकते हैं टाइम से तो फिर पहुंच जाइए और अगर आपको पहले से पता पहले से वहीं पे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर आपका ये नाटक छूट भी गया तो एक और मौका आपके पास है, आपके पास एक और जो है वो नाट्य प्रस्तुति है भूसा, उसका मंचन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमती नगर में हो रहा है, इसका शाम 7 बजे का वक्त है यानी कि इसके लिए भी आपके पास वक्त है थोड़ा सा और अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएं तो 7 बजे तक आराम से आप पहुंच सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर पहला नाटक छूट गया उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसमें जा सकते हैं, नहीं तो फिर इस वाले बौद्ध संस्थान में आप जा सकते हैं। तो मतलब खैर अगर आप थिएटर के फैन है मतलब थिएटर देखना आपको पसंद है तो दोनों में से किसी को भी इंजॉय कर सकते हैं और 7 बजे का जो ये वक्त है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमती नगर में है यहाँ पे तो आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो चलिए एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो देव के साथ शामियाबाद।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: I am संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM Rainbow।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
4: वाला 6:27 का ये वक्त हो रहा है और एक लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक खास चीज़ जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो ऑनलाइन जो प्रवेश फॉर्म होते हैं, यानी कि ऑनलाइन जो आप अप्लाई करते हैं, वो फॉर्म भरने की जो डेट है उसे 22 से बढ़ाकर 28 जून कर दी है। और अब ये बताया गया कि फॉर्म भरने का ये लास्ट मतलब चांस है, अंतिम अवसर दिया गया है, और इसके बाद मत उम्मीद कीजिए कि फिर से आपको चांस मिल जाएगा या फिर से कोई डेट में बढ़ोतरी होगी। और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने जो 8 जो पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे सम सेमेस्टर के परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। इनमें MA पर्शियन, MSA एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, MSc AG हॉर्टिकल्चर और MSc AG सेल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, BSc AG ऑनर्स और एग्रीकल्चर शामिल हैं। तो इनके रिजल्ट जारी हो गए हैं और उम्मीद है कि आपको ज़रूर पता चल गया होगा, और नहीं पता चल गया हो तो आज ही तुरंत जाकर चेक करें।

जी हाँ बिल्कुल, ये गाना भी आप बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दूं आपको कि आप इस वक्त ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो पर, वक्त हो गया 6:37 का और मैं हूँ देव आपके साथ। सो कीप इंजॉइंग 100.7 एफएम रेनबो। और शाम का ये वक्त है, बिल्कुल आप जो भी काम कर रहे हैं, मतलब आज दिन तो मंगल है और आप ऑफिस से आ रहे हैं या फिर घर में बैठे हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे हैं, हमें अपने साथ ज़रूर बनाए रखें।

वेल, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और उसको रिन्यू कराना है तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इसका जो नवीनीकरण कराते हैं ना, तो जब उसको फिर से इशू कराते हैं, अप्लाई करते हैं, तो अब आपको टेस्ट देना पड़ सकता है। क्योंकि राजधानी में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ADTC का संचालन राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है इसको, और शायद इसी महीने के लास्ट तक, आखिर तक जो है ये केंद्र, ये सेंटर शुरू हो जाएगा और वहाँ पर सेंसर और कैमरों की निगरानी में टेस्ट होगा। और लगभग 3 मिनट 25 सेकंड के टेस्टिंग ट्रैक पर जो सफल नहीं होंगे उनका जो रिन्यूअल है वो लटक सकता है। और अभी तक फिलहाल ये मैनुअल ही हो रहा था टेस्ट, और ट्रांसपोर्ट नगर व देवा रोड पर अभी तक जो है वो DL जो भी आवेदन करते थे उनको मैनुअल टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता था, और इसमें बहुत बार जो है वो अनदेखी हो जाती थी, शिकायत हो जाती और प्रॉपरली जो है वो टेस्ट नहीं हो पाता था। लेकिन अब जो है वो कैमरों की और सेंसर से की मदद से ये टेस्ट होंगे और अब इसको क्लियर करना मुश्किल होगा, इसीलिए प्रॉपरली जो है बिल्कुल तैयार रहिए रिन्यू करना या फिर नया लाइसेंस भी बनाना है अगर तो भी। 6:42 का ये वक्त, फिलहाल ये ट्रैक अगला आपके लिए।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्ताने,
1: वो भूली दास्तान फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: वेल, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक नया पाठ्यक्रम, एक नया सिलेबस शुरू हो रहा है, एक नया कोर्स शुरू हो रहा है और जो लोग भी इसमें अगर इंटरेस्टेड हैं तो जाके पता कर सकते हैं। वो ये है कि सत्र 2026-27 में ही विधि संकाय के अंडर जो है ये BBA LLB यानी कि ये 5 साल का ये एकीकृत ये कोर्स होगा और ये पाठ्यक्रम शुरू होने वाला है और ये प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय यानी कि पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें ये कोर्स जो है वो शुरू होगा और इसमें 180 सीटें हैं और अगर आप इसमें प्रवेश चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो भी एप्लीकेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो आगे की बहुत सारी जानकारी या जो भी डिटेल्स उनको चाहिए वो इस पाठ्यक्रम, इस कोर्स से रिलेटेड, तो वो लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lkounivi यानी कि lkounivi.ac.in पर जाकर और ज़्यादा जानकारी इस कोर्स के बारे में जुटा सकते हैं।

वेल हाँ, एक और खबर जो कि सुबह टहलने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सेहत बनाते हैं, लेकिन भाई उन लोगों की मतलब ये ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है जो कि बसंत कुंज योजना स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में सुबह टहलने जाते हैं। वो ये है कि अब जो है पहले शुल्क लगता था लगभग 15 रुपये का, और अब सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में अगर आप सुबह टहलने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो ये फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। यानी जो भी जाते थे वो लोग अब फ्री में जो है वहाँ पर टहल सकते हैं और वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं सुबह 5 से 8 बजे के बीच। ये बसंत कुंज योजना स्थित जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है वहाँ की बात बता रहा हूँ। और इसी के साथ ही दीजिए देव को इजाज़त इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करने का, और जल्दी होगी फिर आपसे मुलाकात अगले प्रोग्राम में, जहाँ पर आप हाँ बिल्कुल फ़ोन करते हैं हमें और हमसे बात करते, साथ ही अपनी फरमाइश पूरी करवाते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। देव से बाय फिलहाल अभी इस प्रोग्राम से।

वेल, गुनगुना रहे हैं आप और हमें पता कि गुनगुनाने का एक मौका और अभी आपके पास है और बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छा कारण है, रीजन है, क्योंकि अब आप हमें फोन करेंगे और चाहेंगे कि हम आपसे बात करें और आपकी पसंद पूरी करें, आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। तो जी बिल्कुल हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त देव, इस उम्मीद को बनाए

रखने में, और इस उम्मीद को पूरा करने में मेरी पूरी जो है वो भागीदारी रहेगी कि आपसे बात हो और आपसे की फरमाइश वो मैं पूरी कर सकूं। तो स्वागत है आप सभी का इस प्रोग्राम में, इस शो में जिसका नाम है हेलो FM। तो चलिए फोन मिलाइए, नंबर आपके पास है जल्दी से, और अपनी फरमाइश पूरी करवाइए हमसे, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए पहले ये ट्रैक सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, और बिल्कुल इस ट्रैक की तरह ही आपके दिल में भी म्यूजिक बज रहा होगा, गिटार बज रही होगी कि शायद आज मेरा नंबर लग जाएगा, है ना।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जी और देखिए, बिल्कुल प्रोग्राम शुरू होने की देर होती है और हमारे जो श्रोता हैं, जो लिसनर्स हैं, जो कॉलर्स हैं, वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ पहले ही है, कॉलर कोई है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आज बात करते हैं, जानते हैं कौन है। हेलो,
3: हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप?
2: जी गुड इवनिंग, मैं बहुत अच्छा हूँ। और आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए, कौन है। सबसे पहले लोग तो ये जाने कि किससे बात हो रही है।
3: जानी पहचानी आवाज़।
2: जी
3: सर, मैं हूँ रोशनी रावत, ग्रामा पोस्ट बमना, तहसील फतेहपुर, जिला उन्ना से।
2: जी रोशनी रावत।
3: जी सर।
2: जी रोशनी, इस वक्त आप यहाँ पे तो है नहीं, आप शायद बाहर रहती हैं, अपना काम करती हैं?
3: जी सर, मैं चंडीगढ़ में हूँ।
2: जी जी बिल्कुल। और इस वक्त बताइए, अभी तो शॉप में हैं अपने या फिर?
3: जी सर, अभी कैफे में हूँ।
2: अच्छा, कितने बजे तक मतलब आपकी शॉप?
3: जो कैफे है सर, सुबह 8 बजे से और 10 बजे तक ओपन रहता है।
2: रात में 10 बजे तक?
3: जी सर।
2: उसके बाद फिर घर

0: आती हैं और फिर सुबह 8 बजे खोलना होता है?
1: पास में ही है, बस 2 मिनट की देरी से पास में घर है और ऑफिस है, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। और दोपहर में तो हम बंद ही रखते हैं 204।
0: अच्छा, ये 10 बजे तक मतलब आपका अपना काम है, तो काम करने में मजा आता होगा, इंटरेस्ट लेती होंगी आप, है ना?
1: सर बिल्कुल आता है, और एफएम रेनबो के साथ साथ कितना ही मतलब टाइम हो गया पता ही नहीं चलता कि हम इतनी जल्दी समय खत्म हो गया।
0: नहीं, मेरा सवाल ये कि अगर आपका अपना काम नहीं होता कहीं और पे, अगर आप जॉब कर रही थी तब तो फिर घड़ी देखते हैं कि जल्दी से 5 बजे 6 बजे हम निकले।
1: वो तो है ही, अपना काम अलग होता है, किसी के पास दूसरे के पास काम करना अलग होता है।
0: मतलब इंसान जब जी खुद काम कर रहा तो खुद अपना एफर्ट डाला, तो उसे पता हो कि हम जितने इसमें एफर्ट डालेंगे उतना मुझे फायदा होगा, तो वो इंटरेस्ट लेकर काम करता है।
1: जी सर, इसमें तो अपने काम में तो ज्यादा इंटरेस्ट आता है सर, बस जी और के पास करते हैं, बस यही होता है कि जल्दी से समय दिखते बस घर भागे।
0: क्या बात। चलिए, और इसी तरह से आप बिल्कुल लगन से काम करते रहिए, और आपका जो काम है, जो बिजनेस है, जो भी आप कर रही हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रो हो और आप तरक्की करें, हमारी यही शुभकामनाएं आपके साथ।
1: धन्यवाद।
0: और ये गाना हमने प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिएगा।
1: काफी दिन के बाद बात हुई है आपसे, और मैं कुछ अपने बहनों और भाइयों का नाम लेना चाहती हूँ।
0: जी जल्दी से।
1: गुलाब्ता दीदी, नीलू दीदी, बबीता राव और साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी और यासिर भाई हमारे, महेंद्र भैया और तालिब भैया
0: जी,
1: और आसिफ भैया तेलंगाना से, सभी लोग सुन रहे हैं सर आपको।
0: चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बाय बाय रोशनी जी।
1: बाय बाय।

0: In the corporate world, if you come across as too nice, people don't respect you more. They just assume.
1: वेल, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर आ गए हैं, जल्दी से आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो

0: हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, चलिए बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं शिमला से राकेश बात कर रहा हूँ।
0: जी, शिमला से।
1: जी।
0: क्या बात है, क्या बात है। शिमला में, मतलब अभी तो यहाँ शिमला का नाम सुनते ही ना वो बड़ी राहत महसूस हो रही है, बस नाम से ही। ये बताइए, शिमला में मौसम कैसा है? यहाँ तो बहुत गर्म है।
1: मौसम ठंडा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
0: क्या बात है। और मतलब कैसे कपड़े, स्वेटर जैकेट लग रहे हैं या फिर बस एक
1: नहीं,
0: स्वेटर?
1: एक कमीज है और एक जो अंदर की जो इनर होती है वो डाली है।
0: अच्छा, मतलब सुहाना मौसम कह सकते हैं, बहुत ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना गर्मी तो है नहीं।
1: ना, सुहाना मौसम है।
0: चलिए बढ़िया। आपसे पहली बार बात हो रही है?
1: जी। वैसे तो आपके कई बार कॉल कर चुका, लेकिन कई बार लाइन बिजी होती तो लग नहीं पाती, तो फिर आज मैं लग गई।
0: नहीं, पहली बार बात कर रहे हैं, इससे पहले आपकी बात हुई है यहाँ पे?
1: हाँ, इससे पहले भी हुई थी, कई बार बात हुई थी।
0: चलिए चलिए, क्या बात, क्या करते हैं राकेश जी?
1: हम तो सेब की बागवानी करते।
0: क्या बात है, बढ़िया, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, सेब की बागवानी। ओके, तो ये मतलब बागवानी सेब की तो वहाँ पे होती है खैर। और ये बताइए, ये जब बागवानी करते हैं उसके बाद खुद ही मार्केट तक ले जाते हैं, उसके लिए मतलब अलग लोग हैं?
1: जी, हम तो सिर्फ मंडियों में ले जाते, तो मंडियों से सिर्फ क्या बोलते मार्केट तक पूरे देश पहुंच जाती है।
0: तो आपके जो सेब है यहाँ पे भी पहुँचेंगे कभी, लखनऊ में भी? तो हमने भी
1: जी
0: टेस्ट किया
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: बिल्कुल। यहाँ सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में पहुँचते हैं, गुजरात और ये राजस्थान यहाँ तो पहुँचते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में ज्यादा पहुँचते हैं।
0: क्या बात है, तो चलिए कभी हमने भी आपके बाग के जो हैं वो सेब ज़रूर एंजॉय किए होंगे, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल किए होगी,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: चलिए ये बताइए कि ये जो गाना आप सुनना चाहते हैं या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: जी, सबसे पहले तो आप आपको डेडिकेट करेगा। हमारे रेडियो मित्र हैं भगवान सिंह परमार हैं, पूरन वर्मा हैं, मांगीलाल चंदेल हैं, और
0: जी
1: तमाम सुनने वाले श्रोता है, क्योंकि दोस्तों की लिस्ट जो है बहुत लंबी है, क्योंकि हम आकाशवाणी के माध्यम से हर राज्य से श्रोता से कांटेक्ट हमारा होता हो चुका है, कई सालों से हर राज्य के श्रोताओं से कांटेक्ट है।
0: जी चलिए बढ़िया। और ये गाना जो आपने चूज किया है, ये आशिकी फिल्म से है, राइट? तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बाय बाय राकेश जी।
1: ओके, बाय बाय।
0: ओके बाय।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने आज घटना स्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुबत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोप वे सेवा का किराया तय, न्यूनतम ₹10 और अधिकतम ₹50 में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए आज फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। विशेष जांच दल ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि जांच में सभी विभागों की जिम्मेदारी को देखा जाएगा और सभी पहलुओं पर गहराई से गौर करने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उसमें अभी हम लोगों ने डिटेल घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हमें कुछ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमाएं में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात उच्च स्तरीय बैठक में दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। जांच दल 7 दिन में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा। अलीगंज पुलिस की ओर से देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
2: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन की। परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है और भी जो भी आवश्यकता होगी हम पूरा कर जो भी कर सकते करेंगे। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई।
0: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अवैध निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। लखनऊ में अग्निकांड के बाद आज प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने होटलों और कोचिंग सेंटरों में चेकिंग अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण, पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं बस्ती, मेरठ, जौनपुर, अमरोहा, अंबेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है।

0: एसआईटी के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य दो सदस्यों के साथ आज अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है, एसआईटी की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
1: शासन द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है, जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर को पद्मश्री से नवाजा।
3: प्रोफेसर मंगला कपूर, साहित्य एवं शिक्षा, शास्त्रीय संगीत।
2: राष्ट्रपति ने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया। कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। उनकी पत्नी प्रेमवती ने ये पुरस्कार स्वीकार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में पद्म पुरस्कार पाने वाली प्रदेश की हस्तियों को बधाई दी और उनके योगदान को अमूल्य और सराहनीय बताया। इस वर्ष 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक देशवासी के हृदय में सदैव राष्ट्रवाद की लौ प्रज्वलित करता रहेगा। यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा और गोदौलिया स्टेशनों के बीच न्यूनतम किराया ₹10 और अधिकतम ₹50 निर्धारित किया गया है। कैंट से गोदौलिया तक की पूरी यात्रा मात्र ₹50 में होगी। काशी स्मार्ट पास धारकों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे परियोजना कैंट से गोदौलिया तक लगभग 3.75 किलोमीटर मार्ग पर संचालित होगी। ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर आज प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ में इस अवसर पर बड़ी संख्या में भंडारे लगाए गए हैं। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि अगले 4 दिनों तक पूर्वी जनपदों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 27 जून के बाद बारिश होने की संभावना है।
4: कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण की पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई हैं और इन स्थितियों के अगले 4 दिनों तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने आज घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुपत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय, न्यूनतम 10 रुपए और अधिकतम 50 रुपए में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: और अब प्रस्तुत है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की डेली अपडेट्स।
2: Argentina at the tournament. Since then, he scored at every World Cup apart from the 2010 competition in South Africa. Messi turns 39 on Wednesday.
3: Well, Argentina are through to the last 32. They're joined by France and Norway. Kylian Mbappe scored twice as France beat Iraq 3-0, while there are also 2 goals for Norway's Erling Haaland as they beat Senegal 3-2. Algeria beat Jordan 2-1 in San Francisco. That win keeps Algeria's hopes alive of reaching the knockout stages. They're third in Group J. There's a big night ahead for England as they play Ghana in Boston in Group L. Victory would see them progress to the last 32 as Group winners. Here is the England midfielder Declan Rice.
4: I've played against a lot of the Ghana team, so I know what they're going to bring. They're going to bring strength, pace. They're going to want to catch us out on the counter-attack. So yeah, we need to be ready for everything.
3: Portugal are also back in action today. They face Uzbekistan in Houston in Group K. For more World Cup news from the BBC, go to bbc.com/football.
5: World Football Update from the BBC.
1: वेल, अब 7:32 का ये वक्त हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर होल्ड पे हैं और आइए जानते हैं वो कॉलर और उनकी क्या फरमाइश, उनसे थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी और पता चलेगा वो कौन है, कहाँ से उन्होंने फोन मिलाया है। हेलो,
6: अस्सलाम वालेकुम।
1: हाँ, वालेकुम अस्सलाम जी।
6: सीतापुर पटेनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बताइए आप कैसे हैं?
1: जी नमस्कार आपको, और हम बहुत अच्छे हैं। और आपने काफी देर होल्ड किया क्योंकि एक बार जब फोन लग जाता है तो मतलब बात तो होनी है, इसलिए होल्ड करे रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना?
6: कोई दिक्कत नहीं है, फोन बहुत मुश्किल से लगता है, लग गया तो होल्ड पे हुए तो क्या हुआ।
1: वेल, आपका अक्सर फोन लग जाता है वैसे, आप ट्राई करती हैं रोज में? अच्छा, रोज ट्राई करती हैं, थोड़ा रुक के?
6: कभी हार नहीं होती सर।
1: नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप रोज जैसे बात हुई तो उसके बाद क्या 2-4 दिन एक हफ्ता गैप देती हैं या फिर कल फिर आप मतलब?
6: हाँ बिल्कुल गैप देते हैं, बिल्कुल।
1: चलिए बढ़िया। और लास्ट बात आपकी कब हुई?
6: आज हो गए 4-5 दिन।
1: चलिए बढ़िया। और 4-5 दिन के बाद आपने फिर लगाए और फिर लगे, मतलब बहुत लकी हैं आप।
6: वही तो बता रहे हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: अच्छा ये बताइए, आप लक पर जो है वो यकीन करती हैं आपको? मतलब अभी तक जो है आपके जो काम हुए हैं या जो भी, आपको क्या लगता है कि थोड़ा लकी है या कभी लक काम करता है या सिर्फ मेहनत ही काम आती है?
6: नहीं, कभी लग जाता है कभी नहीं। कल तो हमने बहुत ट्राई किया लेकिन फोन नहीं लगा हमारा, लगा लेकिन रिसीव नहीं हुआ। हाँ, उससे पहले अलका मैम आई थी, फिर भी हमने बहुत कोशिश किया लेकिन लगा ही नहीं मेरा फोन।
1: जी तो यहाँ पे ना मेहनत है प्लस लक की बात है, यहाँ पे मेहनत आपकी थी लेकिन लक नहीं था तो नहीं मिला। आज दोनों चीजें जब मिल गई, मेहनत भी मिल गई, लक भी मिल गया, तो फोन भी लग गया
6: जी।
1: है ना
6: जी। और लेकिन एक दिन जब आप आए थे तो हमारा पहली बार फोन लगा था, लेकिन पहली बार आपसे बात हुई थी, फोन नहीं लगा था लेकिन पहली बार आपसे बात, लेकिन आज दूसरी बार बात हो रही है।
1: चलिए बढ़िया। और तीसरी चौथी पांचवी ऐसी बात होती रहेगी आपकी
6: जी,
1: है ना?
6: तो आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, गाने बहुत अच्छे चला रहे हैं।
1: चलिए थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया, सभी सुनने वालों को पसंद आया, ये हमारी कोशिश रहती है। और अगर पसंद आ रहा है तो समझिए यही जो है हमारे लिए नाम है। बिल्कुल,
6: जल्दी जल्दी आया करो सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम।
1: बिल्कुल, कोशिश रहेगी, कोशिश रहती है, लेकिन अब देखिए हमेशा तो नहीं हो पाता है। लेकिन
6: सीतापुर घूम जाओ सर।
1: सीतापुर
6: जी, हमारे गांव पटेनापुर आके।

0: बिल्कुल बिल्कुल आते हैं और आपके ग्राम में पहुंच के हम पूछ लेंगे क्षमा परवीन कौन है और आपके घर तक पहुंच
1: जी।
0: जाएंगे।
1: हमारे गांव में पचैनापुर में एक ही क्षमा परवीन है और एक ही मस्जिद, हम मस्जिद के पास रहते हैं
0: क्या एक ही क्षमा परवीन है और एक ही क्षमा रोशन रहती है?
1: जी। हाँ मतलब हमारे
0: चलिए
1: एक
0: बहुत
1: ही
0: अच्छा लगा
1: मस्जिद
0: आपसे बात करके। ये आपका ट्रैक, आपका गाना हम प्ले कर रहे हैं, किसी को डेडिकेट करना है
1: सर।
0: आपको?
1: जी हाँ, डेडिकेट करना है। सबसे पहले आपको सुनवाना चाहते हैं, फिर
0: जी
1: रोशनी रावत हैं जो चंडीगढ़ से सुनती हैं, और
0: और
1: पुलक साहबी, साहिबा अंसारी, पिंकी आरजे पूनम, वकील अहमद भाई, मोहम्मद फैज भाई, बाबू अंसारी भाई,
0: जी
1: और अकबर अंसारी, जावेद अख्तर भाई, और जितने सुन रहे हैं उन सभी सुनने वालों को सुनवाना चाहते हैं,
0: चलिए क्या बात है। और शुक्रिया
1: सत्यम कुमार भाई।
0: जी,
1: ठीक है,
0: शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग शमा जी।
1: ओके बाय।
0: बाय बाय।

0: well, जरा फिर से कहना, और जब नंबर लगेगा आपका तो बिल्कुल आप कहिएगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ किसी का नंबर लग चुका है, ये उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग सर, सादर प्रणाम आपको।
0: जी प्रणाम, नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी सर, दिन बाद फोन मिलाया है।
0: जी,
1: अपने माता जी के पास फोन के से मिलाया है आज।
0: जी जी,
1: मेरा फोन गड़बड़ है इस समय तो।
0: क्या बात है, नाम बताइए अपना।
1: विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर, पोस्ट रामगढ़, किनवेल, जिला सीतापुर से।
0: क्या बात है, अभी सीतापुर से एक फोन और आया था हमारे पास थोड़ी देर पहले, है ना? तो विनीत जी, क्या कर रहे हैं?
1: खेती किसानी करते हैं सर।
0: अच्छा, इस वक्त क्या कर रहे थे अभी?
1: इस समय तो कार्यक्रम सुन रहे थे और फोन लगा रहे थे।
0: ओके, अच्छा, ये फोन जो आप, ये जो एफएम है जो, ये इसको कब से सुन रहे हैं, मतलब कितना समय हो गया आपको?
1: 2002
0: से सुन रहे हैं आप लगभग, मतलब 24 साल हो गए।
1: और क्या,
0: बिल्कुल बचपन से बड़े हो गए होंगे आप तो, मतलब 24 साल में तो मतलब बहुत बहुत वक्त होता है।
1: दो लड़के हैं मेरे।
0: क्या बात है, और जब आप लड़के थे तब आपने सुनना शुरू किया होगा?
1: ऐसा नहीं सर, तब शादी ही नहीं हुई थी।
0: हाँ वही तो कह रहे, जब आप लड़के थे, छोटे थे, वही तो मैं कह रहा हूँ।
1: जी जी,
0: है ना, तब आपने शुरू किया, तब आपके दो लड़के हो गए। ओके विनीत जी, ये बताइए तो, ट्राई इससे पहले आपने कभी किया? इधर तो शायद आपने बताया अभी थोड़ा कुछ दिन पहले बात हुई थी, लेकिन मतलब पहली बार आपने कब फोन लगाने का सोचा?
1: पहली बार 2008 से।
0: अच्छा, तब से बात हो रही?
1: फैमिली बनाता था, दोपहर धमाल आता था।
0: बिल्कुल, तो उस समय भी आपने फोन लगाया, बात हुई आपकी, है ना? तो चलिए बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये गाना जो आप सुनना चाहते हैं, और किसी को डेडिकेट करना है क्या आपको?
1: डेडिकेट ओमकार है सीतापुर से। और सुरभि सीतापुर से, समा परवीन अंसारी सीतापुर से है।
0: जी,
1: और सीमा राउत राजा जी पुरम लखनऊ से है, और रिंकी पिंकी राय बरेली से है।
0: जी,
1: नवनीत हरकेश है लखनऊ से, और संतोष मौर्य हरदोई से, ममता हरदोई से है, और मणि हरदोई से है।
0: अच्छा, ये बढ़िया है, जितने भी
1: नेपाल पट्टी अतरौली से है, और संजय
0: जी बढ़िया। नहीं, वो तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। लेकिन ये बढ़िया कि लिसनर्स जो है, जो भी कॉलर्स फोन करते हैं, आपस में एक दूसरे को सुनकर ही जो है, आज ये आए हैं, ये सुन रहे थे, इनको डेडिकेट करते, ये बढ़िया रहता है ना।
1: और भगवान सिंह कुमार को डेडिकेट रहेगा।
0: चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी पसंद का ये ट्रैक हम प्ले कर रहे हैं, एंजॉय कीजिएगा। ओके, नमस्ते, बाय बाय।

0: वेल चलिए दोस्ती बढ़ाते हैं, एक और हमारे साथ हैं कॉलर, उनसे थोड़ी दोस्ती बढ़ाते हैं और बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग सभी सुनने वालों को।
0: जी जी, वेरी गुड इवनिंग, और सभी की तरफ से मैं आपको गुड इवनिंग बोलता हूँ। कैसे हैं आप
1: सर? हम बहुत ही अच्छे हैं, और हम अपना परिचय देते हैं। हम रजनीश चौरसिया अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से बात कर रहे हैं।
0: रजनीश जी, बढ़िया, क्या बढ़िया है अभी?
1: बिल्कुल एकदम मस्त सर, और आप, मुझे यकीन था कि अगर आप आए हैं तो मेरी कॉल लग जाएगी।
0: क्या बात है अच्छा, मेरे आने से कॉल नहीं लगती है, मतलब कोशिश रहती है कि, मतलब ये तो लक है ना कि हमने आपका फोन उठा लिया।
1: जी सर, आप पिछली बार भी आए थे तो मेरी कॉल लगी थी।
0: चलिए बढ़िया, अच्छी बात है, अगर आपके लिए मैं लगी हूँ तो अच्छा है।
1: जी
0: क्या करते हैं रजनीश जी?
1: सर हम टू व्हीलर के मैकेनिक हैं, और साथ ही साथ FM रेम्बो सुनते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं।
0: ओके, तो कब से आपकी अपनी शॉप है वहाँ जहाँ पे आप रिपेयर करते हैं?
1: जी सर।
0: अच्छा, सुबह कितने बजे से मतलब ये शुरू हो जाता है काम आपका?
1: जी सर, सुबह 9:30 बजे से शाम को, मेरी छुट्टी जो होती है ना सर, हम 7 ही बजे तक काम करते हैं बस।
0: ओके बढ़िया,
1: आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है।
0: अच्छा, उसके बाद तो इस वक्त आपने काम बंद कर दिया अभी?
1: जी बिल्कुल, अभी हम घर आ चुके हैं।
0: अच्छा, 7 बजे ऑफ हो जाता आपका काम?
1: जी जी, और 15-20 मिनट सर मुझे घर आने में लगते हैं, न्यूज ब्रेक के बाद हम कार्यक्रम ज्वाइन करते हैं आपका।
0: अच्छा, मतलब बिल्कुल आपका टाइम बिल्कुल फिक्स है, 7 बजे बंद, उसके बाद 7 बजे घर पहुंच जाओ, 7:20 से 30 मिनट तक जो 10 मिनट का समाचार

0: आता उसमें ब्रेक ले लो और फिर 7:30 बजे से फोन मिलाना शुरू करो।
1: जी सर, बिल्कुल
0: बिल्कुल सही कहा मैंने?
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए बढ़िया, ये तो आपने बिल्कुल एकदम टाइम टेबल बना के रखा है।
1: जी
0: अच्छा
1: सर, गाना सुनना
0: जिंदगी में
1: चाहे फिल्म में
0: जी
1: गाना सुना दीजिए, फिल्म बाजी करके।
0: जी हाँ बिल्कुल सुना रहे हैं, और ये चलिए आपका गाना हमने प्ले कर दिया है, और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे क्या?
1: जी सर, जितने भी लोग सुने सभी के लिए।
0: चलिए चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
1: धन्यवाद सर।

0: वेल, आज के आखिरी कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पे हैं और आइए जल्दी से उनसे बात करते हैं ताकि उनकी पसंद जो है वो भी हम प्ले कर सकें, फरमाइश जो उन्होंने की है। हेलो जी, इंद्रभान जी, कैसे हैं? आपका नाम जो है ना वो बहुत ही पावरफुल लग रहा है
1: जी सर।
0: और इंद्रभान जी कैसे हैं?
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ सर, अभी घर पे हूँ सर।
0: आप तो सर्विस करते हैं ना, आप लौट आते हैं कितने बजे तक?
1: मैं आ जाता हूँ सर 4:30 बजे।
0: ओके, और थोड़ा जल्दी भी जाते होंगे मेरे ख्याल से फिर सुबह।
1: नहीं, सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ।
0: जी हाँ, वही अंदाजा हो गया मुझे, क्योंकि 4:30 तक जब आप लौट आते हैं तो काम भी आपका जल्दी शुरू हो जाता होगा सर्विस।
1: जी सर, 6 बजे जाता हूँ, 7 बजे बायोमेट्रिक लगता है, और उसके बाद 7:30 बजे से 2:30 बजे तक काम चलता है
0: जी।
1: और उसके बाद फिर टाइम मिलता है तो उसी केंद्रों में फोन करता हूँ सर।
0: क्या बात है, क्या बात है। और मुझे लगता है कि इससे पहले मेरी आपसे बात हो गई है, मेरे ख्याल से 15 दिन पहले शायद।
1: कई बार
0: तो इंद्रभान जी, अच्छा मौसम बताइए कैसा है वहाँ, क्योंकि मौसम की चर्चा हर तरफ चल रही है।
1: सुबह टाइम गर्मी किया था, जो बादल किया, फिर धूप किया, फिर बादल किया, फिर उसके बाद पानी गिरने लगा, एक हमारी तरफ थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हुआ, इसके बाद फिर बादल हट गया सर, फिर उसके बाद फिर वही उमस गर्मी कैसे बना था।
0: चलिए चलिए चलिए, बढ़िया, और जल्दी से बरसात आएगी और मानसून होगा, सबको राहत मिलेगी
1: जी सर।
0: ओके, गाना मैंने प्ले कर दिया, किसी को डेडिकेट करना हो तो आप जल्दी से कीजिए क्योंकि वक्त कम है, आप अपना गाना भी सुन सकें ताकि।
1: बड़े मियां, छोटे मियां
0: जी हाँ,
1: सबसे पहले गीत आपको क्यों मिले सभी लोगों को, सभी आपके आपके पूरे उद्घोषक भाई बहनों को, और क्या बोलते हैं को, हेलो एक्टर को, पूरे भारत की श्रोताओं को ढेर सर के धन्यवाद, आप इंतजार कर रहा हूँ।
0: चलिए चलिए,
1: सुनने के लिए
0: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इंद्रपान जी, शुक्रिया, ओके बाय बाय। और दोस्तों इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करें, 7:56 और 57 मिनट होने वाले, देव से बाय, जल्द होगी फिर आपसे मुलाकात, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, अगला प्रोग्राम है प्रीति के साथ।

नमस्कार, रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर को पद्मश्री से नवाजा। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। उनकी पत्नी प्रेमवती ने यह पुरस्कार स्वीकार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में पद्म पुरस्कार पाने वाली प्रदेश की हस्तियों को बधाई दी और उनके योगदान को अमूल्य और सराहनीय बताया। प्रदेश भर में संचालित कोचिंग संस्थानों के विनियमन को प्रभावी बनाने और अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जनपदों में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का व्यापक सर्वेक्षण कर सूची तैयार करें। जो संस्थान पंजीकृत नहीं है उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि पंजीकृत संस्थानों का भी सुरक्षा मानकों के अनुरूप निरीक्षण कराया जाएगा। इसमें भवन व्यवस्था, अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जाँच शामिल होगी। अमरोहा में आज दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की मूल भावना को धरातल पर उतारने और दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के राज्य आयुक्त दिव्यांगजन डॉ. शेखर कुमार झा ने दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना व उसके प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान कुल 50 मामलों की सुनवाई हुई। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि अगले 4 दिनों तक पूर्वी जनपदों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 27 जून के बाद बारिश होने की संभावना है। 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: खौफों में बयां करता संजीदा रेडियो प्रोग्राम आपशार 100.7 FM रेनबो पर।
1: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
2: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
3: धड़कता है जो हर दिल में
4: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो धड़कन।

0: धड़कता है जो हर दिल में
1: सुबह 6 से रात 12 बजे तक
2: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो
3: धड़कन लखनऊ की।

सुलगती धड़कनों को और भी धड़का दिया तुमने, सुलगती धड़कनों को और भी धड़का दिया तुमने, नजर को अपनी चाहत का आईना बना दिया तुमने। जमाने भर की खुशियां भी अधूरी सी लगती थी, मगर जब तुम मिले तो जीने का एक सिला दिया तुमने। जी हाँ, जब मोहब्बत का एहसास जहन पर छाने लगे तो हवाएं भी गुनगुनाने लगती हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी हमनवा आरजे प्रीति, और इस हंसी मोड़ पर आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। आबशार यानी कि जज्बातों का वो बहता हुआ कारवां जहां आज सिर्फ इश्क, वफा और चाहत की बातें होंगी। तो इस खूबसूरत मोड़ पर जब धड़कनें अपनी हदें लांघने को बेताब होती हैं, तब मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो चुनिंदा और मखमली गजलें जो आपके दिल की अनकही दास्तां को हंसी लफ्ज जरूर दे देंगी। तो अगर आप भी किसी की यादों में खोए हैं या कोई आपके ख्यालों को महका रहा है, तो बस हाथ थाम लीजिए इस हंसी सफर का, सुनते रहिए।

जी हुजूर, आपका भी एहतराम करता चलूं। जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुनी है खूबसूरत सी गजल। कहते हैं शब भर जागना और किसी की बोलती हुई आंखों की सरगोशियों को सुनना, शब भर जागना और किसी की बोलती हुई आंखों की सरगोशियों को सुनना एक रूहानी इबादत जैसा ही तो है। जब अल्फाज थक जाते हैं तब खामोशी दिल का हाल बयान

मिले थे हम भी किसी मोड़ पर अजनबी बनकर, मिले थे हम भी किसी मोड़ पर अजनबी बनकर, न जाने कब रूह का रूह से वास्ता हो गया। तलाशती हूँ गुजरे हुए वक्त का वो पन्ना, जहाँ ख्वाब जन्नत के थे और सफ़र नया हो गया। कितना अजीब है ना, जब इस सफ़र ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो हमारी हथेलियों में जन्नत के ख्वाब थे, वो ख्वाब जो फूलों के मानिंद नाजुक थे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की पाकीज़ा महक थी। हमें गुमान था कि मंजिल बेहद खूबसूरत होगी, लेकिन अगर रूहानी तौर पर देखें तो ज़िंदगी का सबसे हसीन मरहला मंजिल नहीं बल्कि वो मोड़ होता है जहां हम अजनबी होते हैं, क्योंकि जब दो अजनबी मिलते हैं तो वहां कोई बंदिश नहीं होती, कोई तवक्को नहीं होता और ना ही किसी उम्मीद के टूट जाने का कोई खौफ होता है। शायद इसलिए आज ये दिल शिद्दत से पुकार रहा है कि चलो चलो, सब कुछ

बुलाकर इस जमाने के सारे तलख तजुर्बों को पीछे छोड़कर जिंदगी को एक बार फिर उसी मासूम मोड़ पर ले चले, जहां जन्नत के वो ख्वाब फिर से नए हो जाएं और इस फूलों जैसी मोहब्बत पर वक्त की कोई धूल ना हो।

कहते हैं कि रोने से गमे दिल का गुजारा नहीं होता, रोने से गमे दिल का गुजारा नहीं होता, हर अश्क मोहब्बत का सहारा नहीं होता। उस रोज ये लगता है कि बेकार जिए हम, जिस रोज सनम जिक्र तुम्हारा नहीं होता। दरियाए मोहब्बत में है तूफान भी, भंवर भी हर कश्ती की किस्मत में, लेकिन किनारा नहीं होता। दोस्तों वाकई रोने से गमे दिल का गुजारा तो नहीं होता, और हर अश्क मोहब्बत का सहारा भी नहीं होता। कितनी बड़ी हकीकत बयां की है शायर ने। हम अक्सर सोचते हैं कि आंसू बहाने से दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, और हम करते भी हैं, या हमारे बहते हुए अश्क हमारी मोहब्बत की गवाही बन जाएंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि मोहब्बत सिर्फ आंसुओं की मोहताज नहीं होती। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो वो आंखों से नहीं खामोशी से बहता है। मोहब्बत का ये जो दरिया है ना दोस्तों, ये जितना खूबसूरत दिखता है इसके अंदर उतने ही तूफान और भंवर छिपे होते हैं। जरूरी नहीं कि हर वो शख्स जिसने इस दरिया में अपनी कश्ती उतारी है उसे साहिल मिल ही जाए। कुछ कश्तियां इस सफर के बीच में ही रूहानी तौर पर अमर भी हो जाती हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तैरना छोड़ दें या मोहब्बत करना छोड़ दें, है ना।

दोस्तों, खुदा की इतनी बड़ी कायनात में, जी हाँ, खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही ना मिला। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी ना मिला। बशीर बद्र साहब की यही खासियत है कि वो इंसानी जज्बातों को इतनी नफीस लफ्ज दे देते हैं कि हर सुनने वाले को लगता है ये उसी के दिल की दास्तां है। इस पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों की इस भीड़ में जब ये दिल किसी एक चेहरे पर आकर ठहर जाता है, जब हम पूरी कायनात को भूलकर खुदा से सिर्फ उस एक शख्स की खैरियत और उसका साथ मांगते हैं, और वो एक शख्स भी अगर नसीब में ना लिखा हो तो ये पूरी दुनिया खाली और बेमायने सी लगने लगती है।

और इसके आगे तो उन्होंने मोहब्बत का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच भी बयां किया है कि कभी कभी कोई इंसान हमारे बहुत करीब होता है, एक ही छत के नीचे होता है या साथ चल रहा होता है, लेकिन रूहानी तौर पर वो हमसे मीलों दूर होता है। वो जिस्मानी तौर पर तो साथ होता है पर उसका दिल हमारे साथ नहीं धड़कता। ऐसी नज़दीकी से तो वो फासला ही अच्छा, जहाँ दूर रहकर भी दो रूहें एक दूसरे में बसी होती हैं। ये पास होकर भी ना मिल पाने की जो कशिश है, जो बेबसी है, यही इस कलाम की रूह है। अगर आज की शाम आपके दिल के किसी कोने में भी यह मखमली सा दर्द छुपा है तो इन लफ्जों की गहराई को महसूस कीजिए। वक्त हुआ है 8:40 और कुछ सेकंड्स, और इस वक्त के साथ आखिरी गजल आबशार में आपके लिए। आबशार के उस पार ठीक 9 हम फिर मिलेंगे प्रोग्राम पॉप टाइम के साथ। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल है। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

0: इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन, गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
3: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
3: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी

0: ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 trillion तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, रात के 9 बज गए हैं, 9:01 हुआ है वक्त, और कुछ सेकंड्स की तो बात ही मत करिए, यूं ही चलते रहेंगे। और अभी आपने सुना, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और इस धड़कन के साथ ये जो धड़कन है ना, बीट्स हमारी चलती रहती हैं, एक मतलब उनकी भी एक रफ्तार होती चलने की, लेकिन ये जो 9 से 10 का वक्त होता है ना, ये इस रफ्तार को और भी बढ़ा देती है। तो भाई, घड़ी ने जैसे ही बजाए हैं रात के 9, आपके स्पीकर्स और हेडफोन्स की दुनिया में शुरू हो चुका है सबसे धमाकेदार, सबसे एनर्जेटिक और सबसे हैपनिंग म्यूजिक शो, जिसका नाम है पॉप टाइम। और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी आरजे प्रीति। और अगले एक घंटे तक यहां सफर एक ही रूल चलने वाला है, यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल चलेगा, नो टेंशन, नो स्ट्रेस, ओनली म्यूजिक। तो भाई, अगर आप घर पर हैं, कार में हैं, दोस्तों के साथ हैं या अकेले, अपने मूड को अपग्रेड करना चाहते हैं तो वॉल्यूम को कर दीजिए थोड़ा और हाई, जैसे कि मैंने किया है, क्योंकि आने वाले हैं बैक टू बैक पॉप बैंगर्स, जो आपके दिल की धड़कन को और सिंक कर देने पर, उनकी बीट्स के साथ सिंक कर देने पर मजबूर कर देंगे। तो आज की इस म्यूजिकल पार्टी में होंगे हिट्स, सुपर हिट्स, और वो गाने जो सुनते ही आपका पैर अपने आप थिरकने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो तैयार है ना? तो चलिए, पॉप टाइम, जहां हर बीट कहती है जस्ट कीप डांसिंग, म्यूजिक ऑन, वॉल्यूम अप एंड लेट्स रॉक द नाइट। और आप हैं इस वक्त आरजे प्रीति के साथ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर।

क्योंकि बहुत सारी मेल हमारे सामने फ्लैश हो रही हैं और कह रही हैं फटाफट हमें पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे पहले विजयपाल यादव जी का मेल आ गया है। लिखते हैं, आदरणीय बहन जी सादर नमस्ते जी, आपको भी नमस्ते। बड़ा ही अच्छा लगता है जब कोई आज के वक्त में बहन जी कहता है, और वही है खूबसूरत सा इनका पता, ललहुआ लखीमपुर खीरी, और कह रहे हैं कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपकी प्रस्तुति हमें बहुत पसंद आती है, आप शार आपको पसंद आया जी, दिल से शुक्रिया। आप जिस भी कार्यक्रम में आती हैं उस कार्यक्रम में चार चांद लगा जाते हैं, भाई ये चार चांद तो आप लगा रहे हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि आपकी मेल आ गई है। और लिखते हैं कि लेकिन कमी ये रहती है कि पॉप टाइम में कम आती हैं, बहन जी इस कमी को दूर करें, महान कृपा होगी। भाई हम कृपा करने वाले कौन होते हैं, ये तो ऊपर वाले यानी कि प्रभु, और उनकी कृपा होती है जब, मतलब हर कदम हम लोगों का जो भी होता है ना, हमारा हो आपका हो, ये सब उनकी कृपा से होता है। तो बस उनकी कृपा बनी रहेगी, हम यूं ही आते रहेंगे और आपकी मेल को यूं ही खूबसूरत तरीके से पढ़ते रहेंगे। लेकिन विजयपाल यादव, मुझे आपका मेल में जो एड्रेस होता है ना, उसको पढ़ने में बड़ा ही मजा आता है। विजयपाल यादव, बल्लू यादव, राजेश कुमार, ग्राम व पोस्ट लहुआ, जिला खीरी। और इस मेल के साथ ही पढ़ते हैं अगला मेल, रामराज जी का आया है। लिखते हैं, श्री गणेशाय नमो, रेनबो कैफे, जिला रायबरेली। रायबरेली, देखो जल्दी जल्दी पढ़ने में क्या होता है ना, जलेबी निकल रही है इधर भाई। रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से मेल किया है रामराज, राजभानु, शंकर भैया, पप्पू, पासी, मनीष, नीरज, मधु, रामचरण, प्रजापति। सबसे पहले हमारी तरफ से ज्योति बिटिया नहीं है आज, प्रीति बिटिया है आपके साथ, कोई बात नहीं, बिटिया तो समझ गए ना वही है बस। और जी शुक्रिया मेल करने के लिए। अंसारी जी का भी मेल आया है। लिखते हैं, रेनबो कैफे पेश करने वाले को हमारा आदाब, आपका ये कार्यक्रम मैं रोज़ सुनता हूँ, मुझे इस कार्यक्रम के गीत बहुत ही अच्छे लगते हैं। जी अंसारी जी, हम लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग मेल करते हैं। और इसके साथ ही पढ़ लेते हैं, पते के साथ कुछ नाम ले भेजें, ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मचकली, जिला बरेली से शाहरुन, नूर अंसारी, फरियाज शकील, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मोहम्मद आसिफ का मेल आया, मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं प्रोग्राम को, और आबशार बहुत ही पसंद आया जी, शुक्रिया प्रीति मैम। एक्चुअली मैं रहने वाला राजकटरा अहमदपुर बाराबंकी से हूँ, हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहा हूँ जी, बस यूं ही सुनते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मोहम्मद नास का मेल आया अंसारी और शाहपुर बाराबंकी से सुन रहे हैं प्रोग्राम को, और आबशार बहुत ही पसंद आया, क्या बात है, आबशार की आज बड़ी तारीफ हो रही है। और जी ये जितनी भी तारीफें होती ना, ये सिर्फ इसलिए होती क्योंकि हम लोग बहुत ही मेहनत करके यहाँ तक आते हैं, और आप लोगों को मतलब हर जो गज़ल होती है या हर अल्फाज होते हैं दिल से हम लोग आपके लिए पेश करते हैं। बस आप लोग को यूं ही पसंद आता रहना चाहिए हमारा प्रोग्राम, और आपके मेल यूं ही आते रहें। और हैदराबाद से लिख रहे हैं कि प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं, मेरे दोस्त का नाम ले लो, अच्छा आसिफ अंसारी हैदराबाद से सुन रहे हैं, लीजिए आसिफ अंसारी जी हमारे जरिए आप सुन लीजिए, मोहम्मद नाज ने आपको याद किया है। कमल पांडे जी का मेल आया, बड़ा ही लंबा चौड़ा सा मेल आया, और प्रीति जी नमस्कार, मैं कमल शंकर पांडे मौलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर से मेल कर रहा हूँ। कल जो लखनऊ अलीगंज में हादसा हो उसकी तो बात ही मत करिए, बड़ा ही दर्दनाक था, सोच के अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं सच में, और उस हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया, बड़ी ही दुखद घटना थी। और सीरियसली मतलब इस बारे में जितना भी हम लोग याद करते हैं एक बार फिर से दिल रो उठता है जब उस मंज़र को हम लोग सोचते हैं ना, क्योंकि हम लोगों के पास कई बार हमारे मोबाइल में मतलब कहीं ना कहीं से दिखी जा रही है और चीज़ें न्यूज़ में भी देख ही रहे हैं, बड़ा ही दर्दनाक था। बस यही कहते हैं कि जब भी घर से निकले हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करके निकले कि हर दिन अच्छा बीते और घर सलामती के साथ हम वापस आए, है ना। अरविंद कुमार दुबे जी का भी मेल आया, हेलो एफएम रेनबो लखनऊ, शहद की मिठास वाली प्रीति मैम की आवाज़ है, पूछ रहा हूँ मैं इस काबिलियत का क्या है राज। भाई राज तो आप लोग के मेल हैं, जो इतने मीठे मीठे प्यारे से मेल आते हैं, बस उनको पढ़ते वक्त हम लोगों की जो आवाज़ है ना वो मिठास वाली हो जाती है। आगे लिखते, तेरे ख्वाब मुझे इतने रास आने लगे हैं, हकीकत कहूँ हकीकत से हम दूर जाने लगे हैं। देखिए वक्त कितना ज़्यादा हो गया, आपकी मेल को पढ़ते पढ़ते 5 मिनट हो गए, हकीकत से हम दूर जाने लगे। अरविंद दुबे जी लिखते हैं कि पॉप टाइम कार्यक्रम में मैसेज भेजना मुझे पसंद है, शामिल होने की गारंटी जो रहती, बिल्कुल गारंटी तो यहाँ पर है, मतलब किसी चीज़ की गारंटी आज के वक्त में हो ना हो लेकिन यहाँ पर मेल शामिल होने की गारंटी बिल्कुल है। और रणधीर गुप्ता की भी मेल को शामिल करते हैं, उसके बाद हम लोग गाने को एंजॉय करेंगे। लिखते हैं, रणधीर जी हैव अ नाइस डे, रेडियो मित्र प्रीति जी सप्रेम नमस्कार, और प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं, पॉप टाइम पसंद कर रहे हैं, धड़कन लखनऊ की गाने पसंद आ रहे हैं। कुछ नाम लिखे, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता। और इसी मेल

जी हाँ दोस्तों, हम एक चीज़ तो बताना भूल ही गए थे, लेकिन फिर हमें जब हमने स्क्रीन की तरफ देखा तब हमें समझ में आया कि ये हमारी भूल है ही नहीं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जिनको पता है कि हमारा पता क्या है और जिस पते पर उनकी मेल आनी चाहिए उस पते पर उनकी मेल आ चुकी है। लेकिन जिन भी लिसनर्स को उस पते में थोड़ा सा भी डाउट है तो उनको बता दें कि ये आपको मेल कहाँ करना है, fmakashwanilakhnow@gmail.com। आपको फिर से बता देते हैं, fmakashwanilakhnow@gmail.com पर आपको मेल करनी है। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कैसा प्रोग्राम लग रहा है, कैसे गाने लग रहे हैं और क्या सुनना चाहते हैं वो आप प्लीज़ मत लिखिएगा, क्योंकि ये फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई चलिए शामिल करते हैं मे

के साथ ही हम सुनते हैं अगला खूबसूरत सा ट्रैक जो हमेशा हम लोगों को पसंद रहा है और आज भी हम लोग पसंद करते हैं. तो चलिए एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक को ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर.

जी 9:22 का वक्त हो चला है और इस वक्त के साथ ही बता दें आप सुन रहे हैं पॉप टाइम ओनली विद आरजे प्रीति के साथ ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो पर। तो भाई विनीत कुमार का भी मेल आ गया है, लिखते हैं विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर, टॉप टाइम पॉप टाइम होना चाहिए, टॉप टाइम नहीं कोई बात नहीं, प्रस्तुत करने वाली प्रीति बहन जी को गुड इवनिंग, आपको भी अ वेरी गुड इवनिंग और प्रोग्राम लाजवाब लग रहा है, सुपर हिट आपकी बोली बहुत मीठी सुरीली है, भोजपुरी गाना आप सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, ज़रूर आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। और साथ में कुछ नाम लिखे हैं उन्होंने, ओमकार सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, संतोष मौर्य हरदोई से, वीरपाल भट्टी अतरौली से, ममता हरदोई से, रिंकी पिंकी रायबरेली से, मोहनी हरदोई से, संजय अतरौली से। आपको कैसे इतने सारे नाम के साथ जगह भी याद हुए हैं भाई, पढ़ने में तो हमें लग रहा है हमने पूरा यूपी घूम लिया है। चलिए अच्छा लगा आपका मेल आया है। वकील अहमद का भी मेल आया है, अस्सलाम वालेकुम और आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, हमें आपका मेल पढ़ना अच्छा लग रहा है, पॉप टाइम अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे बज रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, आप भी खाकर आकर खा लें भाई, हम प्रोग्राम कर लें फिर हम ज़रूर खाएंगे, हमारे लिए 2 रोटियां रख दीजिएगा। और हमारे यहाँ गर्मी बहुत हो रही है भाई, हमारे यहाँ भी गर्मी वैसी हो रही है जैसे आपके यहाँ हो रही है, क्योंकि हम कोई इस देश से बाहर थोड़ी ना आप ही के साथ हैं। और लिखते हैं आगे वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी, अरे क्या नाम लिखा है फिर से पढ़ते हैं, वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी साजिया अंसारी, क्षमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफसा सिद्दीकी, FM अच्छा अहमद नवाब, मुझे FM नवाब पड़ गए, कोई बात नहीं, अहमद नवाब तो वैसे भी FM में ही ऐसे लगता है हमारे साथ ही रहती है। अच्छा लगा आप लोगों की मेल आई और इतने सारे नाम आपने लिए, मुझे लग रहा है इनमें से तो कई सारे नाम वो है जिनके मेल आते हैं, है ना वकील अहमद जी, बताइएगा ज़रूर। भाई इसके साथ ही सुल्तान रजा का भी मेल आ गया, अस्सलाम वालेकुम, और देखिए सुल्तान जी आप ही से हमने कहा था हम एक बार जरूर पढ़ना इसको सीख जाएंगे और अब हम क्या फर्राटेदार बोलते हैं, देखो फिर से बोल के दिखाते हैं अस्सलाम वालेकुम, है ना। और आगे लिखते हैं हमारी प्यारी प्यारी सी प्रीति मैम कैसे हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं और बहुत मस्त होंगी आप क्योंकि आपकी आवाज़ बता रही है जी, हमारी आवाज़ पूरी तरीके से हमारे जज्बात को बयां नहीं कर पा रही कि कितनी खुशी हो रही है हमें आप लोगों के साथ यहाँ पर स्टूडियो में एक साथ बैठने पर, भले ही आपकी मेल आ रही हो क्या करना, लेकिन लग तो रहा है आप सब हमारे साथ हैं। और आगे लिखते हैं, अच्छा देखो इनको सबका हाल पता है कि क्या पूछने वाले हैं, आप लोग पूछेंगे मैम कहाँ थी आप इतने दिनों से, तो इसका जवाब मेरे पास है, यानी सुल्तान जी लिख रहे हैं इनके पास है क्योंकि इस बार आप गई थी पहाड़ों के बीच घूमने, जी बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, हम पहाड़ों में गए थे घूमने के लिए क्योंकि भाई छुट्टियाँ ही इसीलिए

घूमने फिरने नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे, जब घुटनों में दर्द हो जाएगा तब, तो इसीलिए इन्हीं बीच घूमाओ अगर घुटनों में दर्द ना शुरू हुआ है। और लिख दे, कल ज्योति मैम से पूछा था आपने, तो बस आपने कल पूछा और हम आज यहाँ हाजिर हो गए हैं और आपका मेल पढ़ के बड़ी ही खुशी हुई। और लिखते, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जिशान रजा और अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा, मम्मी पापा और पूरा राजा परिवार जी, शुक्रिया मेल करने के लिए। और किसका मेल आया, सैफ अंसारी का भी मेल आया। हाय मैम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज उस्मान अंसारी, मैं श्रीनगर लखीमपुर, अरे श्रीनगर लखीमपुर में भी श्रीनगर है, हमको तो पता ही नहीं चला, हम काहे के लिए पहाड़ों में गए उधर, हम इधर लखीमपुर ही ना हो आए होते, क्यों सुल्तान जी हमको पता ही नहीं आप वहाँ पे भी है श्रीनगर। और लखीमपुर से हूँ मैं, जल्दी जल्दी मेल कर रहा हूँ और जल्दी से पढ़ भी लें क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, देखिए हमने आपका मेल पढ़ लिया है और अच्छी बात है आपने मेल किया है, और अपने फ़ोन को फटाफट चार्जिंग पे लगा दीजिए जब तक लाइट है। अहमद नवाब का भी आ गया है मेल, वही खूबसूरत अंदाज में, बहुत सारे इमोजीज के साथ, वही उनका एक अलग ही अंदाज है गुड इवनिंग लिखने का। कैसी हैं आप, बहुत दिनों बाद आई हैं आप जी। हम बिल्कुल ठीक हैं और हम बहुत दिनों बाद आए, ये सच है। आप याद करते हैं, जिस दिन आप दिल से याद करते हैं उस दिन हम यहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। आप शार सच में बहुत बढ़िया था, ओके। और मैं कई दिनों से आपका इंतज़ार कर रही थी, फाइनली कानों को आपकी आवाज़ सुनने को मिल गई, फाइनली हमें आप लोगों का मेल पढ़ने को मिल गया। पॉप टाइम मेरा फेवरेट प्रोग्राम है और जब आप आते हैं और भी ज़्यादा फेवरेट हो जाता है। आपके बजाय गाने के साथ मैं भी गाती जी, ये तो हमें भी पता है, आप गाती बहुत अच्छा होंगी जरूर, ऐसा लगता है। वैभव प्रकाश का मेल है, आज हम केलों के शहर भुसावल महाराष्ट्र में वॉक करते करते पॉप टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी शुरुआत हुई है पॉप टाइम की, आज अर्ज किया है बात करने से बात बनती है, बात करने से बात बढ़ती है, थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करो, मेरी तो जान अटकी है। भाई हम तो लखनऊ वाले हैं, हम लोग तो शुरुआत ही यहीं से करते हैं, जरा मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो भाई वैभव के साथ ही मेल को पढ़ने के सिलसिले को देते हैं थोड़ा सा पॉज, क्योंकि अगला गाना कर रहा है आपका इंतज़ार, और वो भी कहाँ से है भाई, बरेली से है। इसको सुनिए और कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए।

भाई दोस्तों, वक्त हो गया 9:35 और कुछ सेकंड्स, और इस वक्त के साथ ही बता दें आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पॉप टाइम ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो पर, यानी कि धड़कन लखनऊ की। और इस वक्त आपके साथ है आरजे प्रीति। और अगर अभी तक आपने मेल नहीं किया, आप सोच रहे हैं मेल करें ना करें, हमारा मेल शामिल होगा कि नहीं होगा, भाई 10 बजने से पहले अगर हमने आपका मेल शामिल नहीं किया तो जो कहिए वो हम हार जाएं। बिल्कुल आपका मेल शामिल होगा भाई, ये हमारे विश्वास के साथ हमारे लिसनर्स हमें मेल करते हैं कि कुछ भी हो जाए मैम मेल जरूर शामिल करेंगी। तो भाई अगर ज़रा सा भी आपको संकोच है तो मेल करके देखिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। तो ये है आपके इम्तिहान का वक्त, और असल में कहें तो ये इम्तिहान का वक्त हमारे लिए होगा कि हम आपका मेल कैसे शामिल कर लें, लेकिन हम करेंगे ज़रूर अगर आपने मेल कर दी तो। जैसे कि राधे श्याम ने मेल किया, उससे पहले अरविंद जी का मेल शामिल करते हैं। लिखते हैं, डियर गुड इवनिंग आरजे प्रीति जी, और शांत सा मौसम और प्यारी सी आवाज़, क्या खूब लिखा है आपने। आप लोगों को भी इधर बुला लेना चाहिए, इधर बैठा के ये प्रोग्राम तो ज़रूर कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा लिखा है। आई एम प्रियल यादव, और ये शरीफाबाज सत्री बाराबंकी से मेल किया है, मीठी यादव नाम है, गंगागंज रोड भानमऊ और नकटौआ बाराबंकी। ये सब जगह भी होती है नकटौआ बाराबंकी। सॉन्ग सुपर कूल बोल जी, शुक्रिया, बड़ा ही खूबसूरत सा इमोजी लगाया काला चश्मा पहन के। राधे श्याम जी का भी मेल आया है जिला कासगंज से, मास्टर राधे श्याम शाक्या गुड इवनिंग। अच्छा, राधे श्याम शाक्या जी आपका नाम है। गुड इवनिंग प्रीति जी, आपको भी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? प्रोग्राम में सॉन्ग्स मस्त प्ले हो रहे हैं, मस्त प्ले हो रहे हैं, अच्छा वो वाला मस्त नहीं है, प्ले हो रहे हैं, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच राधे श्याम जी मेल करने के लिए। और राजकमल का भी मेल आया है, लिखते हैं राजकमल यादव ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से मेल किया, नमस्ते मैम जी कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, आप आती हैं तो फुल ऑन मज़ा आता है जी। शुक्रिया, खाना खा रहे हैं, आप भी खाइए, साथ खाएंगे मैम जी, बिल्कुल वक्त बताइएगा और समय जगह बताइएगा, हम आ जाएंगे, साथ में खाना खाया जाएगा और आप खाना खिलाइएगा, डेजर्ट हमारी तरफ से। हमारे साथ हमारी वाइफ संगीता यादव, बेटा सावन कुमार यादव, अनिकेत, अंशिका और काजल पकड़ियापुर से सुन रहे हैं, आपको नमस्ते बोल रहे हैं जी। आप सबको, पूरी फैमिली को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कमल पांडे जी का मेल है, प्रीति मैम जी नमस्कार, मैं कमल शंकर पांडे महोलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, दोस्तों के नाम लिए हैं, ओम प्रकाश भार्गव महोलिया कला, रमाकांत विश्वकर्मा बिल्डिंग वाले महोलिया कला, रुद्रा होटल वाले सहदेवा, सुरेश जायसवाल भाई बेलहारा वाले, इन सभी लोगों के साथ बैठकर ऐप के माध्यम से रेनबो कैफे प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, मेल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी धन्यवाद मेल करने के लिए। मनोज विश्वकर्मा का मेल आया, मन प्रीति मैम जी कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लग रही है, अभी छत पर बैठकर प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा ये बताइएगा मौसम वहाँ कैसा है। और लिखते हैं, मेरे साथ मेरा बड़ा भाई परदेसी विश्वकर्मा भी है, छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार ग्राम तारा शिव मोहल्ला ठाकुर चौक। पूरा हम पता बता देते हैं, जिसको शक हो सब पहुंच जाए। आज शायद भीष्म पितामह और शक्तिमान का किरदार निभाने वाले कलाकार मुकेश खन्ना जी का जन्मदिन है। अच्छा जी, प्रसिद्ध गायक शुभनाथ मुद्गल का भी है जी, है तो बिल्कुल है, अब गाना कौन सा उनका बजा दें कोई। प्रिंसेस सिंह का भी मेल है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा और जनपद हरदोई से मेल किया, प्रीति दी गुड इवनिंग, आपको भी अ वेरी गुड इवनिंग, पैकिंग कर रही हूँ अभी, मेहंदी भी लगनी है, कल मैं उन्नाव जा रही हूँ अपनी दीदी नीलू के घर शादी में शामिल होने, तो भाई शादी में जाइएगा, फोटो ज़रूर भेजिएगा, हमें मेल कर दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर भी आपके वो मेल में देख लेंगे। रॉयल अमित यादव का भी मेल आया, गुड इवनिंग आरजे प्रीति जी, जिस इंसान के साथ सुकून बहुत मिलता है उस इंसान के साथ वक्त भी बहुत कम मिलता है, बिल्कुल सही कहा है, ना जाने ऐसी कौन सी खास आप में अदा है, ये दिल है कि बार बार तुम्हें चुपके से सुनता है। शाम शांत और शांत शाम, ठंडी हवा और ऊपर मुस्कुराता चांद, क्या खूब लिखा है, ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने आज हमारे लिए महफिल सजा दी हो, बिल्कुल सही कहा है। मेरी ज़िंदगी में मुझे दो काम करना बहुत अच्छा लगता है, एक गाना गाना और उसमें खो जाना, बहुत खूब लिखा है अमित जी, बहुत खूब लिखा है। तो चलिए अमित के साथ ही थोड़ा सा मेल पढ़ने के सिलसिले को देते हैं थोड़ा सा पॉज, क्योंकि एक गाना कर रहा है इंतजार, कह रहा कभी यार कभी पार, तो भाई इधर उधर मत जाओ, सीधे इस गाने को प्ले कर देते हैं ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001 4242 पर।
3: 8700001 4242।

तो भाई इसी व्यक्ति के साथ ही पढ़ते हैं शीलू मौर्य का भी मेल। शीलू मौर्य जी लिखती हैं कि मैं फैजुल्लागंज लखनऊ से हूँ, मैं 2 घंटे से एफएम सुन रही हूँ, खाना खाते हुए प्रोग्राम सुन रहे थे, अभी मैं छत पर टहल रही हूँ। जी टहलते रहिए क्योंकि खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, और प्रोग्राम सुनकर अच्छा लग रहा है, मुस्कुरा रही हूँ। मैम हम भी लखनऊ से हैं। जी आप भी मुस्कुराइए भाई, जो भी लखनऊ में वो तो मुस्कुराते रहता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लखनऊ वाले ही मुस्कुराएं। तो जहाँ कहीं से भी आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, लखीमपुर बाराबंकी और बहुत सारी जगहों से आते रहते हैं मेल ना, सभी लोग मुस्कुराते रहिए। वेद प्रकाश का भी मेल आया है, लिखते हैं लखीमपुर खीरी से मेल कर रहा हूँ प्रतापगढ़, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मैम, पॉप टाइम प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि फाइनली आप कहना चाह रहे प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। मोहम्मद आसिफ अंसारी का भी मेल आया, हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहा हूँ, प्रीति मैम अगली बार हैदराबाद आना, यहाँ घूम के जाओ, हम आपको गोलकुंडा फोर्ट और चार मीनार, रामोजी फिल्म सिटी और ये सारी जगह ज़रूर दिखाएंगे, सब जगह घूम के जाओ। जी बिल्कुल, हम जब कभी भी आएंगे ना आपको ज़रूर बताएंगे, मेल ज़रूर करेंगे आपको कि हम आए हुए हैं, आप कहाँ हैं, हमें

घुमा दीजिए। थैंक यू सो मच इतना कंसर्न होने के लिए। और मेल आया है सौरभ प्रजापति का, उत्तर प्रदेश जिला अमेठी ग्राम गौतमपुर से मेल किया। मैम जी शुभ संध्या, आपको भी बहुत दिन बाद आई है, तबीयत तो ठीक थी ना? बिल्कुल ठीक है। देखिए सुल्तान अजहर ने बता दिया, राज सारे खोल दिए यहाँ पे कि आप पहाड़ों पर गई थी। आबशार प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और भोजपुरी गाने की आपने फरमाइश की जी, बिल्कुल कोशिश करते हैं, प्ले कर देंगे। और जानता हूँ फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, फिर भी बहुत सारे क्यूट क्यूट से इमोजीज भेजे हैं, प्लीज़ के साथ धन्यवाद भी भेज दिया है। जयप्रकाश राजपूत का मेल आया है, लिखते हैं आप कैसी हैं मैम जी? बिल्कुल हम ठीक हैं, आप कैसे हैं जय जी? आपने अपने हालचाल नहीं बताए, बस हमारे हालचाल पूछ लिए हैं। मैनपुरी से मेल किया है। जितेंद्र नामदेव का भी मेल आया है, जितेंद्र नामदेव जी ने खनौदी जिला शहडोल मध्य प्रदेश से मेल किया है। प्रीति मैम जी क्या हाल हैं? शायद आज हमारी और आपकी इस कार्यक्रम के जरिए पहली मुलाकात है। बिल्कुल गाने बेहतरीन बजाए जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद जितेंद्र जी। ये आज पहली और आखिरी नहीं होनी चाहिए, जब भी आए हमें आपका मेल ज़रूर चाहिए जितेंद्र जी, ये आपके साथ वादा होना चाहिए। आप हमसे वादा करिए, हमने तो कर ही लिया, जब भी आपका मेल आएगा हम ज़रूर शामिल करेंगे। बबीता राव का भी मेल आया, वही खूबसूरत अंदाज में कलरफुल। भाई बबीता जी कैसे इतना वक्त निकाल लेती हैं, और प्रीति मैम जी को इतने, मतलब क्या ही बोलें, शब्द नहीं है। पता बेली कला गोसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ। मैम जी आपको 8 बजे से सुन रही हूँ, मुझे आपका गजलों का आबशार प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, रेनबो कैफे भी एकदम झकास लग रहा है। सॉरी मैम जी, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है आज रेनबो कैफे प्रोग्राम का दिन है जी। बिल्कुल वही तो चल रहा है, रेनबो कैफे वही चल रहा है, जैसा आपने कहा भाई वही चल रहा है। मैम जी ये आपका प्रोग्राम दोस्त विनीता दी, अच्छा रजनीश भाई, रोशनी रावत जी, रविशंकर भाई, सोम भाई, अनुराधा, नीलू, गुलबशाह, महेंद्र भाई, तालिब, आसिफ, शायबान, सारी जी, सब लोग एक साथ अलग अलग जगह से बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं और आपके प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं। प्रोग्राम एकदम मस्त शानदार लग रहा है। मैम जी मैं आपको रजनीगंधा प्रोग्राम तक सुनूंगी जी, रहिएगा ज़रूर। और थैंक सो मच मेल करने के लिए और इतना कीमती वक्त निकालने के लिए। मूसा शेख जी का भी मेल आया है, लिखते हैं प्यार भरा आदाब, आपकी पसंद का सदाबहार नगमा सुनवा दीजिए। और शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना जी, और जोगिंदर जी का भी मेल आया है और लिखते हैं मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप सब अच्छे होंगे, मौसम यहाँ बहुत अच्छा है, आम खाने के लिए आ जाइए, हम सभी लोग आपका इंतज़ार करेंगे। भावेश सिंह जी ने मेल किया है और ये ग्राम धेड़े माऊ तहसील मलियाबाद से मेल किया है, लखनऊ से है, उत्तर प्रदेश से, और 11 साल है उम्र, अपने पापा के मेल से मेल कर रहा हूँ, कृपया मेरा मेल ज़रूर शामिल कर लें जी। शामिल कर लिया है बेटा आपका भी मेल, भाई उम्र के हिसाब से तो हम आपको बेटा ही कहेंगे। मम्मी पवन कुमारी सिंह, पापा जोगिंदर सिंह, मामा सूरज, धीरज, अवध सिंह और ऋषभ सिंह का नाम ज़रूर लीजिएगा, ले लिया है हमने नाम, आपका मेल भी हमने शामिल कर लिया है। वकील अहमद जी का मेल आया है, नमस्ते, आज दोबारा ईमेल कर रहे हैं वकील अहमद मंसूर कटका हथूरी जिला सीतापुर से, और लिखते हैं कि अंसारी शमा, परवीन, रिंकी, पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, अहमद नवाब सभी सुनते होंगे, ईमेल भी करते हैं जी, सभी लोग सुनते भी ईमेल भी करते हैं। और देखिए वक्त हो गया 9:54 का वक्त, और इसके साथ ही गाना हम सुनवा देते हैं, सुल्ताना है ये गाना, और देखते हैं अगर वक्त बचा तो एक और मेल, एक और गाना सुनवाएंगे, अगर मेल आ गई तो उसमें उसको भी शामिल कर लेंगे। लेकिन अभी से मैं आपको बता दें कि रेनबो कैफे के उस पार कर रहा है रजनीगंधा आपका इंतजार, और साथ ही साथ हम रहेंगे आपके साथ रात 12 बजे तक ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर, और आज आपके साथ है आरजे प्रीति।

नमस्कार, रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा शेष अवतार मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम श्रद्धा व निष्ठा के साथ संपन्न हुआ। अयोध्या महानगर एवं ग्रामीण के लगभग 4000 राम भक्त कार्यक्रम के साक्षी बने। धर्म नगरी के पूज्य 11 संत चरणों ने अपने कर कमलों से पूज्य ध्वज मंदिर शिखर पर आरोहित किया। इस दौरान राजधानी लखनऊ में घटित हृदय विदारक अग्निकांड में मृतकों की आत्मा की सदगति व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रभु श्री राम लला के श्री चरणों में प्रार्थना की गई। साथ ही दुखी परिवारजनों, संबंधियों, मित्रों को धैर्य व साहस प्रदान करने की प्रभु से कामना की गई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सरकारी आवास पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य

कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग, समर्पण और सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा का अनुपम उदाहरण है। देश की अखंडता के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद रायबरेली में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर निरीक्षण अभियान चलाया गया। वहीं पीलीभीत जिले में मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनुराग सिंह के निर्देशन में 15 कोचिंग सेंटरों व लाइब्रेरी पर टीमों द्वारा सघन जांच की गई, जिसमें आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम न मिलने और बाहर निकलने के सक्रिय रास्ते होने पर इन सेंटर चालकों को नोटिस जारी की गई है। चंदौली के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने जिला स्वास्थ्य समिति के साथ बैठक की। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने एवं हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक गर्भवती महिला का समय पर पंजीकरण एवं सुरक्षित प्रसव संस्थागत रूप से कराया जाए। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
0: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी, कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की खबर।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन

रात की इस खामोशी में हर कोई सोने की तैयारी में है। तब कुछ जज्बात जागने लगते हैं, वो जज्बात जो लफ्जों के मोहताज नहीं बल्कि पुराने गीतों की सुरीली धुन में लिपटे होते हैं। कुछ गानों का कारवां नहीं है, ये तो एक इबादत है उस दौर की जहां मोहब्बत जिस्मानी नहीं होती थी।

रूहानी हुआ करती थी, जहां प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता था बल्कि किसी की याद में मुकम्मल हो जाना होता था। कहते हैं कि वक्त गुजर जाता है, पर कुछ यादें और कुछ नगमे कभी पुराने ही नहीं होते। वो आज भी दिल के किसी कोने में धड़कते हैं, डिजिटल धड़कनों की तरह नहीं, बल्कि उस पुराने खत की तरह जिसकी खुशबू आज भी ताजा है। तो अपनी तन्हाई को एक खूबसूरत हमसफर दीजिए, दिल के दरवाजे खोल दीजिए और खो जाइए इस रूहानी महक में, क्योंकि जब तक ये नगमे जिंदा हैं, हमारी और आपकी मोहब्बत का ये राब्ता भी जिंदा है। जुड़े रहिए मेरे साथ, आरजे प्रीति के साथ, सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर। चलिए शुरू करते हैं रजनीगंधा का ये रूहानी सफर इस पहले नगमे के साथ।

आरजे प्रीति के साथ सिर्फ और सिर्फ 100.7 एफएम रेनबो पर। चलिए शुरू करते रजनीगंधा का ये रूहानी सफर इस पहले नगमे के साथ।

दोस्तों लोग कहते हैं कि मोहब्बत जाहिर होनी चाहिए, तस्वीरों में, तोहफों में, दुनिया के सामने। पर सच कहूं, सबसे खूबसूरत मोहब्बत वो है जो बेहद खामोश होती है, जहां लफ्ज खत्म हो जाते हैं और रूह की गुफ्तगू शुरू हो जाती है। एक ऐसा राब्ता जिसे किसी वादे की, किसी दावे की जरूरत ही नहीं होती, जहां दो दिल मीलों दूर बैठकर भी एक दूसरे की खामोशी को पढ़ लेते हैं। जब आप बिना कुछ कहे सिर्फ सामने वाले की आंखों में देखकर उसका पूरा आसमान नाप लेते हैं, वही तो है रूह का राब्ता। इस शोरगुल से भरी दुनिया में जहां हर रिश्ता अपनी मौजूदगी का ढिंढोरा पीट रहा है, वहां कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो अपनी मोहब्बत को इबादत की तरह दिल के सबसे पाक कोने में छुपा कर रखते हैं। उनका प्यार किसी नुमाइश का मोहताज नहीं होता। वो जब तन्हा होते हैं तो महज आंखें मूंद कर उस एक शख्स को अपने इतने करीब महसूस कर लेते हैं कि फासले खुद ब खुद दम तोड़ देते हैं। ये वो एहसास है जहां जिस्मों की बंदिशें नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ रूह से रूह का एक अटूट सा सिरा बंधा होता है। आप सुनते रहिए रजनीगंधा।

ये जो सुहानी चांदनी रातें होती हैं, ये दरअसल एक खूबसूरत सी साजिश होती है। एक ऐसी साजिश जहां आसमान का चांद जमीन के दो दिलों को एक दूसरे की रूह के और करीब ले आता है। दुनिया तो सो जाती है, सारे शोर थम जाते हैं ताकि इन खामोश लम्हों में सिर्फ तुम्हारी यादें मेरी सांसों की रफ्तार को तय कर सके। अजीब सी बेकरारी है ना? जब इस ठंडी हवा का झोंका मुझे छूकर गुजरता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे तुमने चुपके से मेरे कानों में कुछ कह दिया हो। तुम्हारी वो बातें, वो अधूरी मुलाकातें, वो अधूरी मुस्कुराहट इस सन्नाटे में इतनी साफ सुनाई देती है कि नींद आंखों की दहलीज तक आकर भी लौट जाती है। इस चांदनी की रोशनी में तुम्हारा अक्स और भी गहरा होता जाता है और दिल इस ख्याल से कांप उठता है कि तुम दूर होकर भी मेरे इतने करीब कैसे हो सकते हो। तो अगर आज आपकी रात भी किसी की याद की इस मखमली कैद में है तो चलिए इस तड़प को, इस पाकीजा इबादत को सुरों का एक हम सफर देते हैं। सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, इस नए दौर की चमक दमक में हर चीज़ कितनी जल्दी बदल जाती है। लोग बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, और यहाँ तक कि रिश्ते भी मौसम की तरह पल भर में अपनी रंगत बदल देते हैं। सब कुछ इतना शॉर्ट टर्म है कि लोग अब ठहरना ही भूल गए हैं। पर इसी बदलते हुए वक्त के बीच दिल के किसी सुनसान कोने में एक अजीब सी जिद पलती है, एक तलाशे सदाबहार, एक ऐसी तलाश जो किसी नए चेहरे की नहीं है, बल्कि उस पुराने कभी ना मिटने वाले एहसास की है। हम आज के दौर में रहकर भी एक ऐसी मोहब्बत ढूंढ रहे हैं जो वक्त की पाबंद ना हो। अजीब सी कश्मकश है ना। हम उस शख्स की बाहों में उम्र भर का सुकून तलाश करते हैं जो खुद कल की धूप से डर कर छांव बदल लेता है। हम पन्नों पर अमिट स्याही ढूंढ रहे हैं, जबकि दुनिया स्क्रीन पर लिखे लफ्जों की तरह हर बात को मिटा देने की आदी हो चुकी है। तो फिर इस तलाश को हम क्या कहें? एक ना समझ, एक ना समझ दिल की नादान ख्वाहिश, या इस खोखली दुनिया के बीच अपनी रूह को जिंदा रखने की एक आखिरी कोशिश, जहां हम एक ऐसे हम सफर की आस में जागे हैं जिसका शायद कोई वजूद ही नहीं, लेकिन दिल अब भी इंतजार करता है।

चारों तरफ जिम्मेदारियों का एक अंतहीन सा सिलसिला है। फाइलें हैं, मुलाकातें हैं और एक अजीब सी दौड़ है। हम सब इस कदर उलझे हुए हैं कि कभी कभी खुद अपनी सांसों को सुनना भूल जाते हैं। पर इसी आपाधापी के बीच अचानक दिल के किसी कोने में एक ख्याल दस्तक देता है। अचानक एक ऐसा चेहरा याद आता है जिसे सोचते ही होठों पर बिना वजह एक मुस्कान तैर जाती है। बस वही वो एक चुराया हुआ पल है, वो पल जो घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि दिल की धड़कन से नापा जाता है। जब काम के बीच में महज एक लम्हे के लिए आप अपनी आंखें मूंदते हैं और महसूस करते हैं कोई दूर होकर भी आपकी रूह में सांस ले रहा है। कभी आपके साथ हुआ है? ऑफिस में, घर पे, जब अचानक से उसकी याद आई हो, आपने आंखें मूंदी हो और उसका चेहरा आपकी आंखों में तैर गया हो। वो एक छोटा सा लम्हा पूरे दिन के तनाव पर हावी हो जाता है। आज की मोहब्बत यही तो है, दिन भर का वो एक जादुई सकतरा जो जिंदगी के इस पूरे रेगिस्तान को हरा भरा कर देता है। अगर आज आपने भी अपनी व्यवस्थताओं के बीच, बहुत सारे बिजी शेड्यूल के बीच में ऐसा कोई हसीन लम्हा चुराया है, तो चलिए उस एहसास को इस सुरमई रात के नाम करते हैं। अगर आज आपने भी एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद की हो और उसको याद किया हो, तो चलिए ये गीत आपके लिए, सुनते रहिए।

कुछ पन्ने जिंदगी के फिर से पलटने का मन करता है, कुछ पन्ने जिंदगी के फिर से पलटने का मन करता है, पुराने गीतों की छाँव में जरा ठहरने का मन करता है, इस भागती हुई दुनिया को कुछ देर के लिए रोककर आज फिर उन पुरानी यादों में उतरने का मन करता है। सुनते रहिए रजनीगंधा, सिर्फ मेरे यानी आरजे प्रीति के साथ।

दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि इस भागती दौड़ती दुनिया में सब कुछ कितनी जल्दी गुजर जाता है? जरूर गौर किया होगा। सुबह से शाम और शाम से रात। लोग कहते हैं कि आज के दौर में रिश्तों को देने के लिए वक्त ही नहीं बचा, पर सच कहूं, मोहब्बत कभी वक्त की मोहताज नहीं होती। वो तो बस उस बेहद मशरूफ दिन के बीच में से चुराया हुआ वो एक पल मांगती है, बस एक पल, जहां कोई बिना किसी मतलब के सिर्फ आपकी आवाज सुनने के लिए फोन कर दे। आज के दौर में किसी को अपना वो कीमती वक्त देना ही दुनिया की सबसे खूबसूरत मोहब्बत है। और दूसरी तरफ वो इंतजार, जब आंखें मुसलसल उस एक नाम को ढूंढती है, बस एक नाम को, दिल हर घंटी पर धड़क उठता है और वक्त जैसे थम सा जाता है। एक ऐसा इंतजार जिसमें कोई शिकायत नहीं होती, कोई शिकवा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक बेनाम सी उम्मीद होती है कि जब भी वो लौट कर आएगा, सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा।

नमस्कार, रात्रि के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी काशी में लता नाम से प्रसिद्ध प्रोफेसर मंगला कपूर को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की महिला कॉलेज में संगीत की लेक्चरर रही प्रोफेसर मंगला कपूर को काशी की लता मंगेशकर की उपाधि भी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक बताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी जनपदों में अस्पतालों, नर्सिंग होमों, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जाँच कर आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। लखनऊ की एक इमारत में कल आग

लगने की घटना की जांच के लिए एसआईटी और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। एसआईटी में आईपीएस प्रवीण कुमार और आईएएस अमृत अभिजात शामिल हैं। जांच में पता चला कि जिस इमारत में आग लगी वह अवैध थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया, बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। बिल्डिंग रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के मालिक वीरेंद्र शुक्ला की है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर वीरेंद्र समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एलडीए के 6 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। बुलंदशहर में जिलाधिकारी कुमार हर्ष की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित आभा आईडी, ई कवच, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सहित अन्य योजनाओं कार्यक्रमों की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रगति लाएगी। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन

हम अपनी पूरी जिंदगी किसी एक शख्स के नाम पर कर देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो हमारे वजूद के उस हिस्से को पहचान लेगा जिसे हम खुद भी नहीं जानते। हम उसकी खामोशी में अपने जवाब ढूंढते हैं और वो हमारे सन्नाटे में अपनी तसल्ली तलाश करता है। तो फिर इस राब्ते को आखिर नाम क्या दें, क्या नाम दें, जहां दो लोग एक दूसरे को पाए बिना ही खो देने के डर से कांप उठते हैं, या फिर जहां पाना भी मुकम्मल नहीं और खोना भी आखिरी सच नहीं। शायद मोहब्बत कोई मंजिल नहीं होती, ये तो इस बात से पता चलता है। ये तो बस एक खूबसूरत सी भूल भुलैया है जहां हर कोई खो जाना चाहता है, इस डर के साथ कि नहीं कि कोई उसे ढूंढ ना ले, इस डर के साथ कि कहीं कोई उन्हें ढूंढ ना ले। लेकिन हर कोई इस भूल भुलैया में खोना जरूर चाहता है। सुनते हैं अगला गाना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर। आप सुन रहे हैं रजनीगंधा और इस वक्त प्रीति है आपके साथ।

दोस्तों, कभी कभी एक अजीब सा सवाल दिल पर दस्तक देता है कि हम जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्या हम वाकई उसी से प्यार करते हैं या फिर हम उस एहसास से प्यार करते हैं जो उसकी सोच हमें देती है। हम अक्सर फासलों को कोसते हैं, मीलों की दूरियों का रोना रोते हैं, पर सच तो ये है कि सबसे ज़्यादा फासला तो हमारे अपने ही दरमियाँ होता है ना। हम एक दूसरे के इतनी करीब होकर भी अपनी अपनी तन्हाइयों के घेरे में बंद रहते हैं। आप भी सोच रहे हैं ये कैसी कशिश है।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: अजीब सा चलन है, लोग हर कीमती चीज की नुमाइश करना चाहते हैं, जज्बातों का ढिंढोरा पीटना चाहते हैं, महफिलों में गवाह ढूंढना चाहते हैं और अपनी ही मोहब्बत की गवाही दूसरों से मांगना जैसे एक रिवाज बन गया है, मानो जो दुनिया को ना दिखे।

उसकी कोई अहमियत ही नहीं। पर इसी दुनिया के शोर से दूर एक ऐसी मोहब्बत भी सांस लेती है जो कोई दिखावा नहीं बल्कि एक खामोश इबादत सी बन चुकी है, जहां ना कोई दावा है ना कोई नुमाइश। अजीब सी कश्मकश है। हम उस शख्स के लिए अपनी रातों की तन्हाई में दुआ करते हैं जिसे शायद हमारी इस पाकीज़ा चाहत की भनक तक नहीं। हम उसके नाम को अपने वजूद की गहराइयों में इस तरह छुपा कर रखते हैं जैसे कोई मुकद्दर की सबसे कीमती अमानत हो। तो फिर इस पाकीज़गी का नाम क्या दें, जहां पाना ही सब कुछ नहीं होता, जहां किसी को दूर से बिना छुए सिर्फ उसकी सलामती की मन्नत मांगता हो, मोहब्बत ही सबसे मुकम्मल रूप जब बन जाता हो। इस दुनिया के हर शोर से दूर किसी नाम का या सन्नाटा ही तो हमारी रूह का असली सुकून है, जैसे जिसे हर कोई समझ ही नहीं सकता। सुनते रहिए रजनीगंधा। वक्त हुआ है 11:28 और कुछ सेकेंड्स। माइक के इस पार है आरजी प्रीति आपके साथ। रात 12 बजे तक रहिएगा हमारे साथ।

चलिए दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछती हूँ। इस खामोश रात में आज एक सवाल है आपसे।

क्या कभी आपने कोई ऐसा ख्वाब देखा है जिसे सोचकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए? वो ख्वाब जो सिर्फ नींद में नहीं आते, बल्कि हमारी आंखों में पलते हों, हमारे दिल में धड़कते हों। अच्छा, कुछ ख्वाब किसी अपने की एक मुस्कान जैसे होते हैं, कुछ ख्वाब किसी मंजिल तक पहुंचने की चाहत जैसे होते हैं, और कुछ कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। लेकिन ख्वाब और हकीकत के बीच बस एक छोटा सा फासला होता है, और उस फासले का नाम है यकीन। तो जिस दिन आपको अपने ख्वाब पर भरोसा हो गया है ना, उस दिन दुनिया की कोई भी दीवार आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि चांद भी एक दिन सिर्फ आसमान का ख्वाब था, और आज हर रात वो किसी ना किसी के दिल को रोशन कर देता है। तो आज रात अपने उस खास ख्वाब को याद कीजिए जिसे आपने शायद दुनिया से छिपा कर रखा हो, क्योंकि हो सकता है आने वाला कल, आने वाली सुबह उसी ख्वाब की हकीकत लिखने वाला हो। मैं हूं प्रीति, इस वक्त आपके साथ। आप सुन रहे रजनीगंधा, जहां बातें कम और एहसास ज्यादा होते हैं।

दोस्तों, रात ने अब अपनी चादर और गहरी कर ली है और हमारी ये खूबसूरत मुलाकात भी अब अपने आखिरी लम्हों में है। कहते हैं ना, कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। उम्मीद है आज की ये महफिल भी आपके दिल के किसी कोने में थोड़ी सी जगह ज़रूर बना पाई होगी। अगर दिन भर की भाग दौड़ में कुछ बातें अनकही रह गईं तो उन्हें कल की सुबह के नाम कर दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी हर रात के बाद एक नया पन्ना खोलती है और शायद उसी नए पन्ने पर आपकी कोई छोटी सी चाहत, कोई खामोश दुआ अपनी कहानी लिख दे। इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूं आपसे विदा। आप सुन रहे हैं रजनीगंधा, एक ऐसा एहसास जो रात की खामोशी में भी साथ चलता है। मैं प्रीति आपसे इजाजत लेती हूं। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, रात्रि के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स की सुरक्षा सहयोग को प्रगाढ़ करने और आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकी तक की साझा चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि मौसम की अनिश्चितता और वर्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, ऐसे में किसानों को समय पर बीज, उर्वरक, सिंचाई, जल, विद्युत आपूर्ति, फसली ऋण तथा वैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गई वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर आयोजित इस महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक में देश की सभी राज्यों के मंत्रीगण और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जुड़े थे, जिसका मुख्य उद्देश्य मानसून की अनिश्चितता के बावजूद जिला स्तर पर आकस्मिक कृषि योजनाएं लागू कर खरीफ उत्पादन को सुरक्षित रखना है। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि अगले 4 दिनों तक पूर्वी जनपदों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 27 जून के बाद बारिश होने की संभावना है। 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 40

डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:14 और सूर्यास्त 6:07 पर होगा। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 7 प्रसारित होगा। 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 और कुछ सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।